नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देश के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल संवाददाता सम्मेलन में दिल्ली पुलिस के संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि सीजेपी को पहले भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन पार्टी ने निर्धारित दिशा निर्देशों और दिए गए आश्वासनों का पालन नहीं किया। संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि प्रस्तावित सभा के लिए जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। पुलिस के अनुसार उच्चतम न्यायालय ने भी सार्वजनिक प्रदर्शनों से जुड़े कानूनी प्रावधानों का पालन करने पर जोर दिया है। आयोजकों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिभागियों को संबंधित नियमों और बिना अनुमति सभा में शामिल होने के परिणामों के बारे में जानकारी दें। कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कई इलाकों में यातायात के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। पुलिस ने कहा है कि आज सुबह 6 बजे से यातायात में परिवर्तन किया गया है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और गैर जरूरी यात्रा से बचें। इस बीच सुरक्षा कारणों से कल रात 9 बजे से दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशन बंद हैं। इधर रेल मंत्रालय ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ियां रद्द कर दी हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने पर आपत्ति दर्ज कराने या नाम हटाने के लिए भरे जाने वाले फॉर्म 7 के आवेदनों की संख्या सीमित कर दी है। अब दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि के दौरान कोई भी मतदाता अधिकतम 10 आवेदन कर सकता है। वहीं मतदाता सूची के लगातार अद्यतन के दौरान हर महीने अधिकतम 5 आवेदन जमा किए जा सकेंगे। आयोग ने संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखा है। आयोग ने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से फॉर्म 7 के जरिए आपत्तियां दर्ज कराने पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह फैसला किया गया है। विपक्ष के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के कामकाज पर कथित आरोपों के मुद्दे पर कल शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों के बारे में जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों की सेहत, पोषण और सर्वांगीण विकास पर ज्यादा ध्यान देने का आह्वान किया है। नई दिल्ली में कल महिला एवं बाल विकास पर

0: दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए श्री मोदी ने जन भागीदारी पर जोर दिया और आंगनवाड़ियों को सामुदायिक भागीदारी का केंद्र बनाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। सर्वोच्च न्यायालय की किशोर न्याय समिति और यूनिसेफ के सहयोग से नई दिल्ली में आज किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के 10 साल पूरे होने पर राष्ट्रीय वार्षिक हितधारक परामर्श कार्यक्रम आयोजित करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज झारखंड में देवघर का दौरा करेंगे। इस दौरान वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स देवघर के दूसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है। श्रृंखला का तीसरा मैच कल इंदौर में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

चिंतन। महात्मा गांधी का कथन है, शक्ति शारीरिक क्षमता से नहीं आती, ये एक अदम्य इच्छा शक्ति से पैदा होती है। स्वामी विवेकानंद का कथन है, शक्ति ही जीवन है और कमजोरी ही मृत्यु, विस्तार ही जीवन है और संकुचन ही मृत्यु। ये था चिंतन। अब भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का लिखा जोखा। अब से कुछ देर बाद सुबह 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का आज भाग 337, शताब्दी की भक्ति रचनाएं। संगीत सरिता कार्यक्रम में चल रही है ये श्रृंखला। आमंत्रित कलाकार हैं गायक और संगीतकार शेखर सेन। इनसे ममता सिंह ने बातचीत की है, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की है। संगीत सरिता कार्यक्रम सुबह 6:45 पर और शाम 6:45 पर सुना जा सकता है। आज इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी होगी। फिल्मी गीतों के कार्यक्रम सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत, 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। दिन में 12:05 पर यादों की महफिल, 1 बजे सुरीला सफर, 2:30 पर सदाबहार नगमे और 3 बजे मन चाहे गीत।

सुबह 8 बजे समाचार प्रभात। दिन में 12 बजे हिंदी में समाचार, 2:15 पर दोपहर समाचार, शाम 6 बजे हिंदी में समाचार और फिर रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या। सुबह 8:15 पर और दिन में 2 बजे त्रिवेणी होगी। 8:30 पर चित्रलोक, 8:00 कार्यक्रम केंद्रित होगा फिल्मकार गुरुदत्त पर। यह कार्यक्रम सुबह और शाम 9:30 पर सुना जा सकता है। गीतों भरी कहानी यादों की तपिश, इस कहानी का दूसरा भाग सुबह 10 बजे। लेखिका और वाचिका ममता सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। दिन में 11 बजे मैटिनी शो के अंतर्गत वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से ममता सिंह की बातचीत सुनिएगा, प्रस्तुति जुबैर खान की है। 3:30 पर प्रस्तुत किया जाएगा। आज का नाटक है प्लास्टिक की घास। इस नाटक का पहला भाग सुनिएगा, लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक तीना नाथ। बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से बातचीत सुनवाई जाएगी, बातचीत नेहा शर्मा ने की है, प्रस्तुति तेजश्री कांबले की। शाम 5 बजे छाया गीत सुनिएगा, 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन। 7:00 विशेष जयमाला कार्यक्रम होगा। आज का जयमाला कार्यक्रम संगीतकार उषा खन्ना ने प्रस्तुत किया है, जरूर सुनिएगा। 7:45 पर ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा। हवा महल के अंतर्गत आज सुनिएगा सुनो कहानी श्रृंखला में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की कहानी कंचन का दूसरा भाग। स्वर ममता सिंह, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई। ये कार्यक्रम रात 8 बजे होगा।

8:15 पर चित्रलोक होगा, 9 बजे आपके लिए। रात 10 बजे छाया गीत, 10:30 पर ढलती जाए रात, और रात 11 बजे आप सुनेंगे मैटिनी शो। कार्यक्रम विवरण अभी आपने सुना। सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आपको बता दें कि विविध भारती के कार्यक्रम आपके रेडियो सेट के अलावा इंटरनेट स्ट्रीमिंग, डीटीएच, वेव्स एप्लीकेशन, न्यूज ऑन एआईआर पर पूरी दुनिया में उपलब्ध हैं। हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने श्री रामचरितमानस गान। आज सुनिए भाग 337।

वानर और आसुरी सेनाओं के युद्ध का अंत होता नहीं दिखता। सारा प्रांतर शवों से पट गया है। रक्त और मज्जा की जैसे नदियां बह चली हैं। इनमें भूत पिशाच स्नान कर रहे हैं। चील और कौवे कटे अंग लेकर उड़ते और आपस में छीना झपटी कर रहे हैं। अजीब विभत्स दृश्य उपस्थित है। लेकिन रावण अपनी सेना का उत्तरोत्तर संगार होता देख माया रचने की सोचता है। इधर श्री राम को पैदल देखकर इंद्र अपने सारथी मातली के साथ अपना रथ भेज देते हैं। श्री राम जब रथारूढ़ होते हैं तो वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। उधर रावण ने अपना माया जाल फैलाया। स्वयं राम को छोड़कर वानर भालू सेना को जगह जगह कई राम और लक्ष्मण दिखाई देने लगे। ये दृश्य देख लक्ष्मण भी मूरत की तरह ठगे से खड़े रह गए। किंतु श्री राम से इस दृश्य का भेद और अपनी सेना का असमंजस छिपा न रहा। वे बोले, हे वीरों, युद्ध करते करते तुम लोग थक गए हो, अतः तुम्हें विश्राम चाहिए। अब मेरा और रावण का द्वंद्व युद्ध देखो।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। शेखर सेन जैसे महान गायक साधक संगीतकार हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। शेखर दादा एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार और सभी श्रोता वृंद को हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। और आज मैं चाह रहा हूं एक अद्भुत रचना के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करना।
1: जी।
2: ये कालखंड था 1961 का।
1: जी।
2: और उस समय भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी कि हमने चीन से अपना युद्ध हारा था। और मैं ये मानता हूं कि जब भी कोई अतीव दुख हो, बहुत अधिक दुख जिसका कोई उपचार न हो,
1: जी जी,
2: तो उसमें कहीं पर कोई संगीत, कोई गीत, कोई प्रार्थना ही एक फाहे की तरह उसको धीरे से सहलाती है ताकि हम अपना दर्द भूल सकें।
1: बिल्कुल, औषधि का काम करती है।
2: बिल्कुल। और इसी समय जो फिल्म एक आई थी उस फिल्म का एक गीत आपको सुना रहा हूँ जिसमें बहुत ही विद्वान गुणी संगीतकार जयदेव जी ने संगीत दिया था।
1: जी जी।
2: और गाया था लता मंगेशकर जी ने। आप जब ये रचना सुनेंगे तो आप स्वयं साथ में गाने लगेंगे, लेकिन इस रचना को सुनाने के पहले मेरा एक आग्रह है।
1: जी जी।
2: आप में से जो संगीत के विद्यार्थी हैं वो उसको इस दृष्टि से सुने कि ये शायद उन बहुत ही बिरले गानों में से है जहां स्थाई और अंतरे की धुन एक ही है।
1: जी।
2: लेकिन सा बदल गया है। स्थाई जो है वो सा से है और वही धुन, वही नोटेशन अगर आप म से गाएं तो वो अंतरा बन जाता है।
1: जी जी।
2: तो मैं आपको पहले गा के सुनाता हूं तो आपको रचना याद आ जाएगी।
1: जी।

0: अब मैं स्थाई में अंतरा गा सकता हूँ, अंतरे की धुन में स्थाई गा सकता हूँ।
1: क्या बात,
0: क्योंकि नोटेशन वही है, केवल सा से अगर वो नोटेशन गाया जाए तो स्थाई है, मध्यम से गाया जाए तो अंतरा है।
1: जी।
0: और ऐसी रचना के लिए मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे आदरणीय जयदेव जी के उस महान प्रतिभावान संगीतकार की प्रतिभा को नमन करें। और लता जी ने इसको जिस ढंग से गाया है
1: जी।
0: वो तो खैर अद्वितीय है, अतुलनीय है
1: जी।
0: मैं चाहूँगा श्रोता आनंद लें। अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो।

0: हम दोनों फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में हमारे श्रोता सुन रहे थे। शेखर दादा, अब इस गाने के बाद आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनवाएंगे?
1: मैं अभी तक तो आपको शब्द सुना रहा था, स्वर सुना रहा था
0: जी।
1: लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको शब्द सुनाऊं।
0: जी जी जी,
1: क्या? और 600 वर्ष पहले सिख पंथ के जो प्रवर्तक थे आदरणीय गुरु नानक देव जी, उन्होंने एक विलक्षण

0: परंपरा को जन्म दिया था। उस कालखंड में अगर आप देखें तो उत्तर भारत में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने संगीत के माध्यम से उपासना की पद्धति शुरू की, जो हमारे यहाँ हवेली संगीत के नाम से प्रसिद्ध है। और पूर्व में देखें तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन गा रहे थे और गवा रहे थे, पर पंजाब में गुरु नानक देव जी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कवि भी थे, उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की और उन्होंने इसको कहा कि केवल मेरे या मेरे शिष्यों के या मेरी परंपरा को मानने वाले ही नहीं
1: जी जी,
0: बल्कि अन्य संतों की रचनाओं को भी हम संकलित करें
1: जी।
0: और एक गुरु ग्रंथ साहब के रूप में उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है ग्रंथ साहब, वही प्रकाश स्तंभ की तरह सिख संप्रदाय को दिशा निर्देश देता रहेगा। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ी अद्भुत परंपरा उन्होंने चालू की। और अगर आप कभी देखने का आपको अवसर मिले गुरु ग्रंथ साहब, तो हर एक शब्द के ऊपर
1: जी
0: उसके राग का नाम लिखा हुआ है कि किस राग में उसको गाना है।
1: बहुत बढ़िया जानकारी।
0: तो ये एक बड़ी अद्भुत परंपरा कि संगीत के साथ, प्रार्थना के साथ और आध्यात्मिक शब्दावली के साथ उन्होंने जोड़ा। और उन्होंने कहा कि इसमें जो कुछ भी है वो शब्द है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म है
1: जी। क्या बात।
0: तो उसके बाद जो खालसा पंथ की शुरुआत होती है वो उसके काफी दिनों बाद, वो 1699 में जो दसवें गुरु थे
1: जी जी,
0: गुरु गोविंद सिंह जी, तो उन्होंने फिर खालसा पंथ की स्थापना की। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपने ही स्वर में सुना रहा हूं। वैसे तो आपको मिल जाएंगे गुरु ग्रंथ साहब से या शब्द बहुत अच्छे अच्छे गायक हमारे देश में हैं, पर मैं इस लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि गुरु नानक देव जी की बानी गाने का मुझे अवसर मिले।
1: और हम नहीं लोभ संवरण कर पा रहे हैं कि हम बार बार आपसे अनुरोध करते रहे, तो जरूर गाएं दादा।
0: ये मेरी माँ की स्वर रचना है। अच्छा। शब्द गुरु नानक देव जी के।
1: जी, अनीता सेन जी।
0: जी।

0: क्या बात है, अद्भुत रचना आपने सुनाई और अद्भुत स्वर में आपने समा बांधा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब हमें लगता है कि इस कड़ी को यहीं पर समेटना होगा। श्रोताओं से लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन, तबला संगत आशीष विश्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं,
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं,
2: हाँ जी, हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं, अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
3: कुछ लिखा
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को।
2: करवादा,
1: हाँ जी वादा।
0: ध्वनि तरंगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम कुछ ही पलों के बाद।
4: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

आइए सुने भूले बिसरे गीत। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। और आज सबसे पहले हम इस गाने से शुरुआत कर रहे हैं, तब तक आप सोचिए कि आखिर क्या वजह हो सकती है, आज ऐसा क्या खास दिन है।

मजू सुल्तानपुरी के बोल थे वसंत देसाई की तर्ज अर्धांगिनी फिल्म का ये गाना था। आपको बता दें कि हर साल 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को भारतीय डाक दिवस मनाया जाता है। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी और 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक हर साल भारत में मनाया जाता है नेशनल पोस्ट वीक यानी राष्ट्रीय डाक सप्ताह। हर दिन एक अलग अलग आयोजन होता है, उसमें से एक आयोजन फिलेटली या डाक टिकट जमा करने पर भी होता है। चिट्ठियां बहुत जरूरी हिस्सा रही हैं हमारी जिंदगी का।

आपने ट्यून किया है विविध भारती मुंबई FM 102.8 पर। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मराठी समाचार आकाशवाणी पुणे केंद्र से।

मौसी फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में था। भरत व्यास की बोलते संगीत वसंत देसाई का, और ये थी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश।

0: जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे वहां रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिनपॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हम ही रही प्यार के।

साहिल उद्यान जी के बोल थे, एस डी बर्मन की तर्ज प्यासा फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आज है गुरुदत्त की याद का दिन और आज के फनकार कार्यक्रम सुबह 9:30 पर उन्हीं पर केंद्रित होगा।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम जारी रहेगा संतराल के बाद।

0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना ताना एक समान।
1: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के।

इसी के साथ अब आज का हम हे रही प्यार के कार्यक्रम खत्म होता है। हम विविध भारती से बोल रहे हैं प्रतीक्षा समाचारों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता की। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद किया गया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल। अमेरिका ने वैश्विक बाजार में रूसी डीजल की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में अगले वर्ष अप्रैल तक ढील दी। ये फैसला ईंधन की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि के बीच लिया गया। खेलों में पुतुल सोनवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल्स चैंपियन ऑफ चैंपियंस प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंचकर देश के लिए पहला पदक सुनिश्चित किया। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और उनके समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने कल नई दिल्ली में महिला और बाल विकास विभाग के 2 दिन के राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्रों को सामुदायिक भागीदारी के केंद्रों के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वोकल फॉर लोकल और एक जिला एक उत्पाद जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सम्मेलन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इसमें पोषण और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल, बाल संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण तथा बेहतर समन्वय के माध्यम से योजनाओं को मजबूती से लागू करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेजी से बदलती तकनीक के दौर में युवाओं से अपने कौशल को लगातार बेहतर बनाने और नई तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर शंघाई में आयोजित वैश्विक कौशल प्रतियोगिता 2026 में भाग लेने वाली भारतीय टीम के सदस्यों से बातचीत के दौरान ये बात कही। प्रधानमंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिभागियों को बधाई दी। उन्होंने युवाओं से अंतर्राष्ट्रीय बाजार की जरूरतों के अनुरूप अपने कौशल को विकसित करने को कहा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस ने पहले दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से कम 10 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है।
1: 7 तारीख को इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें उन्होंने एक इंटीमेशन दिया है कि वो 10 तारीख को प्रदर्शन करने आ रहे हैं अकाउंटेबिलिटी ऑफ CEC के रिगार्डिंग। इस इंटीमेशन पर गौर किया गया और इसको कंसिडर करते हुए आगे देखा गया कि नहीं, ये बहुत ही कम समय में पहले तो प्राप्त हुआ है। जो हमारी लेट डाउन गाइडलाइंस है कि हमें धरना के 10 दिन पहले से ये चाहिए होता है और वो नहीं था।
0: सुश्री प्रसाद ने कहा कि पार्टी की ओर से पहले नियमों और आश्वासनों का पालन न करने, मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति, लोगों की सुरक्षा और नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए अनुमति नहीं देने का फैसला किया गया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो के 45 स्टेशनों पर आज प्रवेश और निकास बंद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है, जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है।
3: लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमने स्पेशल डिप्लॉयमेंट्स किए हैं। दिल्ली में 7 मेजर रेलवे स्टेशन हैं, उन पे सभी पे हमने

0: राउंड द क्लॉक डिप्लॉयमेंट किया है। टोटल हमने 334 जो जीआरपी के पुलिस पर्सनल हैं वो लगाए हैं, जिसमें 120 के आसपास लेडी पुलिस हैं, प्लस हमने सीएपीएफ की भी मांग की है, उनको भी राउंड द क्लॉक हम डिप्लॉय करेंगे।
1: वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम डीएमआरसी ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन। दांत खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
4: तो शुरू करें।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत उन्नत सैन्य उपकरणों के एक भरोसेमंद निर्यातक के रूप में उभर रहा है। कल नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के चैंपियंस अवार्ड समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि मौजूदा दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा बदल गई है। अब राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सशस्त्र बलों की ताकत से नहीं बल्कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से भी तय होती है।
2: हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में रिकॉर्ड 38,424 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और ये पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में अप्रोक्सीमेटली 60% अधिक है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ये अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ 7 मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और समाजवादी पार्टी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सचिव तथा रिटर्निंग अधिकारी अजित वर्मा ने इसकी पुष्टि की।
3: प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा उम्मीदवारों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के लक्ष्य और देश के विकास में योगदान देंगे। समाजवादी पार्टी के 10वीं सीट के लिए तीसरा उम्मीदवार न उतारने के फैसले के बाद ही ये तय हो गया था कि सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 10 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर को खत्म हो रहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल नियुक्त होने के बाद इस्तीफा देने के कारण उनकी राज्यसभा सीट भी खाली हो गई थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा और असम के लोकसभा उपचुनाव में शानदार जीत हासिल की है, जबकि तमिलनाडु में 2 विधानसभा सीटों का उपचुनाव सत्तारूढ़ तमिलगा वेट्री कशगम टीवीके ने जीता है। पुदुचेरी में सत्तारूढ़ ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस ने तट्टांचावड़ी विधानसभा सीट बरकरार रखी है। श्री मोदी ने विजयी भाजपा उम्मीदवारों को बधाई दी है और पार्टी कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की सराहना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। राष्ट्र सेवा के संकल्प और जनसेवा के मंत्र के साथ उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी है। आज की इस विशेष श्रृंखला में हम जानेंगे कि किस तरह ये दृष्टिकोण धरातल पर साकार हो रहा है। इसी कड़ी में बात होगी जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के गौरवशाली इतिहास को समर्पित संग्रहालयों और गौरव दिवस की।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के तहत हर साल 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, जो अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती भी है। विजन के

0: तहत रांची की पुरानी केंद्रीय जेल में 142 करोड़ रुपए की लागत से बने भव्य जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय ने देश में एक नई चेतना जगाई है। आदिवासियों के आत्मसम्मान को पुनर्स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि जनजातीय समाज के योगदान के बिना भारत का स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है।
1: हमारे पूर्वोत्तर के आदिवासी सेनानियों ने और देश के भी हमारे आदिवासी सेनानियों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है। इस परंपरा को सम्मान देने के लिए देश लगातार काम कर रहा है। 15 नवंबर को हर साल भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा।
0: राज्य की गौरवशाली सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करता एक अनूठा जनजातीय संग्रहालय गुमला जिला मुख्यालय स्थित संत इग्नेशियस हाई स्कूल परिसर में भी स्थापित है। स्थानीय ग्रामीण कहते हैं कि इस भव्य जनजातीय संग्रहालय में पूर्वजों के पारंपरिक औजारों, कपड़ों और दुर्लभ कलाकृतियों को देखकर हमें गर्व होता है।
2: आदिवासी संग्रहालय को देखने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये संग्रहालय का होना बहुत जरूरी था।
0: वहीं दूसरी ओर भगवान बिरसा मुंडा की पावन जन्मभूमि खूंटी जिले में भी जनजातीय नायकों के सम्मान और जन सेवा की योजनाओं का व्यापक असर देखा जा सकता है। ऐतिहासिक क्रांति के केंद्र रहे इस जिले में अब सुदूर गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंच रही हैं। भगवान बिरसा मुंडा के वंशज सुखराम मुंडा कहते हैं कि गौरव दिवस के जरिए हमारे नायकों के बलिदान को आज पूरी दुनिया सम्मान दे रही है।
3: बिरसा मुंडा गाँव गाँव संगठन बनाने के लिए घूमे और संगठन बना करके लोगों के साथ समझाया और संगठन बनाया, इसीलिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़े और अपना जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ाई लड़े। अभी हम लोग अच्छे हैं और देश का विकास अच्छा हो रहा है।
0: सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण के साथ साथ आदिवासी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास आज झारखंड की नई पहचान बन रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए गुमला से नरेश जायसवाल और खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग के साथ मैं रांची से पूनम केरकेट्टा।
4: उत्तर प्रदेश सरकार ने जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नोएडा जेवर करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। इसमें रूस के डीजल ईंधन की बिक्री, वितरण, अनलोडिंग और आयात से संबंधित लेनदेन को अधिकृत किया गया है। भारत के पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक सुनिश्चित कर लिया है। उधर रांची में कल दूसरे T20 क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज ने भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली है।
5: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है
6: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
5: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
6: आज ही www.pgportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
5: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
7: धन्यवाद कनकलता। जंतर मंतर पर आज होने वाले प्रदर्शन पर दैनिक जागरण की सुर्खी है, प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो प्रदर्शन अवैध। प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम को अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर ने दिल्ली पुलिस द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर नागरिकों को लिखे गए खुले पत्र की चर्चा करते हुए लिखा, खाकी वर्दी वाले भी इंसान है जिसका अपना परिवार, अपने लोग, फर्क सिर्फ वर्दी का है, इंसानियत का नहीं। संयुक्त राष्ट्र की पूर्व मानवाधिकार प्रमुख और अंतर्राष्ट्रीय अदालत की न्यायाधीश रही भारतीय मूल की नवनीतम नवि पिल्लई को शांति का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा आज के अखबारों के पहले पन्ने पर है।
4: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने आज राष्ट्रीय राजधानी के जंतर मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार किया, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किशोरियों के स्वास्थ्य, पोषण और समग्र विकास पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। और वेस्टइंडीज ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी डाक दिवस पर आधारित है। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी कारण विश्व डाक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 1 जुलाई सन 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। पहली बार जब वर्ष 1766 में भारत में डाक व्यवस्था शुरू की गई, आज ये विभाग गांव शहरों में बड़ी संख्या में सेवाएं दे रहा है। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1854 को हुई। भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच डाक सप्ताह मनाता है। भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई और 1 अक्टूबर 1854 में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया। भारत में पहला ऑफिस कोलकाता में सन 1774 में खोला गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है, इसमें जुड़े कर्मचारियों की सेवाओं को मान सम्मान मिले एवं लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका के साथ साथ वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के लिए जागरूकता लाना है।

जिनके पास ये चिट्ठियां हैं वे उनमें माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, भाई बहन, अन्य रिश्तेदारों का प्यार, चिंता, प्रतीक्षा, प्रेम की भावनाओं से आज भी जुड़ जाते होंगे। सब कुछ उन कागजों में सांस लेने लग जाता है, वो दौर आंखों के आगे तैर जाता है।

आज तकनीकी आधुनिकता के दौर में सब चिट्ठियां इंटरनेट और मोबाइल्स में आ गया है, लेकिन पत्रों को लिखने, भेजने और जवाब पाने का इंतजार भी दिल में खुशी ले आता है। ये माना कि मोबाइल में फटाफट लिखा और एक क्लिक पर सामने वाले के पास पहुंच गया, लेकिन वो चिट्ठी पत्रों की जगह तो नहीं ले सकता। आज डिजिटल दुनिया ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया है, लेकिन कभी कभी लगता है हमें फिर से उस चिट्ठी वाले समय की जरूरत है, जहां किसी के दो शब्द पाने के लिए दिल घंटों नहीं दिनों तक इंतजार करता था। चिट्ठियां चली गईं, डाकिया चले गए, पर किसी अपने के संदेश का इंतजार आज भी वही है, क्योंकि माध्यम बदले हैं, भावनाएं नहीं।

आपने ट्यून किया है विविध भारती मुंबई FM 102.8 पर। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे मराठी समाचार आकाशवाणी पुणे केंद्र से।

एआर रहमान और साथियों की आवाजें थी। फिल्म का नाम दिल से। विविध भारती पर चित्रलोक यूनुस खान के संग, गुलजार के बोल, रब्बी शेरगिल की आवाज, जब तक है जान।

तुचि रैना और रेखा भारद्वाज की आवाजें थीं। आज है अभिनेत्री रेखा का जन्मदिन, भानु रेखा गणेशन। 10 अक्टूबर 1954 को रेखा का जन्म हुआ था और रेखा की जो फिल्म यात्रा है वो बहुत ही शानदार रही है। एक से बढ़कर एक फिल्में उन्होंने की हैं और हम आपको उस फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, रेखा को जन्मदिन की बधाइयां देते हुए, जिसने रेखा को शोहरत की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उनके अभिनय का लोहा सारी दुनिया ने माना। मुजफ्फर अली की फिल्म उम्र अफजान।

0: शहरयार के बोल थे खयाम की तर्ज उमराव जान फिल्म का ये गीत आशा भोसले की आवाज में आशा जी को मिला था राष्ट्रीय पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ गायिका का और इस फिल्म के लिए रेखा को मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार।
1: जिसे तुम भटकना कहती हो ना मानसी, मैं उसे और जानने की तलाश कहता हूं, एक दूसरे को जानने की तलाश। मैं इस जमीन पे भटकता हूं कितनी सदियों से, गिरा है वक्त से कटके जो लम्हा उसकी तरह, वतन मिला तो गली के लिए भटकता रहा, गली में घर का निशान ढूंढता रहा बरसों। तुम्हारी रूह में अब जिस्म में भटकता हूं, तुम्ही से जन्मूं तो शायद मुझे पनाह मिले।

0: कार्यक्रम जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है दुश्मन
1: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
2: मैं निकला ओ गड्डी लेके,
0: पिंजर
3: मार उड़ाई,
0: दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: सेहत की कुछ जरूरी जानकारी, फिटनेस के कुछ आसान सूत्र।
1: What is exactly 4+1=100? ये फॉर्मूला क्यों बनी है? हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है। हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ प्लस वन। ये चार उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व। सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है।
0: एक स्वस्थ जीवन शैली की सही राह दिखाने वाले वेलनेस गुरु हैं डॉक्टर राज अशोक शेट्टी।
1: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है। उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है।
0: तो सुनिए डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से बातचीत मैटिनी शो 10 अक्टूबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
3: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
2: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
3: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
2: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

फैसल जाफरी और संदीप श्रीवास्तव की बोल थी। प्रीतम की तर्ज थी, पेपॉन की आवाज थी, फिल्म का नाम था मेट्रो। इन दिनों इसी के साथ खत्म होता है आज का चित्रलोक कार्यक्रम।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम बोल रहे हैं विविध भारती से। आज के फनकार, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
3: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: वो म्यूजिक डायरेक्टर कुछ न कुछ नई चीज लाने की कोशिश में रहता है और मुझे नई नई चीजें गाने का बड़ा शौक है।
2: हर दिल अजीज गायिका आशा भोसले पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए।
1: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपने गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीम साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनने वालों को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सलाम उस विलक्षण प्रतिभा को, एक अभिनेता, एक निर्देशक, एक जज्बाती इंसान।
1: जो किसी इंसान से कोई शिकायत नहीं, मुझे शिकायत है समाज के उस ढांचे से जो इंसान से उसके इंसानियत छीन लेता है। मतलब के लिए अपने भाई को बेगाना बनाता है, दोस्त को दुश्मन बनाता है। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है, जहां किसी के दुख दर्द पे तो आंसू बहाना पुस्तली समझा जाता है, चुप के मिलना है कमजोरी समझा जाता है। ऐसे माहौल में मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी मीना, कभी शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मैं दूर जा रहा हूं।

0: तो।
1: गुरुदत्त की फिल्में अपने समय से बहुत आगे थीं। कामयाब रही हो या नाकाम, उन्होंने शिद्दत भरी कहानियां दी, कहानियों से रुलाया, हंसाया।
2: बगियन का मेहमान है, फिर भी जानना कलियन की मुस्कान है। भंवरा बड़ा नादान।
1: गुरुदत्त का वास्तविक नाम वसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण था। गुरुदत्त अपने आप में एक संपूर्ण कलाकार बनने की पूरी पात्रता रखते थे। वे विश्व स्तरीय फिल्म निर्माता और निर्देशक थे। साथ ही में उनकी साहित्यिक रुचि और संगीत की समझ की झलक हमें उनकी सभी फिल्मों में दिखती है।

आइए गुरुदत्त की जिंदगी की कुछ बेमिसाल कहानियाँ आपको सुनवाएं। गुरुदत्त की जिंदगी के बारे में काफी कुछ आप जानते हैं, उनकी बहुत सारी फिल्मों से आप वाकिफ हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ यादगार अनमोल वाक्य। गुरुदत्त और देवानंद की दोस्ती बड़ी गहरी थी। दरअसल दोनों की पहली मुलाकात प्रभात स्टूडियो पुणे में हुई थी। दोनों के कपड़े एक ही जगह पर धुलने और इस्त्री करने को जाते थे।

एक बार बड़ा दिलचस्प किस्सा हुआ। वो ये कि गुरुदत्त की शर्ट देवानंद के यहाँ और देवानंद की शर्ट गुरुदत्त के यहाँ चली गई और दोनों ने एक दूसरे की शर्ट भी पहन ली। दोनों की जब स्टूडियो में मुलाकात हुई, अचानक गुरुदत्त की नजर देवानंद की कमीज पर गई। उन्हें पहचानी सी लगी और वे पूछ बैठे, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? देवानंद थोड़ा सकपकाए पर बोले, ये शर्ट मेरे स्त्री वाले ने किसी की सालगिरह पर पहनने के लिए दी है। लेकिन जनाब, आपने जो कमीज पहनी है वो कहाँ से खरीदी? गुरुदत्त ने शरारती अंदाज में कहा कि ये कमीज उन्होंने कहीं से चुराई है। दोनों को बात समझ में आ गई और जोरदार ठहाका लगाते हुए एक दूसरे के गले मिल गए और फिर उनकी दोस्ती का बंधन हमेशा के लिए मजबूत हो गया। पूना शहर में घूमते हुए एक दिन गुरुदत्त ने देवानंद से कहा, देव, अगर मैं कभी निर्देशक बनूंगा तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। देवानंद ने उतनी ही गहनता से जवाब दिया, और अगर मैंने कभी कोई फिल्म प्रोड्यूस की तो तुम मेरे पहले निर्देशक होगे। देवानंद को ये वादा याद रहा। जब नौकेतन फिल्म्स के बैनर तले बाजी फिल्म बनने का फैसला हुआ तो निर्देशन की जिम्मेदारी देवानंद ने गुरुदत्त को सौंपी।

ये था बाजी फिल्म का गीत। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात गायिका गीता रॉय से हुई और दोनों के बीच प्रेम का झरना प्रस्फुटित हुआ। उस समय गीता रॉय एक पार्श्व गायिका के रूप में मशहूर हो चुकी थीं। उनके पास एक लंबी गाड़ी हुआ करती थी। वो गुरुदत्त से मिलने उनके माटुंगा वाले फ्लैट पर आया करती थीं। सरल इतनी थीं कि रसोई में वे सब्जी काटने बैठ जाती थीं। अपने घर से वो ये कहकर निकलती थीं कि वो गुरुदत्त की बहन से मिलने जा रही हैं। उस दौरान राज खोसला गुरुदत्त के असिस्टेंट हुआ करते थे। उन्हें गाने का बड़ा शौक था। गुरुदत्त के यहाँ होने वाली बैठकों में राज खोसला और गीता रॉय डुएट गाया करते थे और पूरा दत्त परिवार बैठकर उनके गाने सुनता था। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी गुरुदत्त और गीता के प्रेम पत्र एक दूसरे के पास पहुंचाया करती थीं और 1953 में गुरुदत्त और गीता रॉय विवाह के बंधन में बंध गए।

0: गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर में कई नए तकनीकी प्रयोग भी किए। जैसे फिल्मबाजी में उन्होंने दो नए प्रयोग किए। 100 mm के लेंस का क्लोजअप के लिए इस्तेमाल पहली बार किया, करीब 14 बार। इससे पहले कैमरा इतने पास कभी नहीं आया कि उन दिनों कलाकारों को बड़ी असहजता के अनुभव से गुजरना पड़ा। तब से उस स्टाइल का नाम ही गुरुदत्त शॉट पड़ा।
1: बैठ जाओ। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, जानते हो रास्ता कहाँ जाके खत्म होता है?
2: यही, इसी जगह।
1: वाह वाह, क्या कहने हैं सादर जवाबी।
2: आपको और कुछ पूछना है?
1: हाँ, बहुत कुछ पूछना है। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? यहाँ अच्छों अच्छों के छक्के छूट जाते हैं। तमीज से बात करो।
2: आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। मैं उसके लिए तैयार होकर आया हूँ।
1: देखो, मुझे तुमसे कोई जाती दुश्मनी नहीं, ना ही मैंने कभी अपनी पोजीशन का नाजायज फायदा उठाया, और ना ही मैं तुम्हारे सुपुर्द बदला लेना चाहता हूँ।
2: दूसरे ले ही चुके हैं, आप भी ले लीजिए।
1: कौन ले रहा है बदले तुमसे?
2: कोई नहीं।
1: सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलवाया है कि तुम ये नीच काम फौरन छोड़ दो। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तुम्हें कहीं अच्छी जगह नौकरी दिलवा दूंगा।
2: मुझसे कहे कितनी हमदर्दी, समझा?
1: मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे तो सिर्फ उस लड़की का ख्याल आता है जो तुम्हारी वजह से इतनी परेशान है। क्या तुम्हारा उसकी तरफ कोई फर्ज नहीं है? तुम नहीं जानते वो तुम्हें कितना प्यार करती है।

किसी भी फिल्म में पहली बार गानों का उपयोग कहानी को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। वैसे ही फिल्म कागज के फूल हिंदुस्तान में सिनेमा स्कोप में बनी पहली फिल्म थी। दरअसल इस फिल्म के लिए गुरुदत्त कुछ अनोखा, कुछ हटके करना चाहते थे, जो आज तक भारतीय फिल्म के इतिहास में कभी नहीं हुआ। संयोग से तभी एक हॉलीवुड की फिल्म कंपनी 20th Century Fox ने उन दिनों भारत में किसी सिनेमा स्कोप में बनने वाली फिल्म की शूटिंग खत्म की थी और उसके स्पेशल लेंस मुंबई में उनके ऑफिस में छूट गए थे। जब गुरुदत्त को इसका पता चला तो वे अपने सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति को लेकर तुरंत वहां गए, लेंस लेकर कुछ प्रयोग किए, रशेस देखे और फिर फिल्म के लिए इस फॉर्मेट का उपयोग किया।

गीता दत्त की हसीन आवाज में गाए और फिल्म में स्टूडियो की पृष्ठभूमि में फिल्माए गए इस गीत में भी एक ऐसा प्रयोग किया गया जो बाद में बहुत मशहूर हुआ अपने बेहतरीन लाइटिंग की खूबसूरत संयोजन की वजह से। गुरुदत्त इस क्लाइमेक्स के सीन में कुछ अलग ही नाटकीयता और रियल लाइफ का विरोधाभास प्रकाश व्यवस्था के माध्यम से व्यक्त करना चाहते थे। ब्लैक एंड व्हाइट रंगों से नायक और नायिका के मन की एक रस्ता खालीपन और दौलत के खत्म होते एहसास को अलग ही अंदाज में फिल्माना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने नटराज स्टूडियो में शूटिंग शुरू की तो उनके सिनेमेटोग्राफर वीके मूर्ति ने उन्हें वेंटिलेटर से छन कर आती धूप की एक तेज किरण दिखाई तो गुरुदत्त बेहद रोमांचित हो उठे और उन्होंने इस इफेक्ट को ही उपयोग करने का मन बना लिया। वे वीके मूर्ति से बोले, मैं शूटिंग के लिए भी सनलाइट ही चाहता हूँ क्योंकि जिस प्रभाव की मैं कल्पना कर रहा हूँ वो बड़ी आर्क लाइट से अथवा कैमरे की अपर्चर को सेट करके नहीं आएगा। तो फिर तो बड़े बड़े आईने स्टूडियो के बाहर रखे गए जिनको बड़ी मेहनत से सेट करके वो प्रसिद्ध सीन शूट किया गया जिसमें गुरुदत्त और वहीदा के बीच में वो तेज रोशनी का बीम आता है। साथ में चेहरे के क्लोजअप में अनोखे फैंटम इफेक्ट से उत्पन्न हुए एम्बियंस से हम दर्शक ठगे से रह जाते हैं।

गुरुदत्त के नाम से लगता था कि वो बंगाली थे, लेकिन उनका जन्म मैंगलोर में हुआ था और उनकी मातृभाषा कोंकणी थी। उनको बचपन से ही नृत्य का बहुत शौक था, इसलिए 15 साल की उम्र में ही वो महान नर्तक उदय शंकर से नृत्य सीखने अल्मोड़ा चले गए। 16 साल की उम्र में उन्हें एक मिल में 40 रुपए माह की टेलीफोन ऑपरेटर की नौकरी मिली। जब उन्हें पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने अपने अध्यापक को एक भगवद गीता, माँ के लिए साड़ी, पिता के लिए कोट और बहन ललिता के लिए एक फ्रॉक खरीदी। गुरुदत्त जब गीता रॉय के लिए कोई उपहार खरीदते तो बहन ललिता के लिए भी कुछ न कुछ खरीद के लाया करते थे। गुरुदत्त भाई बहनों में सबसे बड़े थे और जब उनमें और दूसरे भाई आत्माराम में लड़ाई होती थी तो गुरुदत्त ही उन्हें आकर बचाते थे। उदय जी के पास ही गुरुदत्त को एहसास हो गया कि फिल्मों में वे न सिर्फ अपनी प्रतिभा का सही इस्तेमाल कर पाएंगे बल्कि रोजगार से भी नाता जुड़ जाएगा। गुरुदत्त पुणे पहुंचे और थोड़ी जद्दोजहद के बाद उन्हें प्रभात फिल्म कंपनी में काम मिल गया।

0: 1945 में फिल्म लाखा रानी से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में फिल्म हम एक हैं में उन्होंने सहायक निर्देशक और नृत्य निर्देशक की जिम्मेदारी भी संभाल ली। सन 1947 में प्रभात फिल्म कंपनी से गुरुदत्त का अनुबंध समाप्त हो गया। उन दिनों गुरुदत्त संघर्षरत देवानंद और रहमान के साथ एक कमरे में रहते थे। फिर गुरुदत्त मुंबई चले आए। वे करीब 10 माह तक बेरोजगार रहे। फिर उन्होंने अमिय चक्रवर्ती और ज्ञान मुखर्जी जैसे निर्देशकों के साथ काम किया। गुरुदत्त को उन दिनों लगने लगा कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें फिल्म निर्माता भी बनना होगा। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी बना ली और उस बैनर पर पहली फिल्म आर पार बनाई, जो सन 1954 में रिलीज हुई।
1: इधर आओ, छोड़ता नहीं इधर। अपने 2 रुपये, अरे तुम्हें अपनी चिंदिया, अबे देखता क्या है, चल उठा जल्दी कर पकड़ अपना कोट, वो रहा दरवाजा और सीधा निकल जा बाहर। अगर फिर मैंने तेरी कमीनी सूरत यहाँ देखी तो टांगे तोड़ दूंगा, याद रखो।
2: लाला जी, आप अगर इतने ऐठे हुए ना होते तो मैं आपको सब कुछ समझा देता।
1: अबे तू जाता है कि नहीं, जो कुछ देखा है उसके बाद कुछ समझना बाकी रह गया? हमारा नौकर और अभी तक उठने की कोशिश करता।
2: नौकर जरूर हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं सर भी नहीं उठा सकता।
1: नमक हराम की बातें तो सुनो, सर उठाएगा। अबे तेरी हैसियत ही क्या है सर उठाने की? कल तक तो सड़कों में भूखा मरता था, है? तुझ में और एक नीच भिखारी में फर्क क्या है?
2: वक्त वक्त की बात है लाला जी, आज यारों का वक्त ढीला है तो आप लाल पीले होकर बातें कर रहे हैं, और कल जब यही वक्त पलटे।
1: अबे जा जा, बड़ा आया वक्त पलटाने वाला, पहले किसी काबिल हो ले फिर आंख मिलाकर बात करना, चल दफा हो यहाँ से।
0: इसके बाद गुरुदत्त ने मिस्टर एंड मिसेस 55 बनाई सन 1955 में। ओपी नैयर के संगीत से सजी इस फिल्म के गाने खूब मशहूर हुए।

गुरुदत्त ने आगे भी जितने फिल्में बनाई उनमें गीत संगीत का संयोजन बेमिसाल रहा। 14वीं का चांद हिंदी सिनेमा के 10 सर्वश्रेष्ठ संगीत प्रधान फिल्मों में से एक गिना गया। उनकी फिल्मों के संगीत का आकर्षण आधी सदी से लगातार जादू जगा रहा है। आइए सुने ये गीत।

0: इसके बाद गुरुदत्त ने जो फिल्में बनाई उनमें प्यासा, कागज के फूल, साहबीबी और गुलाम भारतीय फिल्मों के इतिहास में मील के पत्थर का काम किया। इन तीनों फिल्मों के निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त एक रूप हो गए। गुरुदत्त के बारे में अभिनेत्री वहीदा रहमान क्या कहती हैं?
1: आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है। तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। यहाँ गुरुदत्त जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है, लगता है क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है। तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे। डायरेक्ट तो वो बहुत ही बढ़िया थे क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है। उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ। कागज़ के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर हैं वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना

लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है। और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा, ये कैसे गाना होगा? तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूँ, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉर्ट्स होंगे उस पर वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। और उसमें तो मैं कहूँगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज़ एनहांस हुई थी, मैंने और बढ़िया दिखती थी।

0: गुरुदत्त बचपन से ही बड़े रचनात्मक थे। उन्हें पतंगे उड़ाने का बड़ा शौक था। अपनी पतंगे खुद ही बनाते और फिर उड़ाते थे। उनका बचपन कोलकाता में गुजरा था, शायद इसीलिए उन्हें कोलकाता से बड़ा लगाव था। जब वे कोलकाता जाते तो गोलगप्पे और विक्टोरिया मेमोरियल के लॉन में बैठकर झालमुड़ी जरूर खाते थे। एक बार वहीं जब वे झालमुड़ी खा रहे थे तो देखा कि चारखाने की लुंगी और एक अजीब सी टोपी पहने, हाथ में तेल की बोतल लिए हुए एक मालिश वाला आवाज लगा रहा है।
1: विजय बाबू, आज सत्तार भाई आपकी स्पेशल मालिश करेंगे और वो भी फोकट।
0: वहीं से उनके मन में एक किरदार ने आकार लिया और जॉनी वॉकर के लिए खास तौर से ये गाना लिखवाया गया।
2: मालिश, तेल मालिश,

0: फिल्मी दुनिया के खजाने में गुरुदत्त से जुड़े तमाम किस्से हैं जो आज आपकी रेडियो सखी यहाँ आपको सुना रही है। एक बार गुरुदत्त ने तय किया कि वो साहिल लुधियानवी की नज्म को अपनी फिल्म में इस्तेमाल करेंगे। रिकॉर्डिंग के रिहर्सल के लिए तय समय पर मोहम्मद रफी उनके यहाँ पहुँच गए, लेकिन संगीतकार सचिन देव बर्मन पहुँचे नहीं थे। गुरुदत्त ने मोहम्मद रफी से कहा, आप संगीत के बादशाह हैं, आप क्यों नहीं बिना संगीत के इस नज्म को गुनगुना देते। रफी ने थोड़ी देर सोचा, सकुचाए और उस नज्म को अपनी सुरीली आवाज में गाने लगे। गुरुदत्त ने उसे अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड किया और हूबहू अपनी फिल्म प्यासा में इस्तेमाल किया। स्टूडियो में रिकॉर्ड न होने की वजह से उसकी गुणवत्ता जरूर उतनी नहीं थी, लेकिन सीन में वास्तविकता जरूर आ गई।
1: गम इस कदर बढ़े कि मैं घबरा के पी गया, इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया। ठुकरा रहा था
2: अच्छा?
1: मुझको
2: तो ये शायर भी हैं?
3: शायर
1: बड़ी
3: भाई, तू देखती रही उसकी कुछ पांच से नजमें उसके सर के पीछे पड़ी हैं।
1: ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां

फिल्मों के सर्जक गुरुदत्त यूं तो स्वभाव से बड़े गंभीर और चुप रहने वाले थे, लेकिन गुरुदत्त के भीतर एक मस्ती करने वाला

शरारती बच्चा भी था। वे पतंग उड़ाते, मछली पकड़ते और खूब फोटोग्राफी किया करते थे। लोनावाला में उनका एक फार्म हाउस था जहां वो हर साल जाकर खेती किया करते थे। उन्हें फिशिंग में भी दिलचस्पी थी। पवई झील में जॉनी वॉकर और गुरुदत्त खूब मछली पकड़ा करते थे। एक बार उन्हें एक स्कूटर पसंद आ गया। वे उसे चलाते हुए स्टूडियो जा रहे थे, तभी सिग्नल के पास गाड़ी रुकी तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया। वे जैसे तैसे गाड़ी से वहां से निकले। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि कश्मीर में उन्होंने एक बार एक शिकारा देखा तो वे उस शिकारा को कश्मीर से खुलवाकर पवई झील ले आए थे।

आधे घंटे के इस विशेष कार्यक्रम में गुरुदत्त रूपी आसमान को समेटना मुश्किल है। आज हमने उनकी फिल्मोग्राफी की बहुत ज्यादा चर्चा न करते हुए हमने की उनके बारे में किस्सा गोई।

इस कार्यक्रम में शोध, आलेख और स्वर आपकी इस रेडियो सखी ममता सिंह का था। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी।

आज के फनकार।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: गीतों भरी कहानी, आज हम आपको सुनवा रहे हैं ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर है ममता सिंह का।

अब तक आपने सुना आज अचानक ठंड बढ़ गई है, गुनगुनी नरम धूप बदन को सहला रही है। दिव्या अपनी नोटबुक और किताब लेकर हॉस्टल का बरामदा पार करती हुई लॉन में आ गई है। उसे यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी बनाई डॉक्यूमेंट्री एंटरटेनमेंट चैनल पर अप्रूव हो गई है। चुनौतियां बढ़ गई हैं। कल जब मंच पर प्रणव सर ने सबके सामने हाथ मिलाकर उसे कॉन्ग्रेट्स किया तो कितना रोमांच हुआ था, मारे खुशी के जैसे पंख लगाकर वो उड़ चली हो आकाश में। हर इंसान अपनी बेहद खुशनुमा बात किसी आत्मीय अपने घर वालों से शेयर करना चाहता है, लेकिन दिव्या अपनी खुशी का इजहार किससे करे? जब साइबर क्राइम जैसे विषय पर उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने की सलाह दी गई थी तो वो कितना घबराई थी, लेकिन जब प्रणव सर ने उसे छोटी सी बाइट बनाने को कहा तो दोस्तों ने भी फोर्स किया तो उसने ये प्रोजेक्ट ले लिया। प्रोजेक्ट बनाने के दौरान दिव्या को कितनी दिक्कतें पेश आई थीं, कितने पापड़ बेलने पड़े थे। आखिरकार दिव्या के अथक परिश्रम ने रंग लाया और पायलट प्रोजेक्ट तैयार हुआ। उसके सपनों की किताब का पहला अध्याय लिखा गया और उसके नाम डॉक्यूमेंट्री अलॉट हुई। सब्जेक्ट खौफनाक था, चुनौती बड़ी थी। सही मायनों में तो प्रणव सर जो उसके मेन गाइड हैं, उन्होंने ही काफी सहायता की। रात रात भर जाग जाकर इस डॉक्यूमेंट्री की एडिटिंग मिक्सिंग की। टीचर्स का ये पैनल और अच्छे दोस्तों का सहयोग और साथ न मिलता तो दिव्या डॉक्यूमेंट्री तो क्या छोटा मोटा प्रोजेक्ट भी नहीं बना पाती। बचपन से लेकर अब तक के उसके जीवन की ये पहली घटना है जिस पर उसे अपने आप पर गर्व हो रहा है। उसे याद आ गए वो दिन जब क्लास में हर कॉम्पिटिशन उसके लिए सजा थी, वो परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी, नजरें नीचे झुकी हुई होती और मम्मी का चेहरा आंखों के सामने होता था। चाचा की बंदिशें आवाज को जब्त कर लेती थीं। काश आज वो अपने घर में होती तो कितना अच्छा होता। घर वालों की याद आते ही दिव्या मायूस हो गई। एक ऐसी तलहटी में पहुंच गई जहां जाने का रास्ता तो है लेकिन वहां से लौटना नामुमकिन। वो दिन जहन में ताजा हो गया। सूर्यास्त हो रहा था। दिव्या उदास होकर रूठ कर कमरे में बंद हो गई थी। दिव्या के लिए इस तरह का संघर्ष रोजमर्रा में शुमार हो गया था। अपनी एक भी बात मनमाने के लिए उसे ऐसे ही रोजाना जूझना पड़ता था। कॉलेज के फंक्शन में डांस और गाने में पार्टिसिपेट करने का सोचना भी पाप था। दिव्या के घर में कॉलेज का मतलब सिर्फ पढ़ाई, किताबें, इम्तिहान पास करना। एक्स्ट्रा करिकुलर की कोई जगह नहीं थी इस घर में। गुड गर्ल बनकर सिर झुकाकर कॉलेज जाना और घर लौटकर रोजाना आने वाले मेहमानों का स्वागत करना और बड़ी निपुणता से घर के कामकाज करना, यही उसकी बेहतरीन जिंदगी थी। अपनी राय दी नहीं कि 10 मिनट का भाषण सुनने को मिल जाता था। दिव्या के घर वाले इतने पारंपरिक और रूढ़िवादी हैं, अरे समय के साथ विचारों की रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। विचार, उसूल, ये सब दिव्या के घर वालों के लिए महज किताबी अल्फाज हैं। अक्सर ही दिव्या सपनों की एक चमकीली दुनिया में खो जाती थी जहां युवा मन के रोशन चिराग होते हैं और हर ख्वाब मुकम्मल होता है। हर रास्ते की तयशुदा मंजिल होती है। रास्ते में आई हर अड़चन और रुकावट को युवा मन चुटकियों में दूर भगाना चाहता है। भीड़ के महासागर में मन माफिक मंजिल तक पहुंचने के लिए रुकावटों के पत्थर को दूर भी भगाना पड़ता है। सपने पूरे करने के पीछे के संघर्ष को युवा मन उस वक्त कहां समझ पाता है। उमंग और उत्साह में डूबी दिव्या ने भी संजोया मखमली ख्वाब। ख्वाब की मास कम्युनिकेशन में 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करेगी। इसके लिए उसे चाहे जो करना पड़े, घर वालों का विरोध भी वो अफोर्ड कर लेगी। कामयाबी मिल जाना भी कई बार बेहद एकाकी बना देता है। अब सुनिए आगे की कहानी।

इरफान ने घड़ी देखी, उसके लेक्चर का टाइम हो रहा था, वो वहां से चला गया। इरफान के जाते ही दिव्या फिर स्मृतियों की कटीली सघन झाड़ियों में उलझ गई। गोया कोई ऐसी मखमली याद नहीं है जिसके दामन में वो सिर रखकर सुकून पाए, वो नरम स्पर्श से सहलाए। उसकी हर याद कसैली है। बारहवीं की पढ़ाई के दौरान दिव्या ने कभी इंडिपेंडेंट होकर कुछ नहीं किया। बड़ा मन होता था डांस में नाटक में हिस्सा लेने का, पर सब कुछ प्रतिबंधित था। तीन भाई बहनों में सौम्या दी सबसे बड़ी, उसके बाद दिव्या और सोनू छोटा। दिव्या के सामने सौम्या दी एक प्रतिमान की तरह थी। हर बात में सौम्या दी का उदाहरण

दिया जाता था। सौम्या की तरह बनो, उसे देखो, उसने भी तो पढ़ाई की है, वगैरह वगैरह। दिव्या के घर वालों के मुताबिक सौम्या की अच्छाई के कुछ पैमाने निर्धारित थे, जो दिव्या को कतई गवारा नहीं थे। दिव्या ने जब भी पढ़ाई के अलावा अपने देखे सपनों का जिक्र किया तो सौम्या का उदाहरण सामने पेश कर दिया जाता था। एक बार जब दिव्या ने ऊंची आवाज में कह दिया, सौम्या दी को आखिर क्या मिला? हाँ, आधी अधूरी पढ़ाई कर ली, क्या मिला? अब वो अपने घर में ही नौकर से भी बदतर हालत में जी रही हैं। क्या फायदा हुआ इस जिंदगी का? मुझे नहीं बनना है सौम्या, सौम्या, सौम्या, सौम्या। मुझे टीवी चैनल और फिल्म में काम करना है, मुझे सौम्या दी नहीं बनना है। वाक्य पूरा होता इससे पहले ही मम्मी का जोरदार चांटा गाल पर लगा था। उस दिन दिव्या कमरा बंद करके खूब रोई थी। सौम्या दी को फोन लगाकर बोला था, दी ये क्या किया तूने? तूने कभी घर में किसी बात का विरोध ही नहीं किया, गऊ की तरह तू सहती रही, अभी भी सह रही है। सब चाहते हैं मैं भी सौम्या बनूं, पर मैं नहीं बन सकती दी। तू अपनी जिंदगी से खुश नहीं है, फिर भी दिखाती है कि सब कुछ ठीक है, तू बहुत खुश है। तुझे क्या मिलता है सौम्या दी ये नाटक करने में? दी सब ठीक और अच्छे जीवन में फर्क है। जो दीवार तू नहीं तोड़ सकी ना, मैं उसे तोड़कर बाहर निकलकर दिखाऊंगी। मैं उस दीवार से बाहर जाना चाहती हूं।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कौन कौन जा रहे हैं वहाँ? वो लड़के संस्कारी और कुलीन तो है ना? लड़कों से जरा डिस्टेंस मेंटेन रखना। हाँ, वे हाथ मिलाने के बहाने लड़कियों के करीब आते हैं और फिर दोस्ती की कड़ी जोड़ लेते हैं। समझ में आ रही बात ना? पर हमारे यहाँ लड़कों से लड़कियों की दोस्ती नहीं चलती, हम खानदानी लोग हैं। वैसे भी तुम्हें मजबूरी में

को एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। समझाइश की ये पुड़िया चाचा ने थमाई थी। चाची ने कपड़ों पर सवाल उठाया था। झरने में भीग जाओगी, पारदर्शी कपड़ों पर लड़कों की नजर फिसलती है, मोटे कपड़े का कॉटन सूट पहनना, समझ गई बच्ची? बाइक पे तुम्हारे चाचा के साथ बैठकर हम भी इतना घूमे हैं, लेकिन मजाल क्या कि सिर का पल्लू कभी उतर गया हो। चाची ने ज्ञान की घुट्टी कुछ यूं पिलाई थी। दिव्या ये कहने से नहीं चूकी, चाची जब विनोद भैया घर से इतनी दूर मनाली 4 दिन के ट्रिप पर गए थे तो ग्रुप में लड़कियां ज्यादा थीं, पता है आपको, लेकिन विनोद भैया से इतनी जिरह किसी ने नहीं की थी, क्योंकि वो इस घर के सुपुत्र हैं, है ना चाची? जिस घर में सवाल पूछने की मनाही हो वहां इस जुर्रत की सजा के तौर पर दिव्या को सबके सामने थप्पड़ खाना पड़ा था। जन्म देने वाली मम्मी का तो सबसे बड़ा हक बनता था। वो हाथ पकड़कर बेडरूम में खींचती हुई ले गई थी, लेकिन अंदर जाकर उन्हें जाने क्या हुआ कि वो पुचकारने लगी, बेटी कुदरत ने जो लड़की और लड़के में फासला बनाया है ना, उसे कोई नहीं पाट सकता है। हम संस्कारी लोग इतना आगे नहीं बढ़े हैं बेटा, हम कितनी भी सभ्यता सीख लें, हमारी सोच तुम्हारी पीढ़ी की तरह मॉडर्न और खुली नहीं हो सकती है ना। हमें पता है तू दोहरी जिंदगी जीती है, घर में अलग और कॉलेज में अलग। घर की दहलीज पार करते ही पूरी संस्कृति तेरी बदल जाती है। पर बेटी हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं ना, हम भी तो हिंदी में एमए किए हैं, फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा भी किए थे, लेकिन क्या मिला, वही खाना बनाना खिलाना, घर वालों के काम करना। हम लड़कियों को अपनी राय या सिद्धांत बनाने की आजादी हमारे समाज ने अभी भी हमको नहीं दी है। तेरे पापा और तेरे चाचा की सोच हम नहीं बदल पाएंगे ना बेटी। बस मैं सोच बदलती रहूं, आप लोगों की दकियानूसी रास्तों पर चलती रहूं मम्मी, है ना, यही चाहती हैं आप? क्यों पढ़ाया मुझे इंटरनेशनल स्कूल में, सरकारी स्कूल में दाखिला करवा दिया होता तो बेहतर होता, दिव्या आंसू और गुस्से को जज्ब करते हुए बोली। आपको पता है मम्मी, पूरी क्लास में मेरा पहनावा, टिफिन, बोलचाल का तरीका सब कुछ एकदम अलग है, एकदम अलग। मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी इंग्लिश स्पीकिंग की टांग खींचते हैं, वे कहते हैं मैं हिंदी में इंग्लिश बोलती हूं। पर अब नहीं, मुझे अपने दकियानूसी थोपे गए पिछड़े घिसे पिटे संस्कारों से बाहर आना होगा। आप लोगों की थोपी गई परंपराओं से मुझे अब चिढ़ होने लगी है, उबने लगी हूं मैं। एक तो इतने छोटे से घर में इतने सारे लोग भरे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं है यहां। मैं सारे दोस्तों के घर जाती हूं, पर मैं अपने फ्रेंड्स को घर नहीं बुला सकती क्योंकि उनमें लड़के भी हैं, है ना? इस घर में मेरे स्वस्थ और आधुनिक विचारों का आखिर गला क्यों घोटा जाता है, इसमें बुराई क्या है, लड़की लड़के सब बराबर हैं आजकल, ऐसा लगता है कि हम किसी गांव या टापू में रह रहे हैं। आखिर जब आप इतना आगे बढ़ गए हैं तो अपने विचारों में भी तब्दीलियां ले आइए ना। बहरहाल तमाम पूछताछ के बाद आखिर में दिव्या को मालशेज घाट पर वनडे पिकनिक जाने की अनुमति मिल ही गई। कैसा सुखद था वो सफर, पहाड़ों से उतरती पगडंडी सरीखी पानी की दूधिया पतली धारा, कुदरत के तराशे पत्थरों को स्पर्श करती हुई नीचे आकर एक सुरीला संगीत पैदा कर रही थी। नीचे तक आते आते झरने का वेग इतना तेज हो जाता कि उसके नीचे नहाते हुए बदन चोटिल हो जाए। झरने के सफेद फेनिल पानी को जब दिव्या ने छुआ तो रोमांच से भर गई। झरने में दिव्या ने पूरे ग्रुप के साथ जी खोलकर मौज मस्ती की। मालशेज घाट की गगन छूती ऊंची पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों को दिव्या अपने मन में खूब गहराई तक बसा लेना चाहती थी। पहाड़ियों और घाटियों की अनगिनत तस्वीरें उसने अपने मोबाइल में कैद की। बाकी दोस्त जब पहाड़ों के और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे उस समय पेड़ों की झुरमुट की ढलान पर बैठकर दिव्या फटाफट कुछ वीडियोज ले रही थी और अपने मोबाइल में वर्ड फाइल खोलकर इस खूबसूरत नजारे का ब्यौरा टाइप कर रही थी। पत्तियों की सरसराहट, जुगलबंदी करती कूकती कोयल की तान रिकॉर्ड कर रही थी। दूर दिखते कचनार, गुलमोहर के पेड़ों को
जूम मोड पर अपने कैमरे में

0: मन से बहुत बिंदास अल्हड़ दिव्या के चेहरे के पीछे एक संवेदनशील रचनाशील सृजनकर्मी भी छिपा है। शायद उसकी संवेदनशीलता, उसकी रचनात्मकता ही उसे बार बार टेलीविजन की दुनिया में जाने को उकसा रही थी। पहले मास मीडिया की पढ़ाई पूरी करनी है और कम से कम इंटीग्रेटेड कोर्स कंप्लीट हो ताकि बाद में पीएचडी की जाए और फिर तैयारी से टेलीविजन की दुनिया में काम किया जाए। उसकी तमन्ना है कि वो खुद लिखे और खुद ही प्रोड्यूस करे, सिर्फ धारावाहिक ही नहीं बल्कि एनिमेशन फिल्म भी बनाने के सपने का अंकुर उसके मन में फूट गया था। दिव्या की आंखों में अनगिनत चमकीले सपने परवाज लेते हैं। उसका हर सपना घर वालों के विचारों की वेदी पर झोंक दिया जाता है। उसके घर वालों के लिए ये सब कोरी बकवास के सिवा कुछ नहीं। उनका मानना है कि पढ़ाई कोई भी कर लो, पढ़ाई के बाद ब्याह करके घर गृहस्थी तो संभालनी है, जबकि दिव्या ने गृहस्थी को कहीं तीसरे या चौथे पायदान पर रखा था। पहाड़ों के सर्पीले रास्तों से गुजरते हुए जब दिव्या अपने दोस्तों के साथ लौटने लगी तो सामने से विनोद भैया आते दिखाई दिए। मन तो किया कि झटके से वो गाड़ी में बैठ जाए, लेकिन उन्हें अनदेखा नहीं कर सकी। विनोद भैया आकर दिव्या के कान में फुसफुसाकर बोले,
1: उस लंबू से सट सट कर ताली दे देकर इतना खींचे क्यों निपोर रही थी तू, हैं?
0: विनोद भैया, दिव्या को जलती आंखों से लिलोड़ते हुए विनोद भैया बाइक स्टार्ट करके पल भर में आंखों से ओझल हो गए। दिव्या तिलमिलाकर रह गई।

0: वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान।
1: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू। दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4,000 का आया बिल। रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल। रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट। डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
2: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
3: हर लेन देन अब है आसान।
4: दरवाजा खोला और अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ने में वो मशगूल हो गया। चाचा हाथ में रिमोट लिए टीवी के चैनल बदल रहे थे। टीवी बंद करते हुए उन्होंने दिव्या को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराध करके लौटी हो। कॉरिडोर पार करती हुई वो बेडरूम तक पहुंची भी नहीं थी कि चाचा की रौबदार आवाज ने कानों में चोट पहुंचाई। बेतरह थकी हुई दिव्या का मन कर रहा था कि चाचा की पुकार को अनसुना करके सीधे बिस्तर पर पड़ जाए, लेकिन चाचा की हैसियत इस घर में पापा से भी बढ़कर थी। इसकी एक वजह तो ये थी कि चौल में इतनी लंबी जिंदगी बिताने के बाद जब से टावर में घर लेने का सपना पूरा हुआ तो घर की एक मुश्त रकम का इंतजाम चाचा ने किया था।

लोन अमाउंट भी उनका ज्यादा था। घर खरीदने में पापा की पूंजी कम लगी थी, जबकि दिव्या तीन भाई बहन मिलाकर पांच लोग हैं और चाचा के परिवार में विनोद भैया, चाचा चाची, कुल मिलाकर तीन लोग। मतलब ये एक आदर्श संयुक्त परिवार था। दिव्या सिर झुकाकर अपराधी की तरह सामने सोफे पर बैठ गई। विनोद भैया की लगाई आग चाचा की जबान के जरिए घर में धधक रही थी। उनकी लाल आंखें शोले उगल रही थीं और उसमें वो जल रही थी। ऊपर से तो वो बुद्ध बनी थी, लेकिन उसके मन में विद्रोह का ज्वालामुखी फट पड़ रहा था। दिव्या अपने आप से ही पूछ रही थी कि आखिर उसका दोष क्या है, जमाना कहाँ पहुंच गया है। स्त्रियां धरती के हर छोर पर पहुंच गई हैं, स्पेस तक में अपना परचम लहरा रही हैं। ये संकुचित सोच के चाचा लड़कों के साथ घूमने क्या चली गई, घर सिर पर उठाए हुए हैं। खुद तो चाची की सहेलियों से मुस्कुरा मुस्कुरा कर रस ले लेकर बतियाते हैं, हाँ, लेकिन दिव्या इस घर की बेटी है और वो लड़कों के साथ घूमने गई तो गलत करार दिया गया और उसे चाचा से बेवजह मार भी खानी पड़ी। इस आदर्श परिवार में बड़े होकर भी बात बात में पिट जाना आम बात है और ये उनके संस्कार में शुमार है। विनोद भैया ने दिव्या और इरफान को लेकर अफसाना गढ़कर चाचा और पापा से कह सुनाया था, वो भी इस तरह जैसे दिव्या कई दोस्तों के साथ न गई हो बल्कि अकेली इरफान के साथ गई हो, जबकि इरफान भी अन्य लड़कों की तरह महज एक दोस्त था। मम्मी ने भी चाचा पापा के पंचम सुर में अपना मंद्र सप्तक का सुर मिला दिया था। दिव्या, ए दिव्या, लड़की हो, इरफान से मिलना जुलना कम करो, समझी कि नहीं। लड़की का चरित्र सफेद चादर की तरह होता है, एक छींटा भी दाग लगा देता है उसमें। तुम जानती हो हमारे यहां ये सब नहीं चलता है। उस दिन दिव्या का दिल दर्द से कराह रहा था, अनगिनत खरोंचे लगी थीं, मालशेज घाट में देखे फूल मुरझा गए थे, बेचैन मन आंसुओं का झरना बन बहता रहा बहुत देर तक। कमरे का दरवाजा अंदर से उसने बंद कर लिया।

रोने के बाद मन हल्का हुआ तो दिव्या ने मोबाइल उठाया, फेसबुक पर मालशेज घाट की पहाड़ियों की तस्वीरें अपलोड की और व्हाट्सएप पर अपनी सहेलियों से बहुत देर तक चैट करती रही और तस्वीरें भेजती रही। इसी बहाने अपना जी बहलाती रही। दिव्या हमेशा ऐसा करती थी, जब उसे ज्यादा डांट पड़ती या मार पड़ती तो पहले खूब रोती थी, लेकिन उसके आंसू उसे सख्त बनाते थे और फिर इस तरह परिस्थितियों से जूझने का हौसला उसके भीतर पैदा हो जाता था। उस दिन के मार के बाद दिव्या ने अपने आप को काफी निसंग पाया, डांट और मार का असर भी अब कम होने लगा था। उस दिन वो चाचा की डांट और मार से पिकनिक का सुखद एहसास कसैला नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सोशल नेटवर्किंग का दामन थाम कर सुकून महसूस कर रही थी। उन दिनों घर में एक सिलसिला सा बन गया था। बात बात में दिव्या को एहसास कराया जाता कि वो एक लड़की है, उसे सलीके से रहना चाहिए। इसके उलट दिव्या कॉलेज के माहौल के अनुरूप खुद को बदल रही थी और ढाल रही थी। रायमा अक्सर उसे खुलेपन की तरफ खींचती। वो कहती, अरे यार थोड़ी आजाद ख्याल बनो, वरना किसी भी मर्द के पल्लू में बांधकर कैद कर दिया जाएगा और सारी जिंदगी गृहस्थी की चक्की पीसती रहोगी। समझ में आई बात?

दिव्या, ओ दिव्या, हाय हाय स्वीट हार्ट, तुझे क्या हुआ? किन ख्यालों में कहाँ खोई है तू? दिव्या, तुझे कब से आवाज दे रही हूं मैं? एवी रूम में सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। ड्रामा के रिहर्सल है और इस बार प्रणव सर और तानिया मैम भी ड्रामा में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना? अच्छी बात, चल चल। ओ अरे हाँ, अरे तेरा लिखा अधूरा ड्रामा इरफान ने पूरा कर दिया। जानती है कितना अच्छा लिखा है उसने? तानिया मैम अपने रोल से इतनी खुश हैं कि उन्होंने इरफान को आज खूब कस के गले लगा लिया। दिव्या की आंखों के सामने वो दृश्य कौन गया जब उसे तुषार से हाई फाई करते हुए विनोद भैया ने देख लिया था। घर जाकर कैसी चुगली की थी उसने, और इस बात को लेकर भी घर में हंगामा हुआ था। चाचा का लंबा चौड़ा भाषण सुनना पड़ा था। चाचा की डांट एक अनपढ़ की तरह थी जिसे सुनना बुखार सी पीड़ा देता था। उस घर में विनोद भैया की भूमिका महज एक जासूस की थी। अगर घर वाले कॉलेज का ऐसा ओपन माहौल देख लें तो जाने क्या हो जाएगा, दिव्या सोचती है। घर और बाहर की दुनिया कितनी अलग है, कितनी अलग। घर में जो गलत है वही बाहर कॉलेज में नॉर्मल है, रूटीन है। इन सब बातों पर तो आजकल किसी का ध्यान भी नहीं जाता, लेकिन दिव्या के घर में ये एक तरह का अपराध है, बुराई है ये। चल चल दिव्या, चल, तू ड्रामा की हीरोइन है और जानती है हीरो का रोल कौन अदा कर रहा है, पता है? दिव्या ने कोई उत्साह नहीं दिखाया ये सुनने के बाद भी। अरे बाबा, पूछ तो सही, कौन है? पूछेगी नहीं? दिव्या अपनी पलकें प्रश्नवाचक मुद्रा में ऊपर उठा देती है। प्रणव सर, पता है प्रणव सर? अनमनी सी दिव्या उठकर अपने रूम की ओर चल देती है। जाते जाते कहती है, राइमा सुनना, सर और मैम को मैसेज दे देना प्लीज, आज मैं रिहर्सल पर नहीं आ पाऊंगी प्लीज। क्यों, क्या हुआ, क्या हुआ तुझे? चल ना चल। नहीं, मैं नहीं चलूंगी, मेरी तबीयत नहीं ठीक है, कहते हुए दिव्या बरामदे की ओर मुड़ जाती है। रायमा उसका मन टटोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकामयाब रहती है। हॉस्टल के कमरे में जाकर दिव्या ड्रामा की स्क्रिप्ट निकालती है। कल तो रिहर्सल में जाना ही होगा। रिहर्सल में नहीं जाऊंगी तो रीडिंग कैसे होगी, और एक रीडिंग बहुत जरूरी है, अपने आप से ही वो गुफ्तगु करती है। आखिर ये चमकीला सपना मैंने ही तो देखा है, मेरे ही सपने का हिस्सा है ये, फिर मेरा मन क्यों घबरा रहा है? क्यों क्यों घबरा रही हूं मैं? अगर अपनों से दूर होने की कसक आज इतनी ज्यादा क्यों सता रही है? आखिर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं? भारी मन से स्क्रिप्ट के पन्ने पलटने लगती है दिव्या, साथ में अपनी डायरी लेकर बैठ जाती है। जब भी मन के भीतर तूफान मचा हो, हवाओं का रुख बार बार एक ही दिशा में भागा जा रहा हो, तो मन को संभालना, समझाना बड़ा मुश्किल होता है। आज दिव्या का मन खुद से ही जद्दोजहद कर रहा है कि कहीं उसने गलत फैसला तो नहीं कर लिया। अगर डॉक्यूमेंट्री टेलीकास्ट नहीं हुई तो अगले सेमेस्टर के लिए फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? पिछले सेमेस्टर में भी स्कॉलरशिप के पैसे से फीस पूरी नहीं हुई थी। इरफान और रायमा ने मिलकर बाकी फीस ऑनलाइन भर दी थी। उनका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी मैं? अगले दोनों सेमेस्टर में ज्यादा फीस की जरूरत होगी, प्रोजेक्ट वर्क भी ज्यादा।

0: होगा। प्रोजेक्ट वर्क में लगने वाली सामग्री बहुत महंगी होती है, कहां से आएगी ये रकम।
1: दिव्या का तनाव बढ़ता ही जा रहा है। वो जब मन से परेशान होती है तो अपने आप को अकेलेपन के महासागर में डुबो देती है। अपने एकाकीपन से खुद को बाहर नहीं निकालना चाहती। अपनी पीड़ा को वो तार तार महसूस करती है, अपनी बेचैनी को सहलाती है और उससे जूझती भी है। उसे अपने आप पर गुस्सा आता है, अपने हालात पर भी, घर वालों पर भी। लेकिन एकाकीपन के उसके ये लम्हे उसके प्रिय होते हैं। ऐसे में वो या तो अपनी डायरी उठाती है या फिर खिड़की से बाहर खाली खाली नजरों से दूर तक देखती है।

शून्य में देखती हुई वो अपनी डायरी उठाती है। पन्नों के बीच एक मुड़ा तुड़ा कागज मिलता है। मुंबई से वर्धा तक का टिकट होता है, वो भी जनरल टिकट। अजीब थी वो रात, ऊंची अट्टालिकाओं के ऊपर अंधा आसमान, जैसे कुछ नीचे सरक आया हो। आसमान में टंगे चांद और जगमग करते सितारे यूं लग रहे थे जैसे कि दिव्या हाथ बढ़ाकर उन्हें अपने बैग में रख लेगी। खाली आंखों के सामने वो दृश्य तिर जाता है जब घर से अकेली निकल आई थी दिव्या। दिव्या ने बैग में थोड़ा सा सामान रखा था। इरफान और राइमा को भी उसने अपनी योजना के बारे में नहीं बताया था। एंट्रेंस एग्जाम में पास हो गई थी, लेटर आया, उसे मास कम्युनिकेशन इंटीग्रेटेड कोर्स में एडमिशन मिल गया था। टेलीविजन प्रोडक्शन मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए उसे 5 साल के लिए वर्धा में रहना पड़ेगा। सुनते ही जैसे घर में तूफान आ गया। 5 साल पढ़ते पढ़ते बूढ़ी हो जाओगी, पराए शहर में जाकर कैसे गुजारा होगा तुम्हारा, और किसके साथ रहोगी हैं? वहां न कोई नातेदार न रिश्तेदार। हॉस्टल में रहने के नाम से पापा और चाचा ने ऐसे 10 हादसों का जिक्र किया था जिनकी खबर अखबार में छपी थी। हॉस्टल में रहना लड़कियों के लिए बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, हम लोग तुम्हें दूसरे शहर जाकर पढ़ाई करने की इजाजत कतई नहीं देंगे। अगले दिन राइमा घर आई थी समझाने। इरफान और तुषार ने भी फोन पर मम्मी से बहुत इसरार किया था, आंटी दिव्या को जाने दीजिए ना, हम सब साथ रहेंगे, उसकी देखभाल कर लेंगे। दिव्या ने घर वालों को

बहुत समझाया, मम्मी मेरे साथ राइमा रहेगी, कोई भी परेशानी होगी तो हम दोनों एक दूसरे से शेयर कर लेंगे। फिर मम्मी आजकल तो फोन का जमाना है, मान जाओ ना बात, टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम दिन में कई कई बार बात कर सकते हैं। अरे वीडियो कॉल करेंगे, वेबकैम के जरिए हम एक दूसरे से चैट करेंगे। मम्मी अभी आप भी वीडियो कॉल कर लेती हो ना। मम्मी प्लीज एक बार इजाजत दे दो। बोझिल कदमों से चलती हुई दिव्या का मन अपने करियर के लिए उत्साहित था, लेकिन घर वालों को छोड़कर यूं चुपके से आना उसके कलेजे पर जैसे आरी चल रही थी और वो पीड़ा से कराह रही थी। रास्तों का पता नहीं, नदी के उस पार टिमटिमाते हुए दिए की मध्यम रोशनी, कैसे जाएगी वो उस पार? कोई साथ नहीं, कोई सहयोगी नहीं, सिर्फ एक स्कॉलरशिप के बूते पर पूरी पढ़ाई कैसी होगी? क्या होगा मेरा? कैसे रहूंगी मैं अपने घर वालों के बिना? वो विचारों की गहरी खाई में उतरती गई। चलते चलते दिव्या स्टेशन पहुंच गई थी। सीढ़ियां उतरकर उसने सामने खाली पड़ी एक बेंच पर अपनी काया को जैसे धकेलते हुए बिठा दिया था। प्लेटफॉर्म पर दूर टिकी आंखों के सामने रात का अंधेरा था, गुलाबी ठंड थी, मौसम पर धुंध छाई थी और दिव्या की आंखों पर भी गहरी धुंध थी। दिव्या खाली निचाट आंखों से दूर देख रही थी। डीजल इंजन वाली ट्रेनें आ रही थीं, जा रही थीं। सारी गाड़ियों का वक्त और गंतव्य बिल्कुल निर्धारित था, पर दिव्या की ट्रेन का ना तो नियत समय था और ना ही नियत मंजिल। किस शहर में जाना है ये तो पता है, लेकिन किस ट्रेन से जाना है ये तो दिव्या ने भी नहीं सोचा था। न तो उसके पास यात्रा का टिकट था और न ही पराए शहर में पहुंचने के बाद का कोई ठिकाना। मंजिल इतनी दूर थी कि वो उहापोह में थी। पता नहीं मंजिल मिलेगी भी या नहीं, क्या यूं ही मैं टूटकर घर लौटूंगी? नहीं, यूं टूटकर घर नहीं लौटना है। उस रात कई गाड़ियां आती और जाती रहीं। अंत में अपने भीतर हौसला पैदा करती हुई खुद ही हौसले से डग भरती हुई वो एक ट्रेन में बैठ गई। यही वो टिकट था जिसने उसे वर्धा पहुंचाया था। हाथ में पकड़ा हुआ टिकट कड़कड़ाती सर्दी में भी पसीने से गीला हो गया था। उसे घबराहट सी हो रही थी। वर्तमान की धूप और अतीत का कोहरा, उसने आंखें मिचमिचाकर कसकर अपनी हथेलियां रख ली थीं। हथेलियों पर कुछ सर्द बूंदें चिपक गई थीं। हॉस्टल की कैंटीन में बजने वाली बेल से दिव्या की तंद्रा टूटी। रोज शाम को चाय के वक्त यही बेल बजती है। कोहरे से डूबी शाम अब अंधेरे की काली चादर ओढ़ रही है। लॉन के लैंप पोस्ट की मध्यम रोशनी किलेटी के उस जोड़े पर झिलमिल कर रही है जिसने अभी अभी बसेरा लिया है। पक्षियों के झुंड पेड़ों की पत्तियों में छिप गए हैं। सोने से पहले का उनका संवेद गान बज रहा है और दिव्या के कान में नाटक के गीत का वो हिस्सा गूंज रहा है जो उसे मंच पर गाना है। इस नाटक की वीडियो रिकॉर्डिंग कॉलेज की लाइब्रेरी में संग्रहित की जाएगी और उसके करियर में एक और सुनहरा पन्ना जुड़ जाएगा।

गीतों भरी कहानी में आज आप सुन रहे थे ममता सिंह की लिखी कहानी यादों की तपिश का दूसरा और अंतिम भाग। स्वर था ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
3: हाँ जी।
2: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
3: हाँ जी हाँ।
2: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
3: नहीं नहीं, अभी नहीं।
2: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है, इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: कुछ लिखा,
2: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। मैटिनी शो कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से। इनसे बातचीत की है ममता सिंह ने।
0: विविध भारती के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है वेलनेस गुरु यानी फिटनेस एक्सपर्ट डॉक्टर राज अशोक शेट्टी जी को। राज अशोक शेट्टी जी, विविध भारती के स्टूडियो में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार।
5: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी हियर।
0: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
5: बहुत बढ़िया, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, कोई मुझे दिखते नहीं थे, लेकिन अंदर बहुत सारे काम चल रहा है।
0: जी,
5: फैंटास्टिक, आई एम फीलिंग वेरी गुड, थैंक यू।
0: जी डॉक्टर राज, हमें बताइए कि आज हर तीसरा व्यक्ति परेशान है अपनी सेहत से, और उसे किसी न किसी दवा की जरूरत पड़ती है। और हमने जो

0: आपके बारे में जाना है वो ये कि आप लोगों को फिट रखने के बहुत सारे गुर बताते हैं, बहुत सारे नुस्खे बताते हैं कि वो बिना दवा के अपने को फिट रख सकते हैं। सबसे पहले आपका जो फॉर्मूला है 4+1=100, जबकि 4 और 1 का जोड़ तो 5 होता
1: होना
0: है,
1: चाहिए।
0: तो ये फॉर्मूला क्या है और इसके बारे में बताइए और किस तरह से इसे दिनचर्या में शामिल करें।
1: ये आजकल ना बहुत पहले से ही चलते आ रहा है कि भाई लोग परेशान है हेल्थ को लेकर के, लाइफस्टाइल को लेकर के, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम इसके बारे में नहीं बात करके सबको इसके बारे में जानते ही है। और 4+1=100 इसको मैजिक ऑन बॉडी फार्मूला बोलते हैं। तो ये मैजिक करता है, कैसा करता है कि हर एक इंसान को ये फॉर्मूला लागू पड़ता है। ये हम ऐसा सोचते हैं कि मैं तो ठीक हूँ, हमको तो अच्छा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा कुछ लोग सोचते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हर एक को तकलीफ जिंदगी में होता ही होता है। तो 4+1=100 ये आपके लिए भी, मेरे लिए भी है, मेरा वाइफ के लिए भी है, मेरे बच्चे के लिए भी है और मेरी माँ बाप के लिए भी है। तो मैटर ये बनता है व्हाट इज एग्जैक्टली 4+1=100, ये फॉर्मूला क्यों बनी है, इसी में मैंने पीएचडी किया हुआ है।
0: अच्छा,
1: इट इज ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, तो थीसिस का नाम है 4+1=100 ओबेसिटी मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। हमारा जो शरीर जो है वो पंच तत्व से आया हुआ है
0: जी।
1: तो पंच तत्व से अगर शरीर आया है तो पंच तत्व में ही विलीन होने वाला है
0: जी जी।
1: तो पंच तत्व से आया हुआ शरीर को आपको 5 पावर्स देना होता है। तो पंच तत्व अगर हम बात करते हैं तो हमारा, अगर आप हम हथेली देखेंगे तो हथेली का सबसे पहला अंगूठा जो आता है दैट इज अ +1, ये अग्नि तत्व है
0: जी।
1: फिर आता है उसके बगल का 4, ये 4 उंगली अगर हम देखेंगे, एक होता है वायु तत्व, फिर होता है आकाश तत्व, फिर होता है भू तत्व, फिर होता है जल तत्व
0: जी।
1: 4 उंगली को अगर हम गिनते हैं तो सो ये 4+1 मिलाएंगे तो 100 साल की जिंदगी होती है। तो ये फार्मूला मेरा नहीं है, ये कुदरत का फार्मूला है। हर एक को इसे अपनाना बहुत जरूरी होता है
0: जी।
1: तो ये कुदरत से आए हुए फार्मूला से अगर हमारा शरीर बनी हुई है तो इसे 5 पावर देना जरूरी है
0: जी।
1: वो क्या 5 पावर है? वो 5 पावर होता है, सबसे पहला होता है अग्नि तत्व, दैट इज अ परिश्रम देना जरूरी है। फिर आता है वायु तत्व, तो वायु तत्व यानी कि आपको श्वास कैसा लेना है, कैसा छोड़ना है और कैसा रिटेन करना है। फिर आता है स्लीप यानी कि नींद कैसा लेना है
0: जी।
1: फिर आता है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट यानी कि आप खाना कैसे खा रहे हो, कितना न्यूट्रिशन बॉडी को देना है, कैसा देना है, उसके बारे में बातें होती है, सुनना जरूरी होता है। फिर आता है जल तत्व, पानी का महत्व, शरीर में कितना पानी देना है, ये बस इतना ही है। ये 4+1=100 अगर एक इंसान समझ लेता है तो उनको पूरा जिंदगी भर वो खुश रहेंगे, आराम से रहेंगे, बहुत ज्यादा तकलीफ परेशानी नहीं होगा और दवाई से तो दूर ही रहेंगे
0: जी।
1: तो ये रियलिटी है। तो ये 4+1=100 इज 100 ईयर्स ऑफ लाइफ, 100 साल तक जीने का सही तरीका
0: जी।
1: तो
0: जी।
1: मैं ये फॉर्मूला अपना खुद के ऊपर भी अपना रहा हूँ। मेरा इस वक्त आप मेरा एज देख रहे हो तो 63 का हूँ और मुझे लगता है कि और भी कुछ साल तक मैं इससे फिट रहूंगा, ऐसा मुझे लगता है, अगर यही फॉर्मूला अपनाता रहूंगा।
0: बिल्कुल, अब आपने अपनी उम्र बता दी है लेकिन हमारे श्रोता आपको देख नहीं पा रहे हैं। हम उनको बता दें कि आप बिल्कुल 63 के नहीं लग रहे हैं, बल्कि यूं कहें कि 33 तो बहुत कम हो जाएगा लेकिन 43 से आगे आप नहीं दिख रहे हैं, 40 के अंडर 40 दिख रहे हैं।
1: बस यही फॉर्मूला का इसका बदौलत है।
0: तो वो जो फॉर्मूला है ये तो आपने बता दिया और इस बारे में आपने पीएचडी की, वो 5 तत्वों की जानकारी आपने दी। 5 तत्वों का समायोजन अपनी जिंदगी में कैसे करें, क्या करें कि ये सब कुछ ऐसा फिट रह सके, मतलब वो तत्व क्या है?
1: बस
0: जैसे आपने कहा वायु तत्व और कितनी फूड लेना है, कितनी नींद लेना है, तो उसका मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी जानकारी।
1: या अगर आप बोल रहे हो ना कि इंसान बहुत परेशान है, बच्चे बहुत इरिटेट हो रहे हैं, बड़ों की बातें नहीं सुन रही है और ऊपर से एडवर्टाइजमेंट्स इतना आते हैं, ललचावन एडवर्टाइजमेंट इतना सारे आते हैं, बहुत सारे जो खाने का पैकेट्स देख करके बच्चे ललचा जाते हैं, जो भी आप देखते हो तो बच्चों को लगता है कि ये मुझे खाना चाहिए, वेफर से लेकर के हर रोज चीज़। और ऐसे बड़ों में भी क्या हो गया कि घर में खाना कम बनता है, पार्सल बहुत ज़्यादा बाहर से आता है और जो न्यूट्रिशन होना चाहिए वो एक्चुअली नहीं होता है। और उसके अलावा भी बहुत सारे जो एडवांस टेक्नोलॉजी इतना सारा हो चुका है, जो परिश्रम होना चाहिए वो है ही नहीं है, तो जो पसीना निकलना चाहिए वो नहीं निकलते, जो किसी को भी थोड़ा मेहनत परिश्रम लेकर करना चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। ये पूरा हर एक चीज़ आप अगर देखते तो रोड रेजेस भी अगर होता है तो परेशान होकर घर से निकलते हैं, उल्टा सीधा खाते हैं। और उसके अलावा भी क्या है कि जो एंगर मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं लोगों में, जल्दी गुस्सा आ जाता है
0: जी।
1: और इरिटेट हो जाते हैं। और ये पूरे चीज़ का मेन कारण क्या है कि नींद, ठीक से नींद नहीं करना, ठीक से पानी नहीं पीना, ठीक से श्वास नहीं लेना और ठीक से खाना नहीं चबाना और ठीक से परिश्रम नहीं करना, ये इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से अगर हम बात

0: करेंगे, तो जो भी हमारे जो श्रोतागण जो है, जो लिसनर्स जो है, वो अपना लाइफ डे टू डे में उतार सकते हैं। ये कैसा हो सकता है? देखिए, हमारा शरीर तो कुदरत से आया, वो तो गारंटी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरीर कुदरत से आया, कुदरत में ही जाने वाला है, जहाँ से आया वहीं पर ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें जो पांच पावर कुदरत ने जो नियम दाया था, सी एक फिलोसॉफिकल बातें करता हूँ कि जब कुदरत जब हमको शरीर दे रहा था तो हमारे ऊपर एक नियम कानून था। जब ये मैं आकाशवाणी का अंदर आया तो गेट में बोला गया था कि भाई आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते, परमिशन लेके आना है, पूरा एक नियम कानून है, तो नियम कानून के अंदर ही हमें रहना है। ऐसा कुदरत में जब हमको ये शरीर मिला था, कुदरत ने कंडीशन किया था, ये आपको शरीर में दे रही हूँ तो ये शरीर में आपको रहना है
1: जी।
0: रहना है 100 साल तक रहना है, तो 100 साल रहने के लिए उसके लिए मुझे रेंट चाहिए। वो रेंट में क्या चाहिए? हमें 2 किलो सोना चाहिए, 4-5 बंगलो चाहिए या फिर इतना प्रॉपर्टीज चाहिए, ये पूरा नहीं चाहिए। उसको चाहिए सिर्फ 5 पावर चाहिए। वो कौन सा 5 पावर चाहिए? पानी देना है, खाना देना है, नींद देना है, श्वास देना है और लेबर देना है। इसमें परसेंटेज यूज होता है। 100% अगर हम बात करें तो परसेंटेज का 100% पानी 72% है, हमें इतना पानी देना है, सिर्फ 12% खाना देना है यानी कि न्यूट्रिशन देना है। फिर आते हैं 6% हमें को नींद देना है
1: जी,
0: 6% श्वास देना है, सिर्फ 4% हमें लेबर देना है। तो ये इतना चीज हमें शरीर को देना है, ये समझना जरूरी है। ये समझने के लिए थोड़ा सा विस्तार से हमें बात करना जरूरी है
1: जी।
0: तो पॉइंट ये बनता है कि 100% अगर हमको रहना ये दे दिया तो कुदरत खुश होकर के 100 साल के ऊपर 20 साल और हमें बोनस में मिलेगा। सो 120 साल की जिंदगी गारंटेड हो जाती है। और आजकल अर्ली एजिंग आ रहा है, लोग जल्दी बूढ़े होते जा रहे हैं। जब तक जिएंगे बीमारी से जिएंगे तो बहुत परेशान होकर जिएंगे। पूरा अगर आप जिंदगी का 25-30% जो रास्ते में बोलते हैं ना, हम लोग ट्रैवलिंग भी करते रहते हैं और बाकी 25-30% झगड़े में गुजार देते हैं, बाकी 25% कन्फ्यूजन में गुजारते हैं, मांड हम जी लेते हैं। तो जब 100 साल की जिंदगी कुदरत ने दिया है, ये 5 चीजों को समझ लेंगे ना, रोड रेजेस रहेगी ना, हम ज्यादा करके गलत सिस्टम में नहीं रहेंगे और अपने आप को अच्छे से जी सकते हैं, रोज अच्छे से जी सकते हैं। दैट मीन्स यू शुड, वी कैन लिव इन प्रेजेंट, हम प्रेजेंट में बहुत सही तरीके से जी सकते हैं
1: जी।
0: तो हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है कि हम पानी से शुरू करते हैं कि पानी कैसे पीना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, उस बेस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे।
1: आप क्या बोलते हो, कैसे पीना चाहिए पानी और कैसे खाना चाहिए?
0: आप देखिए, मैंने बोला 72% हमारा शरीर जो है पानी में, हमारे जो टिश्यूज बोलते हैं ना, जो मांस होता है, अब आंख है, कान है, हड्डी छोड़ के बाकी पूरा पानी ही है एक्चुअली, टिश्यूज, दैट इज अ 72%। यानी कि अगर आप अंतरिक्ष से धरती को अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखता है? 75% पानी दिखती है, 25% आपको जंगल और जमीन दिखती है। तो हमारा शरीर भी वही है, आपका जो 1/3 जिसको हम बोलते हैं, सो दैट इज हमारा पानी कैसा होना चाहिए। आपका वजन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है
1: जी।
0: हर बच्चे से लेकर के बुजुर्गों तक ये मैं जो बोल रहा हूँ सुनना जरूरी है कि आपका वजन कीजिए। दाखला तरीके, मेरे वजन इस वक्त 70 kg का है। अगर मैं 70 kg का हूँ तो मुझे कितना पानी पीना चाहिए? मुझे एक बात बताइए ममता जी, पानी आप कितना पीते हो दिन का?
1: हमें तो ऐसे नहीं आकलन कर सकते। हाँ, एक बोतल रहती है साथ में, एक बोतल दिन में, और मुझे लगता है रात को एक बोतल तो 2-2.5 लीटर तक मुश्किल से पानी पी लेते
0: हैं। मतलब कोई प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं,
1: प्रॉपर कैलकुलेशन,
0: आप 1 लीटर भी पियेंगे या 3 लीटर भी पियेंगे?
1: हाँ,
0: प्यास लगे तो कभी कभी 1 लीटर पूरा पी लिया।
1: हाँ, कभी कभी बोतल यूं ही रखी रह जाती है, भूल जाते हैं।
0: दैट मींस दैट इज अ प्रॉब्लम। कुदरत ने आपको नियम बनाया था, आपको मेरा बॉडी में 72% पानी तो देना ही है
1: जी।
0: और बॉडी में पानी जो है हर आधा घंटे में कम से कम 30 ml पानी निकल जाता है। 72% पानी में अगर मान लीजिए कि 5% निकल जाएगा तो कितना बचा? उतना परसेंटेज बचा, 68-70% बचा। फिर हर आधा घंटे में पानी बाहर निकल रहा है तो हमारा पानी संतुलन 72% तो हमें रखना ही है। एनी गिवन टाइम पानी 72% से कम नहीं होना चाहिए, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी। उससे ज्यादा पानी देंगे वो ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा, ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, कम पानी भी नहीं होना चाहिए। अगर हर आधे घंटे में पानी, अगर इतना पानी जा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए? पानी को रिप्लेस करना जरूरी है, यानी कि जितना पानी गया उतना पानी आपको पीना जरूरी है। दैट मीन्स पूरा दिन में, यानी कि 8 घंटा अगर आप सोने का निकाल देते हो, 16 घंटे में आपको कम से कम 30 बार पानी पीना चाहिए। वो भी कितना पानी चाहिए? एनी गिवन टाइम कभी भी आपको आधा ग्लास से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। कोई बोलता है कि 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास पानी पीना चाहिए, नहीं, ओवर हाइड्रेशन हो जाएगा। तो हमें पानी थोड़ी थोड़ी पीना चाहिए। जैसे कि घर के अंदर फूल का पौधा है तो पानी हमको छिड़कना पड़ता है, अब बाल्टी भर के पानी तो

0: नहीं डालेंगे.
1: बिल्कुल
0: सो दैट इज द रीजन कि हमको एक साथ में पानी उठा करके ऊपर से पानी पीते हैं, वो भी नहीं पीना चाहिए. तो पानी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर. इसके लिए 72% ही आपको रखना जरूरी है. दैट मीन्स एक कैलकुलेशन के हिसाब से मेरी अगर वजन 70 किलो की है, इंटू 3 करना है मुझे 0.03%. दैट मीन्स 7 × 3 = 21, यानी कि 2 लीटर और 100 ml, यानी कि मुझे 2 से 2.25 लीटर पानी मुझे 16 घंटे में फिनिश करना है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने अगर किसी ने बोल दिया कि हाँ ये बॉडी के लिए 2 लीटर पानी पीना चाहिए, 16 घंटे में आपको उसको डिवाइड करना चाहिए. आपका पानी का जो कैलकुलेशन है 16 घंटे में डिवाइड करेंगे तो आपका पानी का कैलकुलेशन मिल जाता है.
1: तो ये पानी के बारे में थी. अब मतलब आपने क्या कहा,
0: सिर्फ पानी जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है अपना शरीर का. लोगों को पानी पीना नहीं आता बिकॉज वो पूरा बॉटल उठा के पी जाते हैं. वो नहीं पीना चाहिए, हवा में पीना नहीं चाहिए, होठ पे लगा के पानी को खींचना चाहिए. ये ही लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है. पानी पीना आना चाहिए इंसान को. जब पानी पीने को अच्छा से आ जाएगा, देखिए आप बच्चा दौड़ के आएगा पूरा घटाघट करके पानी पिएगा, आधा लीटर 1 लीटर पानी पी जाएगा, वो भी जल्दबाजी में पिएगा. वो कभी नहीं करना चाहिए. थोड़ा शांत होकर के पीना जरूरी है. और हर आधे घंटे में अगर आप पानी पी हो आपको प्यास लगेगी नहीं.
1: जी जी,
0: यानी कि इंसान को कभी प्यास लगना नहीं चाहिए. तो प्यास लगने से पहले पानी पी लेना चाहिए.
1: और बच्चे तो ये भी कहते हैं अरे मुझे प्यास नहीं लगती. बच्चों को अगर कहा जाए पानी पीने के लिए, वो कहते हैं मुझे तो प्यास ही नहीं लगती क्योंकि दिन भर एसी में बैठे रहते हैं, उनको प्यास महसूस नहीं होती.
0: तो
1: बच्चों की और एक समस्या डॉक्टर साहब, वो है मोटापा और उनकी जो सोशल मीडिया मोबाइल स्क्रीन की लत, ये भी है. तो कई बार इससे जो बेचैनी के कारण एकाग्रता की कमी होती है बच्चों में, ये आजकल समस्या बढ़ रही है. तो ऐसे में फिटनेस के लिए बच्चों में एकाग्रता बनी रहे, उनका मोटापा कम हो, चिड़चिड़ापन कम हो, इन सब के लिए उसमें माता पिता की क्या भूमिका होती है और बच्चों की क्या भूमिका होती है, कैसे शुरुआत करें फिटनेस की और कैसे बढ़ें?
0: पेशेंस जो है वो माता पिता ही दे सकते हैं. ओके, बच्चों का जो भी प्रॉब्लम इश्यूज आ रही है वो तो सोशल मीडिया की वजह से आ रही है, स्कूल पे ये तो कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है.
1: फिटनेस के लिए क्या करें?
0: कॉम्पिटिशन के साथ ही फिटनेस जुड़ा हुआ है. तो आपको कॉम्पिटिशन यानी कि आपको क्या बनना चाहते हो उस लाइफ में, उसके बेस पर होता है. पेरेंट्स थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं बच्चों को, ये करना ये करना. बच्चों को एक्चुअली उनमें क्या रुचि है, उसके बाद अगर डे वन से ही बिगिनिंग से अगर आप घर के अंदर का वातावरण अगर ऐसा बना के रखेंगे, जैसे कि भाई थोड़ा सा जिम एक्टिविटीज होगा या फिर यू नो पुलअप्स का कुछ हो सकता है, या फिर जैसे कि घर का जो बातचीत में क्या होता है, क्या बनना चाहते बच्चा, वो IPS बनना चाहता है, IAS बनना चाहता है, या फिर एक डिपेंड होता है बिजनेसमैन भी बनना है, तो उसके लिए फिटनेस का होना बहुत जरूरी है. घर का डिसिप्लिन यानी कि कितना बजे उठना है, कितना बजे सोना है, ये सब कुछ आता है सोने पर. बच्चा कितना बजे सो रहा है, अगर वो 12-1 बजे के बाद सोता है, दूसरा दिन आप उसे कोई भी चीज को उम्मीद आप मत रखिए, बिकॉज वो चिड़चिड़ा रहने वाला है, बिकॉज बॉडी में जो रिपेयर होना था वो नहीं हो पाया. तो ये जो टॉपिक है ना, मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा, बिकॉज हम पानी का जो बात किया है, पानी का इंपॉर्टेंस बच्चों को समझाना जरूरी होता है कि ये बच्चा हर आधे घंटे में प्यास लगने तक वेट नहीं करना है, प्यास लगने से पहले पानी पी लेना, बिकॉज बॉडी का नीड है. बिकॉज हर आधे घंटे में पानी बाहर जा रहा है, थ्रू यूरिन से जा रहा है, आंसू से जा रहा है, पसीना से जा रहा है, और हमारे पोर से पानी बाहर जा रहा है. अगर पानी बाहर जा रहा है तो पानी अंदर आना जरूरी है. अगर पानी ठीक से नहीं पियेंगे, बॉडी उनका ठीक से फंक्शन नहीं करेगा, माल फंक्शन करेगा, इसका मतलब वो चिड़चिड़ा ही रहेगा और कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगा, लेथार्जी तक जाएगा, या कुछ चीज़ स्कूल में भी उनको नींद आने लगेगी, या फिर उनका पसीना बदबू आने लगेगी. ये पूरा सोशल इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों में.
1: क्या है, लेकिन यहाँ हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि वो नुस्खे क्या है,
0: नुस्खे
1: वो फिटनेस के लिए नुस्खे कैसे उन्हें जोड़े, कि उन्हें एक्सरसाइज से जोड़े, सांस के प्रयोग से,
0: या इसके स्कूल का जो वातावरण कैसे उसके ऊपर डिपेंड रहता है. उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते कि स्कूल का क्या है, हम नहीं जानते. अब स्कूल प्रबंधन वो तो करेगा, उनको क्या एक्टिविटी देना है क्या नहीं देना है वो बात हो जाती है. अगर स्कूल से बाहर आने के बाद की अगर हम बात करें, तो बच्चों को मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कुछ भी है उनका स्कूल वर्क जो है रात को 8 बजे से पहले फिनिश करवा देना चाहिए. खाना जो उनको 8 बजे से पहले हो जाना चाहिए. ओके, उसके बाद उनके पास कुछ नहीं होना चाहिए. उनके पास सिर्फ एंटरटेनमेंट थोड़ा देर के लिए होना चाहिए. दैट इज कोई भी चीज, फिजिकल हो सकता है या टीवी हो सकता है, व्हाटएवर द माध्यम, मोबाइल से नहीं. उसके बाद भी वो जल्दी सो जाएंगे. सुबह अगर वो जल्दी उठ जाते हैं तो उनके पास बहुत टाइम होता है स्कूल के लिए. अगर मान लीजिए कि उनको 8 बजे जाना है, तो यहाँ पे वो लोग 7:30 बजे उठते हैं, फिर भाग दौड़ करते हैं, फिर उनके पास फिटनेस उसके लिए टाइम नहीं होता। अगर वो जल्दी सो जाते हैं तो उनके पास 2 घंटा एडवांसली मिलता है, उस 2 घंटे के अंदर उनका होमवर्क भी हो जाएगा और उनके पास 1 एक्स्ट्रा आवर्स भी बचेगा। उस 1 एक्स्ट्रा आवर्स में उनके पास अगल बगल में जिम होता है, आजकल हर सोसाइटी में जिमनेशियम होती है, इसका मतलब वजन उठाना नहीं होता है, कुछ एक्टिविटी, थोड़ा वॉक पे चले गए, रनिंग पे चले गए, हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, कुछ भी एक एक्टिविटी अगर कर लेंगे उनका फिटनेस कहीं नहीं गया। एक के मतलब है कि उनके जल्दी सोने से सुबह उनको 2 घंटा एक्स्ट्रा मिलता है।
1: जी, जी।
0: लेट सोएंगे उसका कोई मतलब नहीं, वो कितना भी बड़ा होमवर्क क्यों ना हो उन्हें लेट कभी नहीं करना चाहिए, बिकॉज बॉडी का जो अंदर का जो रिपेयरिंग जो होता है दैट हैपेंस ओनली बिटवीन रात का जो 11 से लेकर के सुबह का जो 2 बजे का जो टाइम का जो होता है उस टाइम पर किसी को जागते नहीं रहना चाहिए। मुझे भी, आपको, बच्चों को, किसी को भी उस वक्त जागना नहीं चाहिए, उस वक्त सोना चाहिए ताकि उनका बॉडी अच्छा रहे, फिर जाकर के उनका फिटनेस प्रोग्राम ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाता है। आप कुछ भी बोलो बच्चे करने लगता है।
1: जी जी।
0: अगर आप बच्चा देरी से सो करके, देरी से उठ के भाग दौड़ करके करेगा और बोले कि आप शाम को फिटनेस करो तो नहीं हो सकता है, बिकॉज वो उसके लिए उसका बॉडी तैयार नहीं होगा। फिर हम जोर जबरदस्ती करेंगे अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। सुबह जल्दी उठेंगे तो अच्छे मन से सब कुछ कर पाएंगे, फिर उनमें एक ताकत आने लगती है, मुझे ये बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, मुझे ये बनना है, ये बनना है, उसमें चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं।
1: जी,
0: दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, सोना बहुत जरूरी है, स्लीप पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर।
1: जी जी जी, बिल्कुल सही समय पर सोना। और आजकल ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है,
0: नहीं सोते बच्चे, मोबाइल
1: पूरी रात जग के
0: पढ़ाई करते हैं। घर में आजकल क्या हो गया, दो दो तीन तीन कमरे तो है, बच्चे अंदर डोर लॉक करके क्या कर रहे हैं नहीं मालूम।
1: बिल्कुल सही बात।
0: सो दिस इज व्हाट, घर के अंदर का डिसिप्लिन के ऊपर सब कुछ होता है।
1: जी
0: जी।
1: डॉक्टर राज, आपने मार्शल आर्ट किया है, कराटे सीखा है और देख के ये लग रहा है कि आप तो बहुत फिट हैं, लेकिन ये कहना आसान है, करना बड़ा कठिन होगा। आपने तो लंबी, हमें लगता है, साधना की है और बहुत सारे आपके वीडियोज देखे जिसमें आपने बहुत सारे करतब भी दिखाए हैं। हमें बताइए कि अमूमन जैसे घर में लड़कियां होती हैं तो हम कहते हैं कराटे सिखाओ, क्योंकि वो आगे चलकर अपनी सुरक्षा खुद कर सकें, तो किन लोगों को ये मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, किन लोगों को नहीं सीखना चाहिए?
0: आप अगर महिलाओं की अगर बात करें, मार्शल आर्ट तो सबको सीखना चाहिए, अलग बात होता है, मार्शल आर्ट बहुत डिसिप्लिन्ड आर्ट होता है, बट बहुत मस्कुलिन एक्टिविटी औरतों को नहीं करना चाहिए। यानी कि कुदरत ने हमको 2 नियम से भेजा हुआ है, एक वो पुरुष है प्रकृति और एक प्रकृति है, प्रकृति मतलब माता है यानी कि स्त्री है और एक पुरुष है। सो क्या होता है कि भाई इट्स कुदरत ने बना के भेजा है मस्कुलिन एंड फेमिनाइन
1: डिफरेंस
0: वो है। तो औरतों को औरतों का ही एक्सरसाइजेस होते हैं, उनका एक वातावरण, उनका चलने का हर एक वो चीज बिल्कुल नया नाजुकता होता है, वही चीज मर्दों में कम मिलता है बिकॉज ऑफ मस्कुलिन होता है। तो इसके लिए मस्कुलिन प्रवृत्ति जो होती है, जो प्रोटेक्टर बनते हैं वो, कि भाई एक है तो उनका एक्सरसाइज करना, बॉडी बिल्डिंग करना या फिर स्पोर्ट्स करना फलन है ना, ये पूरा एक चीज होती है। मगर आजकल वो जो 50% जो बोलता है ना, जो स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, वो कानून बना दिया ऐसा, बट कुदरत ने नहीं बनाया। कुदरत ने औरत को औरत ही बनाया है, मर्दों को मर्द ही बनाया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत ज्यादा औरतों का जो बॉडी का स्ट्रक्चर जो है, उनका जो मसल्स, इतना कुदरत ने नहीं दिया है जितना मर्दों को दिया है,
1: ताकत भी नहीं दी है,
0: ताकत नहीं दिया, बिकॉज उनका अलग किस्म का ताकत है, मगर वो अलग तरीके का होता है। बट आजकल क्या हो गया कि बहुत ज्यादा लोग वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है, औरत 35 साल के बाद उनको वेट ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना वेट ट्रेनिंग, बॉडी बिल्डर ने मसल्स नहीं दिखाना है, ओके, वो चीज अलग, वो फील्ड है, वो स्पोर्टिव फील्ड होती है, वो फील्ड में जाने वाले फिर उसी में रहते हैं, वो ऐसे बन जाते हैं। एक औरत जो है, औरत का एक्टिविटी करते रहेंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है, उसका वो नया नाजुकता रहेगा। फिर आगे जाकर के बहुत ज्यादा मार्शल आर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा किक्स करेंगे, बहुत ज्यादा फाइट करेंगे, तो उसमें उनका चलने का चाल बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा, मेल का जो हॉर्मोन्स होता है वो उसमें आने लगते हैं। दैट मीन्स उनका, देखो, एक चाल ही उनका अलग पड़ जाती है, तो फिर वो उनका ड्रेसिंग अलग हो जाती है, फिर एक औरत से धीरे धीरे धीरे वो मर्द में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही मर्दों को औरतों का औरत जो एक्टिविटी करते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि कुछ हार्मोन इंबैलेंस होता है। इसका मतलब वो एबनॉर्मल होते ऐसा नहीं है, रहेंगे सब कुछ ठीक ही रहेगा। बट मेरा सलाह, मैं मार्शल आर्ट अगर कर रहा हूं, मेरे क्लासेस में मैं सेल्फ डिफेंस सिखाता हूं, उन्हें बहुत ज्यादा कराटे रिलेटेड एक्सरसाइज नहीं करवाता हूँ। औरतों के एक्सरसाइज जो होता है वही हम करवाते हैं, जो उनमें आगे जा करके उनमें कोई तकलीफ ना हो, उनका जो लोअर एरिया में कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए, तो उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनमें बॉडी का स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं होना चाहिए ना, कि ये सबसे हम सोच समझ कर एक्सरसाइज करते हैं। जो इंस्ट्रक्टर होते हैं बहुत अच्छा होना चाहिए कि वहाँ जाकर के सीखना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि फिल्म देख लिया, किसी ने कुछ भी करवा दिया, कोई बहुत लेग स्प्लिट करवा दिया। और ये सब मस्कुलिन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा औरतों को नहीं करना चाहिए। बस एक बात है कि सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए अपना प्रोटेक्शन के लिए, मगर अच्छे तरीके से। यही माने वापस पानी पे आया, पानी लेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे, नींद लेंगे और श्वास अच्छे से लेंगे, फिर ये जो परिश्रम सिर्फ 4% से ज्यादा नहीं करेंगे तो उनको कभी भी सेल्फ डिफेंस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज वो बहुत समझदार बन जाते हैं, वे कोई गलत रास्ते में जाएंगे ही नहीं हो तो। इसके लिए फॉर्मूला जो है ना हमारे, वो पकड़ के ही चलना है।
1: और ये बड़ी सही बात बताई कि

0: सोने से लेकर के उठने तक, अगर अगर हम पानी एडजस्टमेंट कर लिया तो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आता है, तो न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए, खाना कैसे खाना चाहिए, खाना खाने के बाद आपका नींद कैसा हो, नींद के बाद आपका ब्रेथ कैसा हो, ब्रेथ के बाद आपका परिश्रम कैसा हो। तो इसका मतलब क्या कि फिट रहने के लिए जिम ज्वाइन करना जरूरी नहीं होता है।
1: जी जी,
0: सिर्फ योगा ही काम नहीं आता, एरोबिक्स ही काम नहीं आता है, जुम्बा ही काम नहीं आता है। तो आपका वेलनेस मैनेजमेंट, आपका ब्रीथिंग, आपको पहले अपना शरीर को पहले समझो आप, आपका शरीर क्या बोलता है, इस वक्त आपका वजन क्या है। कोई कोई ऐसा है कि वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, 100 किलो के ऊपर चले जाता है, उनका पोस्चर खराब हो जाता है, चलने में दिक्कत, घुटने में तकलीफ, ओके, फिर उसके बाद घर का जो बहुत माहौल कुछ सही नहीं होता तो उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो बहुत सारे चीजों को मिला करके वहां पर तकलीफें शुरू होती है। तो इसके लिए अगर वो एक सही वेलनेस गुरु के अंडर पहुंच जाते हैं, अगर उनका सुबह अगर अच्छा हो जाती है, रात तक को सही रहेंगे, यानी कि उनका जो एक्सरसाइज में इतना कैलोरीज बर्न होना चाहिए
1: जी,
0: जितना आप कैलोरी खाते हो उतना कैलोरी आप सही तरीके से बर्न कर रहे हो, और आपका बॉडी अच्छे से स्ट्रेच कर रहे हो, और आपका ब्रीथिंग सिस्टम अच्छा है, आपका जो ब्रेन फंक्शन अगर सही है, आप ब्रेन को कितना ट्रेन कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट्स ऑल डिपेंड होता है कि आप सुबह का एक आधा एक घंटा दो घंटा आप कहाँ जाते हो, किधर आपका टाइम व्यतीत करते हो, और किसके साथ आप बैठते हो, क्या करते हो। ये जो आजकल गार्डन में जो एक्सरसाइज होता है, पूरा घूम के आते हैं सब, हर एक को सुबह जल्दी उठ करके एक डेढ़ दो घंटा देना जरूरी होता है। फिर कुछ लोग दोपहर को एक्सरसाइज करते हैं, शाम को एक्सरसाइज करते हैं, नेसेसिटी नहीं होता है। आप सुबह का सिस्टम सेट करो, जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, और कुछ एक डेढ़ घंटा अपने लिए दे दो, फिर बाकी बचा 8 घंटा सोने का अगर छोड़ेंगे तो बाकी बचा 14 घंटा, 14 आवर्स आप बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। कोई कलेश नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं है। इसका मतलब सब कुछ आपका सुबह का 2 घंटे के ऊपर आधारित है।
1: तो वो 2 घंटे में कुछ टिप्स आप बता सकते हैं?
0: आपको अच्छा योगा इंस्ट्रक्टर के अंडर योग कर लेना चाहिए, एरोबिक्स होता है या जिम होता है, मतलब अच्छे इंस्ट्रक्टर होना जरूरी है, वो ट्रेंड होना जरूरी है कि आप मिलजुल के कैसे एक्सरसाइज, आप घर पे भी कर सकते हो, आजकल ऑनलाइन भी बहुत हो जाता है, हर वो चीज आपको मिल जाती है, सब कुछ है, मगर डिपेंड होता है आप कितना लेजी है। ये बोलते हैं कि नहीं आज टाइम नहीं, आज ऐसा हो रहा है, आपके पास बहाने बहुत है एक्सरसाइज नहीं करने के लिए, बहाने लाखों है।
1: जी बिल्कुल, टाइम नहीं है।
0: हाँ जी, टाइम नहीं होता है, बट आप टाइम निकाल सकते हैं, आपके पास कुदरत ने 24 घंटा दिया है, आप उसमें 7 से 8 घंटा सोने का निकाल देंगे, 16 घंटा आपके पास है, 16 घंटे में आप बहुत कुछ कर सकते हो।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आप 8 घंटे से ज्यादा क्या काम करते हो, 9 घंटा 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं होता है, फिर बाकी बचा 8 घंटा क्या कर रहे हो आप। तो यहाँ पर आपके पास टाइम नहीं बोलने का कोई मतलब ही नहीं है, टाइम को आपको मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, हस्बैंड जल्दी जाते हैं, ओके, या फिर किसी को जल्दी ऑफिस जाना है, रात को लेट आते हैं, या बच्चों का, या हर एक चीज़ को मैनेज करना औरत के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, फिर भी स्मार्टली खुद के लिए 2 घंटा निकाल के सब कुछ पॉसिबल है।
1: जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग बहुत सारी कंपनियों में काम करते हैं, 12-14 घंटे का काम है, तो उनके लिए बीच में भी समय होता है जहाँ पर वो छोटी छोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, मेडिटेशन वगैरह भी कर सकते हैं,
0: बहुत कुछ आता है।
1: डॉक्टर राज, हमें यहाँ बताइए कि बहुत कम उम्र की लड़कियों में आजकल PCOD की समस्या होती है, और उनकी बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती, खान पान की दिक्कतें होती हैं, तो क्या फिटनेस का जो फंडा है आपका, इन जो एक्सरसाइजेज वगैरह, इन सबसे कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है, किस तरह से, बताइए।
0: एक तो प्योरली रिलेटेड स्ट्रेस भी होता है, थोड़ा हेरिडिटी फैक्टर होता है उनपे, वार्षांगित जिसको बोलते हैं कि उनका मास है और उनका मास से आता है, तो ये बात तो है। पर आजकल का जो खाने पीने का जो तरीका जो है, खास करके बहनों में, औरतों में, तो ये थोड़ा सा एक गाँव की बात अलग है, बट सिटी में जो ज़्यादा करके रहते हैं बाहर के खाने पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं, और खास करके जो IT सेक्टर में जो महिलाएं काम करते हैं, या फिर जैसा कॉरपोरेट सेक्टर में जो काम करते हैं, पूरा दिन बैठ के काम करते हैं, ओके, बैठा रहना एक इश्यू बनता है। और उसके अलावा भी अगर देखा जाएगा तो उनका जो नींद का पैटर्न सही नहीं होता है
1: जी,
0: बहुत लेट से सोते हैं और लेट से उठते हैं, और उसके अलावा बैठे रहते हैं और खाना कोई ढंग का नहीं खाते, ये रियलिटी है, ये एक रीजन है। और ऊपर से मोटापा, एक वेट जो उनका होना चाहिए, आपका वेट बहुत आसानी से माप सकते हैं कि 1 फुट होता है, 12 इंच होता है, तो 1 फुट का 12 किलो, ऐसा 5 फुट का है, औरत 5 और 5, 1 5 2 5 5, ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 का हाइट के होते हैं, तो उस हिसाब से देखा जाएगा तो एनीथिंग 55 kg to 70 kg का बीच में होना चाहिए किसी को भी। अभी आजकल 80-90 से ऊपर क्रॉस हो रहे हैं कुछ लोग, तो यही हिसाब से जब होता है तो एक ओवरवेट की वजह से फिर ये पूरा अंदर का सिस्टम बदलने लगता है। फिर भी उसका उपाय क्या होता है कि भाई सबसे पहले आप वेट कंट्रोल पर रखो, ब्रीथिंग अच्छे से करो, और खाना न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सही तरीके से करो और सही तरीके से योगा

0: रेस करेंगे कभी भी पीसीओडी का प्रॉब्लम नहीं आता है, ये रियलिटी है। और मेरे पास काफी लोग ऐसे आते हैं तो उनका विद इन एक महीना डेढ़ महीने के अंदर अंदर उनका सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, बिकॉज सही तरीके से स्ट्रेचिंग करते हैं, सही तरीके से एक्सरसाइज कर लेते हैं और सही उनको परीक्षण मिल जाता है। उनको मालूम है कि कितना पानी पीना चाहिए, कैसा श्वास लेना चाहिए, कितना नींद होना चाहिए, ये हर एक चीज उनको आइडिया होता है। सो दिस इज व्हाट इज, ये मैंने बोला ना कि 4+1=100 फॉर्मूला अगर सही तरीके से समझ जाएंगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं है
1: जी।
0: तो हमने पहले तो समझा था पानी का, समझ लिया ना। अब न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होता है, दैट इज अ भू तत्व, जल तत्व हो गया तो भू तत्व हो गया। और हमारे पास अभी भी 4 पॉइंट बाकी है, दैट इज अ न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट के बारे में देखना है, फिर आता है नींद का मैनेजमेंट देखना है, फिर ब्रेथ मैनेजमेंट देखना है
1: जी,
0: फिर लेबर मैनेजमेंट देखना है
1: जी।
0: तो दिस इज व्हाट इज एन इम्पॉर्टेंट इश्यू
1: जी।
0: तो अगर आप कोई भी आप प्रॉब्लम लो, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये फॉर्मूला के अंदर है
1: जी।
0: तो आप कुछ भी पूछो, आप फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप नींद कितना घंटा करते हो, तो नींद आप भले 8 घंटा करते होंगे लेकिन कब सोते हो? अब बोलते हैं कि रात को मैं 12-1 बजे सोती हूँ और सुबह 6 बजे उठ जाती हूँ, बाकी बचा नींद मैं दोपहर को कर लेती हूँ। नो, ये गलत होता है, ऐसा नहीं होता है। रेस्ट ले सकते हो, नींद जो लेना है आपको 24 घंटे में एक ही बार लेना है, 24 आवर्स में एक ही बार आपको नींद करना है।
1: क्या बात है।
0: हाँ, दैट इज व्हाट इज अ इम्पॉर्टेंट इश्यू। तो नींद इज क्या है कि भाई 8 घंटे का नींद, 7 घंटा मिनिमम सोना है, 8 घंटा मैक्सिमम सोना है, इससे ऊपर बिल्कुल नहीं। उससे ऊपर मतलब क्या हो जाएगा कि आपसे नुकसान शुरू हो जाएगा। कम नींद भी तकलीफ देता है, ज्यादा नींद भी तकलीफ देता है
1: जी।
0: सो मैटर इज वेरी सिंपल। तो आपका 4+1=100 में ये पांचों चीजों को मिलाना बहुत जरूरी है, वो परसेंटेज वाइज मिलाना जरूरी है। मैंने बोला 72%, 12%, 6%, 6% और 4%
1: जी,
0: तब जाकर के 100% हम जी सकते हैं
1: जी। तो आपने 5 तत्वों की बात की डॉक्टर साहब, आपने पानी का बोला कि वजन के हिसाब से इतना कैलकुलेट करना है, बाकी को कैसे कैलकुलेट?
0: मैंने बोला कि उसके बाद का बात आती है न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट।
1: हाँ,
0: पानी का बिल्कुल बगल में क्या है, देखिए 5 उंगली अगर आप देखते हो, किसी किसी का 6 उंगली होती है, अलग बात है, लेकिन कॉमनली 5 उंगली होती है। 5 उंगली अगर हथेली देखेंगे, सबसे अगर आप देखो तो छोटा उंगली आती है, छोटा उंगली दैट इज जल तत्व है, 5 तत्व का। सेकेंड आता है भू तत्व है, दैट इज भू तत्व इन द सेंस के लैंड रिलेटेड होता है, दैट मीन्स जंगल लैंड पूरा हो गया, यानी कि अर्थ, अर्थ एलिमेंट्स बोलते हैं उसको। उसके हिसाब से देखा जाओ, हमें सिर्फ 12% हमारे बॉडी में सिर्फ 12% खाना देना है, दैट मीन्स न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट। हमारा शरीर के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, करीबन 70 न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है डेली की, रोज का, क्योंकि हम देखते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, हाथ पांव हिलाते, मसल्स एक्टिविटी करते, वजन उठाते, इधर उधर घूमते हैं, हर एक के लिए हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। ये जो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा, खाना खाने से मिलती है। सनलाइट इज वन न्यूट्रिशन, पानी एक न्यूट्रिशन है, हवा भी एक न्यूट्रिशन है, उसके अलावा भी हमको 67 न्यूट्रिशन और देना है हमें। जिंक आता है, गोल्ड आता है, ठीक है, ये हर एक आयन आता है, प्रोटीन्स आते हैं, हर वो चीज़, कार्बोहाइड्रेट से लेकर के हर वो चीज़ हमको देना होता है। ये पूरा न्यूट्रिशन हम खाने में हमको मिलता है। वो खाना कैसे होना चाहिए, रॉ खाना होता है, कुकड होता है, फ्राइड होता है, इन चीजों में। तो पानी तो हम पी लिया है, सनलाइट तो हमको मिल लिया, बाकी जो चीजों को उसको डिवाइड करके हमें खाना, ये खाने का पद्धति हमको समझ में आना चाहिए। एक खाना हम सब एक साथ में मिलकर खा लेते हैं। अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाके थाली ऑर्डर देते हो, उसके अंदर रॉ भी आता है, फ्राइड भी आता है, कुकड भी आता है, सब कुछ आ जाता है, हम पूरा मिला देते हैं। एक्चुअली खाना खाने का तरीका क्या है, आपको 3 खाना साथ में नहीं खाना चाहिए
1: जी। जी,
0: 3 खाना कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। कौन सा 3 खाना नहीं साथ में खाना चाहिए? कुकड, फ्राइड,
1: अच्छा,
0: और रॉ, यानी कि कच्चा, पका हुआ और फ्राई किया हुआ। ये तीनों को एक साथ में नहीं खाना चाहिए,
1: अच्छा,
0: ये अलग अलग खाना चाहिए। से आप जो भी रॉ खाते हो, वो रॉ जो होता है पेट में जाने के बाद वो 20-25 मिनट रहता है, उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। 20 मिनट में पेट खाली हो जाता है, बोलते ना पेट खाली है तो पेट, अभी डॉक्टर बोलते ना कि ये दवाई लेने का, खाली पेट लेने का या दवाई लेने का, यानी कि खाना खाने के बाद खाने का, पेट यहाँ पर होता है, पूरा पेट नहीं होता है। स्टमक तो इतना ही छोटा हमारा, एक मुट्ठी के बराबर स्टमक होता है, उसके अंदर एसिड्स होते हैं, जूसेस होते हैं। तो हम जो रॉ खाते हैं वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं रहता है। इसके लिए पहले आपको सैलड्स या फ्रूट्स या जो भी है, रॉ जो होता है आप खाने के बाद, फिर आधा घंटे के बाद आप कुकड या फ्राइड खा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: सो फ्राइड अगर
2: नमक। वैक्यूम इवेपोरेटेड निर्मा शुद्ध नमक, जिसका दाना दाना एक समान।
3: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: कोई भी चीज को आपको 15-20 बार चबाना जरूरी है, मुंह के अंदर सलाइवा के साथ मिक्स होकर के अंदर जाएगा, तब जाकर के पूरा बॉडी काम करने लगेगा। नहीं तो आपको न्यूट्रिशन बॉडी को मिलेगा नहीं है, तो माल फंक्शन करेगा बॉडी। जब माल फंक्शन बॉडी करेगा तो नेचुरली इरिटेटेड रहेंगे, गुस्सा करेंगे और लेथार्जिक रहेंगे, काम आपका सक्सेसफुल नहीं होगा। काम तो किया आपने, मगर वो मन से काम नहीं किया, उसको जो मार्क मिलना चाहिए था नहीं मिला। आपने पूरा मेहनत किया था, 99% आना जरूरी था, मगर मुश्किल में 72% 50% आता है, क्योंकि आपको पूरा इन्वॉल्वमेंट नहीं रहा, बिकॉज आपका न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट सही नहीं था। इसके लिए खाना आपको सही तरीके से खाना है, चबा के खाना है, सलाइवा के साथ मिक्स करके आपको खाना है। दैट मीन्स मैं दो चीज बोलता हूँ कि आपको प्यास नहीं लगना चाहिए, भूख नहीं लगना चाहिए और नींद नहीं आना चाहिए। ये तीन चीज आपको नहीं आना चाहिए, अगर आता है दैट मीन्स आप बीमार है। तो एक मेरा जो आंसर आपको अटपटा लगा, नहीं लगा आपको?
2: अगर आपने नींद पूरी है तो नींद क्यों आएगी?
1: देखिए, लेकिन यही तो बात है आपको, अगर आपको नींद आ रहा है, आपको अगर भूख लग रही है, दैट मीन्स आपको खाना खाना जरूरी था। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट आपको हर 3-4 घंटे में कुत्ते को तो एनर्जी देना था, आपने 3-4-5 घंटे तक कुछ खाया नहीं तो नेचुरल आपको भूख लगेगी, फिर जाकर के आप हॉकिंग करेंगे यानी कि ज्यादा खाएंगे और उल्टा सीधा खाएंगे, जो कुछ भी मिलता है वो खा जाएंगे। अगर आपने कैलकुलेटेड तरीके से खाना खा लिया तो आपको भूख ही नहीं लगेगी, बिकॉज आपको खाना देना जरूरी है। आप सोचेंगे मुझे भूख नहीं लगती इसके लिए मैं खाना नहीं खाऊंगी, वो गलत होगा। शरीर मांग रहा है लेकिन कुछ कारणवश आपको समझ में नहीं आ रहा है। बाकी भूख तो आपको लगेगा, शरीर को लग रहा है, मगर आपको ब्रेन में वो सिग्नल नहीं मिल रहा है।
2: जी जी जी,
1: वो न्यूट्रिशन तो मांग रहा है वो तो, लेकिन इसके लिए बोलता भूख आपको नहीं लगना चाहिए, आपको खाना देना जरूरी है। प्यास नहीं लगना चाहिए, आपको हर आधा घंटे में पानी पीना जरूरी है।
2: बिल्कुल,
1: नींद नहीं आना चाहिए मगर आपको सोना जरूरी है। आप सो जाएंगे तो नींद नहीं आएगी आपको। नींद आना मतलब बीमारी है, क्योंकि आपको आंख जल रही है फिर भी ड्राइव कर रहे हो, आपको नींद आ रही है फिर भी आप पिक्चर देख रहे हो, नींद आ रही है आप फिर भी काम कर रहे हो, तो वो काम में एनर्जी नहीं रहेगी, 100% तो नहीं दे पाएंगे,
2: क्वालिटी नहीं मिलेगी,
1: नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको सोना जरूरी है। वो 8 घंटे अगर आपने सो लिया ना, पूरे दिन में नींद आपको आएगी नहीं। फिर आपने पूरा बाकी फॉर्मूला पूरा कर लिया तो आपको 8-9 बजे तो नींद आप सो ही जाएंगे, नींद आना ही नहीं चाहिए आपको। तो ये हो गया आपका, खाना हो गया आपका, नींद 8 घंटा सोना जरूरी है। फिर आता है ब्रेथ लेने का तरीका होता है, श्वास आप कैसा लेते हो
2: जी?
1: दैट इज व्हाट, श्वास लेने को आजकल हम श्वास लेते ही नहीं ठीक से। कुछ लोग श्वास लेना ही भूल जाते, उनको आइडिया नहीं कि वो श्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, नहीं मालूम है। बिना श्वास का इंसान 1 मिनट भी जीना मुश्किल हो जाता है। आप पानी के बिना 2 महीना जी सकते हो।
2: तो कैसे फोकस करें?
1: तो ये जो श्वास लेने का फोकस कैसा होता कि ये तो आपको बहुत सिंपल, जब हम पैदा होते हैं बच्चों को कोई सिखाया नहीं जाता है, बच्चा सही तरीके से श्वास लेता है जब पेट से बच्चा बाहर आता है। अब देखो तो उसका जब श्वास लेता है तो उसका पेट ऊपर आता है, आगे जा करके हमारा पेट श्वास लेता है, पेट अंदर चले जाता है। हम पेट अंदर लेते हैं, छाती को बाहर निकालते हैं श्वास लेने के लिए, पेट अंदर चले जाता है श्वास लेते हो तो। एक्चुअली गलत होता है, श्वास लेने का वो छोटा बच्चा आपको सिखाएगा, पेट से बाहर आया बच्चा है ना, वो सिखा देगा। उसको आप ऑब्जर्व करो, वो श्वास ले रहा है तो पेट उसका ऊपर हो रहा
2: है।
1: हाँ, तो हमको डीप ब्रीथिंग करना जरूरी। एक बार श्वास लेना शुरू करेंगे तो पूरा दुनिया समझ जाएगा इंसान। वो कैसा होता है कि श्वास जब लेते हो तो नाक से जाता है तो क्वेश्चन मार्क, एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है। आप एक क्वेश्चन मार्क हम छोटा सा लिखते हैं तो छोटा सा लिखते हैं ऐसा, वही चीज आप 1 फुट का क्वेश्चन मार्क लिखेंगे तो कैसा लिखते हो? एक ऐसा लिख कर एक क्वेश्चन मार्क हम ले लेते हैं। ऐसे हमको श्वास लेना है, 1 फुट का श्वास लेना है। नाक से श्वास गया मस्तिष्क होकर के वो सीधा लंग्स तक पहुंचाना जरूरी है। ये हर श्वास यहाँ तक पहुंचना जरूरी होता है। हम क्या करते हैं, श्वास 1/2 इंच का लेते, 1 इंच का लेते, 2 इंच का लेते, हमको 12 इंच तक का श्वास खींचना है।
2: जी जी,
1: हाँ, तब जाकर के हमको दुनिया समझ में आती है। अगर हम आधा श्वास लेते हैं तो हमको दुनिया या सामने के लोग या हम बच्चे भी समझ में नहीं आएंगे, हमारा माँ बाप भी हमको समझ में नहीं आएंगे, हमारा गुरु भी समझ में नहीं आएंगे
2: जी,
1: और हमारा बॉस भी समझ में नहीं आएंगे और हमारा काम भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? हम श्वास अच्छे से नहीं लेते। आप अच्छे से श्वास लेके देखिए तो आपको हर वो चीज समझ में आ जाएगा, आप भी हैप्पी रहेंगे। अचानक आप में एक एनर्जी आने लगती है कि हाँ यार मुझे ये भी आता है, हाँ मुझे वो भी आता है।

0: मैं बहुत और भी अच्छा कर सकता था। इसके लिए जो ट्रेनिंग में श्वास का क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरा श्वास लेना है और पूरा श्वास छोड़ना है। जितना आप इनहेल ले करते हो और उतना आपका ऑक्सीजन इंटेक होता है, उतना आपका ब्लड सेल्स एक्टिवेट होते हैं। जितना ब्लड सेल्स एक्टिवेट होता है उतना हमारा शरीर चुस्त रहेगा और मस्त रहेगा, कभी भी कोई बीमारी आपको आसपास में नहीं पटकेगा। इसके लिए बोलते हैं कि श्वास लेना क्रिया बहुत ही अच्छे से आपको कर लेना चाहिए। सो द ब्रीथिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। और श्वास को कुछ लोग रोकते हैं, श्वास को रोकना नहीं चाहिए। ठीक है, आप कुछ कंपटीशन कर रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, उस वक्त श्वास ले करके 5 सेकंड रुक करके फिर श्वास छोड़ना होता है। आप कुछ काम कर रहे हो उस वक्त श्वास नाक से लेना है, नाक और मुंह से श्वास को छोड़ना है। जैसे हम फूंक मारते हैं, जो नाक और मुंह से श्वास, थके हुए हैं तो नाक और मुंह से श्वास को छोड़ना है
1: जी।
0: लेना है सिर्फ नाक से और आराम से लेना है, ये कभी नहीं करना है।
1: अच्छा,
0: हाँ, जल्दी जल्दी श्वास लेते वो नहीं करना
1: चाहिए। वो तो बहुत सारे लोग ऐसे
0: नहीं करना चाहिए वो करना। हाँ, परीक्षण जैसा कपालभाति हम करते हैं, हाँ। जो अनुलोम विलोम वगैरह करते हैं वो नोस्ट्रल क्लीन करने के लिए ठीक है,
1: लेकिन अमूमन नहीं
0: लेना। नहीं करना चाहिए, नॉर्मल ब्रीथिंग करना चाहिए। जानवर को कभी आपने देखे नहीं, वो भी हमारे साथ ही पैदा हुए, वो भी हमारे साथ ही जाएंगे, तो वो तो कभी अनुलोम विलोम नहीं करते, वो तो कभी कपालभाति नहीं करते, वो तो कभी योगा नहीं करते, फिर भी अच्छा जी लेते। तो मैटर ही बनता है, हम ह्यूमंस थोड़ा एडवांस्ड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके हम कुछ एक्स्ट्रा कर लेते हैं, बट योगिक क्रिया इज अलग है। जब योग परीक्षक जो होते हैं वो सिखाते हैं, वो अलग चीज़ होता है, बिकॉज आपका सिस्टम और एनहांस कर देते हैं उसके अंदर, और आपको अच्छे से जीने का कला आ जाता है। इसके लिए अच्छे से इंस्ट्रक्टर के अंदर अगर आप सीखेंगे, आपको पूरा जिसके पास नॉलेज है उनके अंडर में सीखना जरूरी होता है, कुछ भी करना नहीं होता है। तो ब्रीथिंग इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, श्वास अच्छे से अंदर लेना है, श्वास अच्छे से आपको बाहर छोड़ना जरूरी है। तब जा करके 4 पॉइंट होता है, यानी कि आपको पानी पीने के लिए आना चाहिए, खाना खाना आना चाहिए, नींद सही तरीके से आना चाहिए,
1: सांस
0: अच्छे से लेने आना चाहिए, तो 4 हो गया, प्लस 1 परिश्रम, वो इज इक्वल टू करेंगे तो 100 साल की जिंदगी आपका सही है। अच्छा। और कोई चीज तो है ही नहीं है, कुदरत ने तो एक ही चीज बोला कि भाई आपको ये शरीर मैं दे रहा हूँ एज ए बाड़े के तौर पर, मुझे इतना देना है आपको रिटर्न में। रिटर्न में क्या देना है? पानी, खाना, नींद, हवा और मेहनत। अब मेहनत कैसा करना है? मेहनत मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत परिश्रम, जो सिर्फ 4% देना है, 4% मेहनत देना है। तो 4% में क्या क्या आएगा? आप थोड़ा सा झुकेंगे, आपका जो कोणी, जो एल्बो जो होते हैं ना, ये कान से ऊपर जाना चाहिए कम से कम दिन में 100 बार, कोई भी हालत में। आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, कोई डब्बा ऊपर रख रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कहे थोड़ा एक बार ऐसा कर लिया, एक बार ऐसा कर लिया, हो गया, 2 हो गया, फिर घर में थोड़ा अंगड़ाई लिया 2-3 बार, 5-6 काउंट में हो गया। कभी हाथ कोई भी कारण आपको उठाते रहना चाहिए, तभी आपका शोल्डर अच्छा हो जाएगा। थोड़ा नेक को मोमेंटम देना है अच्छे से, एक बजे वो बजे देखना, ये बजे देखना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, आपका C1 C2 या पर सर्वाइकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा ट्विस्ट कर लिया, थोड़ा इधर से कुछ गिरा उठा लिया, इधर से गिरा कुछ उठा लिया, या अगर जैसे झाड़ू पोछा कटका लगाते हैं हम घर में, उसमें भी एक्सरसाइज हो जाता है। कुछ वजन उठा करके ऊपर रख दिया, कुछ ऊपर से लेके नीचे रख दिया, या आप थोड़ा सा चल लिए। हम 1 ही घंटा चलते हैं, सिर्फ चलना एक्सरसाइज नहीं, चलना तो एक इंग्रेडिएंट है। आप एक पाव भाजी बना रहे हैं, उसके अंदर 50 मसाला डाल रहे हैं, तो वॉक 1 मसाला है, अभी भी 25 मसाला बाकी रहता है। तो उसमें एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग्स, उठक बैठक, वजन उठाना रखना, ये पूरा करना जरूरी है। इसके लिए कैलकुलेटेड एक्सरसाइज प्रोग्राम वेलनेस मैनेजमेंट में आता है कि कितना वजन उठाना चाहिए, कितना वजन रखना चाहिए, कैसा उठाना चाहिए, कैसा स्ट्रेचिंग करना चाहिए, कैसा बैठना चाहिए, कैसा उठना चाहिए, कैसा चलना चाहिए, ये पूरा थोड़ा बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। कुछ माहौल बनता है, एरिया बनता है, इसके लिए एक जगह जाकर के सीखने से अच्छा लगता है। आप घर में भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, यानी कि 4% आपको मेहनत तो करना है, जैसे कुएं से पानी निकालना, पेड़ चढ़ना, ओके, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नारियल पानी पीना है तो फिर आप पेड़ भी चढ़ना जरूरी होता है।
1: क्या बात है,
0: ओके, नहीं तो आप पानी पीने के लायक ही नहीं है, क्योंकि कुदरत ये बोलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर कोई पेड़ तो नहीं चढ़ सकता है, टेक्निक तो हम तो आता नहीं है, फिर भी नारियल पानी तो पीना है, पीना है तो ठीक है, आप 1 किलो चल के आकर के फिर पानी पियो। आप गाड़ी पे आए, गाड़ी से नीचे उतरेंगे नहीं, बैठे बैठे अपना नारियल पिया और निकल गया, तो वो कोई काम का नहीं, वो अंदर जाकर के गैस ही करेगा। तो इसका मतलब आप 1/2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर साइकिलिंग करके आए, चल के आए, एक नारियल पानी पीते हो, वो उसका काम करेगा,
1: फायदा है।
0: दैट मीन्स क्या है कि मेहनत के सामने आपको उसका रिजल्ट आता है।
1: जी,
0: आप मेहनत नहीं करेंगे फिर भी आप खाते जाएंगे, पीते जाएंगे, तो फिर आपको रिजल्ट आने वाला नहीं। इसके लिए मेहनत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 4+1=100, 100 साल की जिंदगी पूरा होता है। सो दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये अगर इंसान समझ गया तो कभी भी उनको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं
1: बिल्कुल
0: है।
1: आप डॉक्टर साहब 100 साल की जिंदगी की बात कर रहे हैं और आपका ये कहना है कि वृद्धावस्था में भी युवा रहा जा सकता है, वो क्या नुस्खा है जरा बताइए, क्योंकि अभी तो कॉम्पिटिशन सा बना हुआ है कि हम कैसे लंबे समय तक युवा बने रहे और देखने में तो सभी को लगता है कि आज तो सेल्फी का जमाना है तो सभी चाहते हैं कि युवा बने सेल्फी लें, तो बताइए ये जरा नुस्खे बताइए हमारे।
0: तो एक तो मैं आपके सामने बैठा हूँ तो आपने मेरा तो एज तो आपने देख लिया, मैं ट्रेन में भी अगर आता हूँ तो मुझे सीनियर सिटीजन का दर्जा है
1: जी।
0: फिर भी मुझे अगर वो जगह मुझे मिली है तो 40-50 साल के जो होते हैं जो वृद्धावस्था में दिखते हैं वो हमारी तरफ देख करके गुस्सा करते हैं, आप इतने यंग है तो आप सीनियर सिटीजन में कैसे बैठे,
1: झूठ बोल रहे हैं।
0: ओके, तो ये हमने बहुत फेस किया हुआ है। तो रियलिटी है कि भाई आपको यंग एट हार्ट, एज इज जस्ट अ नंबर, वो एक नंबर होता है। आप इतने साल के हो, इतना साल पैदा होकर के मेरे इतना साल हो गया, मगर वो दिखना जरूरी नहीं। बुढ़ापा एक बीमारी बोलते हैं हम इसको, बुढ़ापा नहीं चाहिए हमें, उम्र भले उनका 90 साल क्यों ना हो, अब यू शुड लुक एंड यू शुड लिव यंग। वो कैसा पॉसिबल है, यही फार्मूला। ये फॉर्मूला कैसा है, आपको हर आधे घंटे में पानी पीना है। देखिए कितना भी आप मेरे को क्वेश्चन करेंगे हम घूम फिर के वहीं पर ही आते हैं। तो अल्टीमेटली ये एक बात होती है कि पानी हर आधे घंटे में इंसान को पीना है
1: जी,
0: प्यास लगे या नहीं लगे हर आधे घंटे में पानी पीना चाहिए। और खाना 3 साथ में नहीं खाना चाहिए, कौन सा, रॉ, कुक्ड और फ्राइड, ये तीनों एक साथ में नहीं खाना चाहिए। फिर आता है नींद, 24 घंटे में एक ही बार सोना चाहिए, रात को 9-10 बजे सो जाना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो उसके बाद आपका पास 2-3 घंटा एक्स्ट्रा टाइम होता है, उस टाइम में आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत ही दुनिया का रिच इंसान बन जाएंगे आप हेल्थ वाइज और फाइनेंस वाइज, बिकॉज आपके पास एडवांस टाइम रहता है। मैं तो लेट उठ के भाग दौड़ करते हैं उसके बाद पूरा दिन उनका बहुत खराब जाता है। इसके लिए जल्दी सोने का अगर प्रैक्टिस कर लिया आप, दिया तो 24 घंटा ही है, आप 12 बजे सोते हैं फिर लेट उठते हैं, वो नहीं, आप वही चीज़ को जल्दी जल्दी करो, 2 घंटा एडवांस रहो तो आपका वो सर्कल आप अच्छे से, यानी कि अच्छे से सोना बहुत ज़रूरी है। नींद है आपका बेस है, पूंजी बोलते हैं उसको, FD बोलते हैं हम अपना भाषा में, नींद आपका FD है, उससे इंटरेस्ट मिलती है, उससे इंटरेस्ट से आपका 16 घंटा चलता है। अगर आपने अपना FD तोड़ दिया
1: जी,
0: मान लीजिए कि आपका नींद 1 लाख रुपया का है तो आपका FD है, आपने उसमें से 50,000 खर्चा कर लिया, आपने उसका इंटरेस्ट जो आता है कम आता है, आपका 16 घंटा नहीं चलेगा, आप समझे ना। तो क्या होता है कि भाई FD को तोड़ना नहीं है, FD को फिक्स रखो आप, उसको और अच्छे से उसको एनहांस करो, तो उससे जो इंटरेस्ट आता है उससे हमें जीना है, तो हमको FD को बिल्कुल छेड़ना नहीं है। तो ये जो स्लीप को ज़्यादा छेड़ना नहीं हमें, 16 घंटा का हमारा जो पिरामिड बनता है, 8 घंटा हैप्पीनेस होता है, हैप्पीनेस हेल्थ एंड उसका जो होता है ना दैट इज़ अ स्लीप बनता है, वो जो 8 घंटे का स्लीप के ऊपर आपका पिरामिड बना हुआ है, दैट मीन्स 8 आवर्स का 16 घंटा डिवाइड होता है, जो वो जो 16 घंटा जो बैठा है आपका 8 घंटे का नींद पर। सो वो नींद आप अच्छे से कर लेंगे तो आपका ये पिरामिड बहुत अच्छा बन जाता है, हेल्थ, हैप्पीनेस और होप बोलते हैं। आप सुबह उठेंगे होपफुली उठेंगे, आप जैसे उठते हो तो आप कुदरत को शुक्रिया अदा बोलो उठाने के लिए, और 16 घंटा अगर आपका अच्छा गया है तो रात को वापस थैंक यू बोल के सो जाओ कि आज का दिन मेरा 16 घंटा बहुत अच्छे से गया, यानी कि इंसान को जीना है सिर्फ 16 घंटा, 8 घंटा आपको नींद पे निकालना है
1: जी।
0: तो आप 16 घंटे दिन में जीने का सोचो तो वो अच्छे से हो जाता है, उठेंगे तो होप है, उठ गए तो फिर थैंक यू बोल के उठना है अपने को।
1: बहुत बढ़िया बात आपने बताई है। और डॉक्टर राज आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपकी बातों से बहुत सारे लोग इस समय प्रेरित हो रहे होंगे, तो आपने कौन सी डिग्री हासिल की है, अगर हमारे श्रोता भी इस फील्ड में आना चाहते हैं अपने को फिट फाट रखना चाहते हैं तो क्या पढ़ाई करें और किस तरह से आएं।
0: देखिए पढ़ाई तो नॉर्मल रूटीन में होता है कि कोई अनपढ़ भी होना जो भी वो फिटनेस एक्सपर्ट बन सकता है, बिकॉज एक्सपीरियंस बहुत बड़ा काम आता है।
1: लेकिन आपने PhD
0: मैंने PhD किया अल्टरनेटिव मेडिसिन में, और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैंने वेलनेस में किया हुआ है जो अपोलो हॉस्पिटल होता है वो ऑर्गेनाइज करता है। उसके अलावा भी हमने बहुत ज़्यादा जो छोटे छोटे जो कैंप्स होते हैं जो 1 मंथ का होता है 2 मंथ्स का होता है, जो छोटे छोटे जो होते हैं जो एक्सपर्ट से अंडर शारीरिक तौर पर किसी और का काम करते हैं, तो आपके पास वो आवड़त जिसको बोलते हैं ना जो आपका वो आना जरूरी है, यू हैव टू बी एक्सपर्ट। तो इसके लिए हमको आयर जो हमसे ज़्यादा नॉलेज वाले से आपको सीखना ज़रूरी होता है, फिर भी इसका डिग्रीज होते हैं आपको, जब वेलनेस होता है फिजिकल एजुकेशन होता है उनके, उसके अलावा योग परीक्षण केंद्र होता है बहुत जगह पर है, जैसे बेंगलुरु में विवेकानंद इंस्टीट्यूट है, उत्तराखंड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत जगह पर कॉलेजेस पूरा खुली हुई है, नेट में बहुत सारा मिल जाता है, इंटरनेशनल वेलनेस भी होता है
1: जी।
0: बहुत जगह पर वेलनेस में ट्रेनिंग में आना चाहते हो तो मिलता है आपको, यूनिवर्सिटी उसका डिग्रीज देती है, योगा डिग्री भी होता है
1: जी,
0: तो कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील
1: जी,
0: बट पैशन होना जरूरी है।
1: हाँ।

0: सिर्फ डिग्री होने से कुछ नहीं होता है, आपको पैशन होना जरूरी है इसके लिए. मैं अगर इस फील्ड में हूँ तो मैं बचपन से हूँ, मैं 12 साल का था मैं ब्लैक बेल्ट हूँ. अच्छा. तो आज मेरा 63 ईयर्स, आज की तारीख में भी मैं क्लासेस लेता हूँ. मेरा सूरत में क्लासेस चलती है, आयु फिटनेस वेलनेस मैनेजमेंट करके मेरा ऑर्गेनाइजेशन है, WAYU. तो इसमें हमारा डेली रूटीन चलता है, उसके अलावा भी ऑनलाइन में भी मैं परीक्षण करता हूँ, तो हम एग्जाम भी कंडक्ट करते हैं.
1: जी,
0: तो ये बात भी है
1: जी. तो हमारे श्रोता सुन रहे हैं जो जुड़ना चाहेंगे, आपसे जुड़ भी सकते हैं और ऐसी कोई डिग्री हासिल कर सकते हैं. अब छोटे छोटे, बहुत संक्षेप में आप बताइए, कुछ छोटे सवाल छोटे जवाब.
0: जी.
1: तो
0: जी.
1: हम सब तो आवास की दुनिया में काम करते हैं, तो जो आवास की दुनिया में काम करते हैं उनके लिए पानी कितना और कैसे पीना चाहिए, बहुत संक्षेप में बताइए.
0: जी, एक तो पहली बात तो माइक्रोफोन जो होता है ये आपका मॉइस्चर को खींचता है, ये जो माइक्रोफोन. ओके. तो फिर नेचुरली आपके पास तो पानी होना जरूरी है, और पानी को डायरेक्ट नहीं पीना है, पानी मुंह में रखना है. रखने के बाद 5 सेकंड 10 सेकंड रखने के बाद वो पानी को टिप्पा टिप्पा निकलना है.
1: अच्छा.
0: एक साथ में गल्प नहीं करना है.
1: ओ.
0: और पॉइंट वाइज आपको निकलना है कि गला मॉइस्चर रखना है ऑल द टाइम. ये तो मॉइस्चर रखना है. दूसरा क्या होता है कि गुनगुना गर्म पानी में थोड़ा सा हल्दी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं हल्दी, और थोड़ा सा प्योर घी अथवा कोकोनट ऑयल थोड़ा सा डाल के आपको गले में रखना है. रखने के बाद उसको
1: पानी में या दूध में?
0: पानी में.
1: ओके.
0: सिर्फ पानी में. उसको रख के थोड़ा सा आप अंदर डालेंगे तो क्या होता है कि आपका ये गला मॉइस्चर रहेगा, और वहां पे जो थोड़ा बहुत डैमेज होगा वो हील हो जाएगा. और उसके अलावा भी छोटी छोटी काम, और जैसे कि आकार का बोलना जरूरी होता है, दैट इज अ नॉर्मल रूटीन. आकार उकार मकार में आकार जो होता है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है.
1: अच्छा.
0: गल्प करते रहना चाहिए.
1: हाँ.
0: बार बार आपको मुंह में सलाइवा लाना है. ऐसा टंग से मुंह में रोल करने के बाद मुंह में सलाइवा आता है.
1: Okay.
0: सलाइवा को गल्प करना चाहिए. गल्प करो, ये बिल्कुल मॉइस्चर हो जाएगा, वापस फ्री हो जाएगा आपका गला.
1: क्या बात है भाई. तो जो लोग वॉइसिंग डबिंग में काम करते
0: उनके लिए
1: हैं,
0: बहुत इम्पोर्टेंट
1: चीज़ है, बड़ी कारगर बात बताई. तो ये आपने बताया कि अकार, तो अकार कितने सेकंड करना चाहिए, और मकार क्या है वो क्या बताया?
0: अकार उकार मकार से ओमकार बनी हुई है. ओमकार इज नॉट ओ एम, इट इज आ ऊ मा ए यू एम. अकार उकार मकार होता है. तो वो बोलने का तरीका होता है, जब आप मकार डालते हो तो आपका जो टंग जो है ना ऊपर पैलेट पर टच होना चाहिए. बाकी कुदरत ने दिया हुआ साउंड है. आप अगर अंतरिक्ष का साउंड देखेंगे तो ओमकार ही आता है.
1: जी, जी.
0: बट वो ओम ओम नहीं है, वो एम नहीं, वो आ ऊ मा. आप बराबर कान डाल के सुनेंगे तो यही आवाज करेगा, यानी कि मुंह खुला उकार पे आ गया, मुंह बंद किया टंग ऊपर गया तो वो मकार पे आ जाता है.
1: जी, जी.
0: तो ये मकार इस कुंभक होता है.
1: अभी हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि बिना किसी महंगे उपकरण के जिम जाने के अलावा घर पे बैठे बैठे वो कौन सी एक्सरसाइज है जो कर सकते हैं हमारे श्रोता, बहुत संक्षेप में बताइए.
0: देखिए बहुत सिंपल है, कोई भी मिनरल वाटर बॉटल होता है वो 1-1 लीटर का दो, या उसमें पानी खाली करके उसके अंदर सैंड भर देने का होता है, 2 किलो का हो जाता है.
1: जी जी.
0: आप सैंड भर देंगे, ऐसा 5-6 बॉटल रख देने का, 2 किलो का एक रखने का, 1 किलो के आधा किलो के एक रखने का. कुछ नहीं, खाली उसको उठा करके नीचे रखना होता है,
1: उससे हाथ की एक्सरसाइज
0: हो जाती है.
1: जी.
0: ओके. आप वो लेकर के उठक बैठक कर सकते हैं. आज को सोशल मीडिया का टाइम ऐसा है, आप कोई भी यूट्यूब में या फिर कोई भी डाल दो तो आपको 15 मिनट का 20 मिनट का 25 मिनट का एक्सरसाइज तो दिखाई देते हैं. फिर भी हर एक को पुशअप्स आना चाहिए, स्क्वाट करना आना चाहिए, अपरेजिंग यानी कि दोनों हाथ को सर के ऊपर लेकर के आसमान की तरफ अपने आप को खींचना चाहिए. दिन में 25-50 बार ऐसा करते रहेंगे, सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है. और रही शावर लेने की लोगों को बहुत आदत है, शावर के नीचे आके खड़े हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए. आप बैठ के नहाना चाहिए, बाल्टी से पानी लेकर के नहाना सबसे अच्छा होता है. खड़े खड़े जो नहाते हैं ना वो सही नहीं होता है. और रोज साबुन लगाने की जरूरत नहीं होती है.
1: जी जी.
0: साबुन आपको वीक में एक या दो ही बार लगाना होता है, और सिर्फ हाथ में हथेली. लोग बहुत साबुन लगाते हैं, बहुत शैम्पू लगाते हैं, बहुत यू नो कंडीशनर लगाते हैं, नेसेसिटी नहीं होती है. स्किन का मॉइस्चर भी निकल जाता है उससे. बहुत ज्यादा क्रीम्स वगैरह जो लगाते हैं वो भी नहीं लगाना चाहिए, यानी कि वो खून चूस लेता है, यानी कि अंदर चले जाता है. तो जो कुछ भी हम खा सकते हैं, जो हम खाते हैं वो हमको स्किन में लगाना है. आप जो चीज़ नहीं खाते हैं वो स्किन में लगाएंगे वो क्या होगा, वो सीधा पोर्स के अंदर जाकर के ब्लड के साथ अंदर जाकर इंटरफेयर करता है.
1: जिससे
0: ये पर छोटी छोटी बातें याद रखना जरूरी है.
1: और फिटनेस के जरिए क्या दर्द में भी राहत मिल सकती है? बहुत सारे लोगों को तकलीफें होती
0: हैं. नी का इश्यूज है बहुत लोगों को, एंकल का इश्यूज है, सर्वाइकल प्रॉब्लम होता है. रिहैबिलिटेशन हम करते हैं जिनको जो तकलीफ है, स्लीप एपनिया होता है या फिर अल्जाइमर होता है या फिर बहुत सारे ऐसे जो तकलीफ से ये करते हैं कि उनके लिए वो आते हैं तो एक्सरसाइज उनके हिसाब से होता है. सो बैठे बैठे पाँव को थोड़ा सा लंबा करना
1: जी,
0: या फिर यू नो नेक का एक्सरसाइज करना, इन चीज़ों से बहुत उनको इजाज़त मिल जाती है. यानी कि सही तरीके से वेलनेस मैनेजमेंट में आते हैं.

0: सीखते हैं तो उनको 100% रिजल्ट मिलता है। मेरे पास दिन में 100 जन आते हैं
1: जी,
0: और सभी बाहर गांव से भी आते हैं, वो बहुत अच्छे होके जाते हैं। तो 3-4 दिन का उनका रूटीन होता है, एक दिन का रूटीन होता है, वही 2-3 घंटे भी आके सीख के जाते हैं तो उनको रिजल्ट मिलता मिलता मिलता ही है।
1: जी जी, बढ़िया बात, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं, और बस एक लाइन में हमें जवाब दीजिए, वो ये कि 5 तत्व की आपने बात की, जहाँ वायु, आकाश, पृथ्वी, जल और अग्नि, तो ये 5 तत्वों के माध्यम से आज के आधुनिक जीवन शैली में इनका कितना महत्व है और क्या संभव है ये?
0: नहीं, आधुनिक बोलिए या कोई भी एंशंट, या ना काम, माँ तो माँ ही होती है, माँ का गर्भ से अगर आए तो इसमें आधुनिक भी नहीं चलता है
1: जी,
0: या फिर ये भी नहीं चलता, माँ माँ ही होती है, बाप बाप ही होते हैं। तो माँ तो ये बनता है कि आप कितना भी बड़े क्यों ना हो, आप 100 साल से ज्यादा नहीं जी सकते, ओके, आप उससे नीचे ही रहेंगे। बट हमें कुदरत ने हमको दिया है तो एज ए चैलेंज आप उसको करके जाओ, नहीं तो हमको वापस आना पड़ेगा, ओके, फिर हमको अच्छा शरीर नहीं मिलेगा। कितना योनि पसार होने के बाद हमको ये शरीर मिला, अच्छा शरीर मिला है तो उसे अच्छे से जी के जाना है, अपने को दुनिया को कुछ दे के जाना है, समझा के जाना है, तो हमें इसे वेस्ट नहीं करना है। हर दिन आप अच्छे से जी लो तो आपके पास सब कुछ मिल जाता है। तो रियलिटी ये है कि भाई आधुनिक या युग हो, कोई भी युग में आपको अच्छे जीने के लिए 5 तत्वों से अगर आए हैं तो आपको 5 तत्वों का जो नियम है, कानून है, वो कानून के हिसाब से जीना पड़ेगा। दैट मीन्स हर आधे घंटे में पानी पीना है, हर 3-4 घंटे में खाना खाना है, 8 घंटे का नींद करना है, और 1 मिनट में 10 से 15 बार श्वास अंदर बाहर लेना है, और दिन में कम से कम आपको आधे घंटे से लेकर 1 घंटे तक परिश्रम करना है, जिसमें आपको थोड़ा कैलोरी बर्न हो, दिन में 2-3 हज़ार कैलोरी बर्न हो जाए, उतना नहीं होता है, बहुत मुश्किल है, कम से कम 800-900 कैलोरी बर्न करने की कोशिश करना चाहिए, जिंदगी अच्छे से निभा सकते
1: जी। डॉक्टर राज, आपने पूरे प्रोग्राम के दौरान इतनी बार पानी पीने के लिए कहा है और इतने सही तरीके से नींद प्रॉपर लेने के लिए कहा है, जो कि कम हो रही नींद आजकल, और न्यूट्रिशन की ओर इतनी बार इशारा किया है, ध्यान देने को बोला है, तो हमारे श्रोता जरूर आज से सजग हो जाएंगे इस ओर। अब चलते चलते बताइए कि इसी में हम गाने को भी शामिल कर लेते, संगीत भी एक माध्यम है जिससे सुकून मिलता है, कौन सा गाना आपकी ओर से हम नजर करें अपने श्रोताओं को?
0: इस वक्त मुझे क्या आ रहा है, तो मैं बोला अच्छा जिंदगी जीना है, तो फिर एक गाना जो मेरा फेवरेट है, इस दुनिया में जीना हो तो सुन लो मेरी बात गम छोड़ के, गाने में बहुत एनर्जी है, और आई थिंक ये हेलन जी उसमें डांस किया,
1: मस्ती से जीने की बात,
0: जीने की बात है, तो वो गाना मेरा फेवरेट है ऑल द टाइम, सो आई थिंक श्रोता भी बहुत एंजॉय करेंगे
1: जी, सुनते हैं।

0: तो डॉक्टर राज, बहुत सारी जानकारी दी आपने, आपका तहे दिल से शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर से।
1: थैंक यू वेरी मच कॉलिंग मी हियर एंड आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग सब अच्छे रहिए, ठीक रहिए एंड खुश रहिए, 100 साल जिंदगी पूरा कीजिए।
0: क्या बात,
1: खुशी खुशी।
0: शुक्रिया शुक्रिया, नमस्कार
1: नमस्कार।
2: ये थी वेलनेस गुरु डॉक्टर राज अशोक शेट्टी से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहयोग काजल भदरगे और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: ये विविध भारती।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में सीजेपी के प्रदर्शन के बीच श्री नवीन ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये काम कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर यह विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मनसूबे को पानी फेरेंगे।
1: गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे सीजेपी समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। ये प्रदर्शन मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान में कथित अनियमितताओं को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए प्रस्तावित है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के प्रस्तावित प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने अनुमति नहीं दी है। पुलिस ने इस संबंध में सीजेपी द्वारा पहले किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन और लोगों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया है। नई दिल्ली में कल मीडिया से बातचीत में दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नुपुर प्रसाद ने बताया कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति के लिए कम से

0: कम 10 दिन पहले आवेदन करना आवश्यक है। राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सुरक्षा कारणों से आज 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रखने की घोषणा की है। सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और इसके अनुसार आगे की जानकारी दी जाएगी। प्रभावित स्टेशनों में जनपथ, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, नई दिल्ली, सेवा तीर्थ और मंडी हाउस शामिल हैं। इन स्टेशनों पर मेट्रो बदलने की सुविधा जारी रहेगी। हालांकि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन पर यह सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। दिल्ली में सरायकालेखां और न्यू अशोक नगर के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएँ आज रात 10 बजे तक निलंबित रहेंगी। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज राजस्थान के जोधपुर वायु सेना स्टेशन पर बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2026 के प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यह अभ्यास 26 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारतीय वायुसेना के साथ मित्र देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस, जर्मनी, श्रीलंका और बांग्लादेश की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही हैं। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि वो परमाणु धमकियों से डरने वाला नहीं है और किसी भी आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के वरिष्ठ सलाहकार अनमोल शेर बेदी ने जिनेवा निरस्त्रीकरण सम्मेलन में कल न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति की बैठक में ये बात कही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई बातचीत के बाद अमेरिका ने 7 अप्रैल 2027 तक रूस के डीजल ईंधन की बिक्री और आयात पर लगे प्रतिबंधों को अस्थायी रूप से हटा दिया है। अमेरिका के वित्त विभाग ने कल रात इस निर्णय की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने महालया के पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर जारी एक संदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि मां दुर्गा का आशीर्वाद समाज में सुख, करुणा और नई उम्मीद लेकर आए। उन्होंने चारों ओर शांति और समृद्धि की भी कामना की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान फिल्मकार गुरुदत्त को और महान गजल सम्राट जगजीत सिंह को।

0: अरे जा जा जा जा।
1: अरे सुन सुन सुन सुन।
0: जा जा जा जा।
1: सुन।
2: ये आवाजें थी गीता दत्त और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था आर पार। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे ओपी नैयर।
3: मेरी दुनिया, मेरी दुनिया।

चुपचाप था मैं बेखबर, अरे कैसे आता, हाय कैसे आता।

यह आवाजें थी मोहम्मद रफी और साथियों की। फिल्म का नाम था मिस्टर एंड मिसेस 55। इसे मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और धुन ओपी नैयर की थी।

हेमंत कुमार की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म प्यासा का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। और अब लेते हैं एक अंतराल।

0: गीता दत्त की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म कागज के फूल, फिल्म का गाना। गीतकार थे कैफी आजमी और संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: और आइए कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। फिल्म का नाम है 14वीं का चांद। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार शकील बदायूनी और संगीत रवि का।

0: मोहम्मद रफी को अभी आपने सुना, फिल्म का नाम था चौदहवीं का चांद।
1: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
2: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
1: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
2: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
1: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
0: और अब रवि का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम भरोसा।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत सी रामचंद्र का संगीत है, साहिर लुधियानवी के बोल, आवाज लता मंगेशकर की है। फिल्म का नाम है बहू रानी।

फिल्म बहुरानी का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज लता मंगेशकर की थी। कार्यक्रम का अगला गीत आशा भोंसले की आवाज में, फिल्म का नाम है साहेब बीबी और गुलाम। इसे शकील बदायूनी ने लिखा है और धुन हेमंत कुमार की है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि यार मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: और हेमंत कुमार को अभी आपने फिल्म जाल में सुना। इसे साहिर लुधियानवी ने लिखा था और तर्ज सचिन देव बर्मन की थी।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: यादों की महफिल में अब सुनिए कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी के बोल, आवाज जगजीत सिंह की, और ये फिल्म है अर्थ।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कुलदीप सिंह के संगीत निर्देशन में जावेद अख्तर का लिखा गीत आपने सुना। स्वर जगजीत सिंह और चित्रा सिंह के थे। फिल्म का नाम था साथ साथ।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। इसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गड्डिले
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं इंदिवर की रचना, जगजीत सिंह का संगीत, फिल्म का नाम है प्रेम गीत और स्वर जगजीत सिंह का ही है।

लता मंगेशकर और साथियों को अभी आपने सुना फिल्म का नाम था चोरी चोरी। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत शंकर जयकिशन का था। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज 10 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये साल में एक दिन दो बार 9 मई और साल में ये दिन दो बार 9 मई और 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि प्रवासी पक्षी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर प्रवास करते हैं। इस दिन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी पक्षियों, उनके संरक्षण और उनके आवास स्थलों को बचाने के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। विश्व पक्षी दिवस और बहुत बढ़िया थीम लेकर आप आई हैं, और आज सुरीला सफर में पक्षियों के साथ हम भी नीले अंबर में सुरीले मधुर गीतों के साथ सैर करेंगे। बिल्कुल। और वही एक श्रोता ने लिखा है कि हमारा मन भी कभी कभी उड़ान भरता है, यादों पंख लगाकर बीते हुए दिनों में पहुंच जाता है, संगीत की धुनों के साथ अनजानी राहों पर निकल जाता है और सपनों के आसमान में विचरने लगता है। उम्र चाहे कितनी भी हो, मन की उड़ान कभी थमती नहीं। आखिर पंछी हो या इंसान, उड़ान ही तो जीवन को नए अर्थ देती है और अपनी जड़ों की ओर लौटने का सुख उस उड़ान को पूर्णता देता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की सुंदर सी इबारत में इसमें प्रवासी पक्षियों की उड़ान, जीवन का सफर, अपनों से बिछड़ना, अपनी जड़ों की ओर लौटना और सपनों को पाने की चाह है। मेरे मायके के नजदीक सांभर झील में सर्दियों में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। फरवरी मार्च तक रुकते हैं और इसके बाद वापस चले जाते हैं। प्रवासी पक्षी हमें सिखाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए उड़ान भरना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों को याद रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। रास्ते बदलते हैं, मौसम बदलते हैं और परिस्थितियां भी, पर उम्मीद का साथ नहीं छूटना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि पिंजरे में पक्षी कमजोर हो जाता है, वही जब उसे आजाद कर दें तो वो आसमान को छू लेता है। शायद पिंजरे में बंद पक्षी हमें यही कहता है, जो भी मैं मांगू क्या मुझको दे पाओगे? कैद में पंछी पूछ रहा, क्या खुला गगन दे पाओगे? जब बेड़ियां तुम्हें पसंद नहीं, फिर मुझको क्यों पकड़ा है? अपने स्वार्थ की खातिर मुझे क्यों पिंजरे में जकड़ा है? बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी बात रखी है। बहुत सुंदर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। शंकर जयकिशन का संगीत है, शैलेंद्र के बोल, सुबीर सेन की आवाज और फिल्म का नाम है आस का पंछी। अच्छा बताइए, क्या आपने कोई पंछी पाला है? बताइएगा।

हमारी श्रोता ने लिखा है कि दिल मेरा एक आस का पंछी यानी इस फिल्म में राजेंद्र कुमार थे। वहीं एक श्रोता लिख रही हैं कि पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग का एक ऐसा सदाबहार गीत है जो आज भी श्रोताओं को ऊर्जा और खुशी से भर देता है और ये गीत आजादी उल्लास और बेफिक्री का एक खूबसूरत प्रतीक है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना है आदमी मुसाफिर है आता है जाता है जीवन जीने और रोजगार की तलाश में अपनी उड़ान भरता है और सफल होता है यही हमें पक्षियों से सीखना चाहिए। बिल्कुल। और वहीं एक श्रोता लिख रही हैं कि मेरे पतिदेव ने भी मुझे आजाद होकर उड़ने की इजाजत दी है क्योंकि मैं भी अपना बिजनेस करती हूं और वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। बहुत अच्छी बात आपने लिखी है और इसी तरह हर एक को अपने जीवन साथी को आजादी देनी चाहिए जो सही आजादी होती है उसे देना चाहिए ताकि अपनी उड़ान हर इंसान भर सके। वहीं बहुत सारे श्रोताओं ने आज के इस गीत को पसंद किया है और लिखते हैं कि बात सही है लेकिन जब सेवा में कार्यरत थे तब घर की और ऑफिस की जिम्मेदारी के कारण मस्त गगन में उड़ने का मौका कम मिला। अब जब सेवानिवृत्त होने के बाद नौकरी से आजाद हुए लेकिन उम्र बढ़ने के साथ अब शरीर साथ नहीं दे रहा। उड़ने का मन जरूर होता है लेकिन पंख सिकोड़कर बैठ जाना पड़ता है फिर भी मन को मजबूत बनाकर जरूर उड़ा जा सकता है। इस बात पर एक मुहावरा इन्होंने लिखा है मन होए तो मालवे जवाई। ये गुजराती मुहावरा है मतलब मन करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं। रूबरू न सही विविध भारती की प्रसारण तरंग रूपी पंख लगाकर बहुत सुंदर लिखा है अपनी छोटी बहन यानी मैं के संग जब सुरीली उड़ान भरेंगे तब मेरे मन का बावरा पंछी बार बार जरूर डोलने लगेगा। बिल्कुल इस वक्त आप मेरे साथ ही हैं और हम हवा में उड़ रहे हैं है ना। महसूस किया आपने? जी हाँ हम अभी हवा में उड़ ही रहे हैं। आइए सुनते हैं अगला गीत। अरे इससे पहले तो गाना आपसे सवाल पूछना था। चलिए सवाल पूछती हूँ। हाँ एक सवाल तो मैंने लगे हाथों पूछ ही लिया था यूं ही कि आपने कोई पंछी पाला है तो बताइए। हाँ जो मेरे दो सवाल हमेशा रहते हैं वो पहला सवाल ये है कि अगर आपको किसी भी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? बताइए कहाँ जाना चाहेंगे उड़कर। और अगर थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो ये भी बता दीजिएगा कि क्यों क्यों जाना चाहेंगे वहाँ। सवाल फिर से नोट कर लीजिए। अगर आपको भी किसी पंछी की तरह खुले आसमान में उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों? और हमारा दूसरा सवाल है कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं है ना, लेकिन क्या इंसान अपने मन में जो खींची हुई सीमाएं हैं उन्हें पार कर पाता है या नहीं? आपने अपने जीवन में अपने मन में जो सीमाएं पाल ली है सीमा रेखा खींच दी है उसे आप पार कर पाते हैं कभी? बताइएगा। तो सवालों के जवाब का हम इंतजार करते हैं और सुनते हैं अगला गीत। फिल्म का नाम है बाबुल, स्वर लता मंगेशकर का, गीतकार शकील बदायूनी, संगीतकार नौशाद साहब।

हमारे श्रोता ने हमारे सवाल का जवाब लिखा है। लिखते हैं कि हमें अगर उड़ने का मौका मिला तो हम यूरोप जाना चाहेंगे। अच्छा क्यों, ये तो आपने नहीं बताया, ये भी बताइए क्यों जाना चाहेंगे। और एक श्रोता लिखते हैं कि अगर हमको कभी उड़ने का मौका मिले तो मैं दूर से ये देखना चाहूंगा कि मेरी इस सफलता से कितने लोग खुश हैं और कितने दुखी। अरे आप फिर भी वो जो मानव का स्वभाव है उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, आप ये देखना पसंद करेंगे कि भाई मैं उड़ रहा हूँ तो बाकी लोग क्या कर रहे हैं, दुखी है मेरे इस उड़ान से। नहीं नहीं, आपको सिर्फ उड़ान भरनी है और निकल जाना है दूर, बहुत दूर, तभी तो मजा है उस उड़ान का, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि प्रभात में पक्षियों की मधुर कलरव की मीठी मधुर आवाज से गगन पर विहार करते सुनाई देती है तो मीठी नींद से जागाती है। मैं हाल सूरत पर हूँ, पर एक साल में 3 बार राजस्थान के हिंडौन सिटी के ग्रामीण इलाके में करीब 5 महीने रहा हूँ। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक गाँव में रहा। खेत खलिहानों में मोर मोरनिया पक्षी बहुत आते हैं। हम दाना पानी मीठी नमकीन चना बिछा कर रखते हैं तो कुछ देर बाद वो आते हैं, अपने आप मन हो तब दाना रोटी नमकीन खाते हैं और हम उन पक्षियों को खाते हुए मधुर आवाजों से करीबी से सुनते भी हैं और मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। बहुत भाग्यशाली हैं आप अगर

आप ऐसा करते हैं बहुत अच्छा समय निकालते हैं। वहीं एक श्रोता लिखती है कि बिहार में सर्दियों के दौरान साइबेरिया, यूरोप, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे दूर दराज के देशों से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं और इनके ठहरने के लिए बिहार में कई प्रमुख आर्द्रभूमि झीलें और पक्षी अभयारण्य हैं। और आपने लिखा है जमुई जिला झाझा, ये बिहार का सबसे प्रमुख और लोकप्रिय स्थल है जिसे रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है। यहाँ साइबेरिया और अन्य देशों से बड़ी संख्या में पक्षी आते हैं। उदयपुर झील जहाँ पश्चिमी चंपारण जिला है, राजगीर की पहाड़ियां, नालंदा जिला, राजगीर की पहाड़ियों और

राना सचिवालय के पास जो है जलाशय, पटना शहर के भीतर स्थित इस जलाशय में ठंड के मौसम में विदेशी और प्रवासी पक्षी मेहमान के तौर पर आते हैं। और भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर जिले में जो है, यहाँ मध्य एशिया से विभिन्न प्रकार की बतखें और सारस प्रवास के लिए आते हैं। नागी, नकटी, जमुई, भीम बांध और पटना इन प्रवासी पक्षियों को देखना बड़ा ही सुंदर और मनोरम लगता है। बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें दी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमें जब भी मौका मिलता है, जब एक साथ छुट्टियां होती हैं और एक्स्ट्रा छुट्टियां लेकर सपरिवार तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए हम जाना पसंद करते हैं। वही एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा मन ही पंछी ही तो है जो सतत आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंच जाना चाहता है। बिल्कुल। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो मन बिना टिकट बिना किसी साधन के हजारों मीलों का सफर करेंगे सुरीले सफर के साथ। बिल्कुल, आज हम टिकट लेकर नहीं उड़ रहे हैं बल्कि बिना टिकट के इस यात्रा पर निकल चुके हैं, है ना? आप भी महसूस कर रहे हैं ना इस हवाई यात्रा को?

यह आवाजें थी आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम था 9-2-11। गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार सचिन देव बर्मन थे। हमारे श्रोता अपनी टिप्पणी में बहुत सी बातें लिख रहे हैं। एक श्रोता का लिखना है कि खुले आसमान में उड़ने का मौका मिलेगा तो सबसे पहले विविध भारती का मुंबई और दिल्ली का जो विविध भारती स्टूडियो देखने की उड़ान वो भरेंगे। क्या बात है। वहीं एक श्रोता ने अपनी बात रखी है लेकिन कुछ स्पष्ट नजर नहीं आ रहा। आप लिखते हैं कि थाईलैंड राष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान में पंछियों के साथ 2 घंटे, बस इतना ही आपने लिखा है। शायद आप ये कहना चाहते हैं वहां पर आपने 2 घंटे बिताए, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि 1968 में 6th class में पढ़ते हुए जंगल से तोते का बच्चा लेकर आए। अभी उसके पंख भी नहीं आए थे, रुई के फाये से दूध पानी चोंच में डालकर उसको बड़ा किया और एक मराठी भाषी मित्र को दिया। उसने उसे मराठी सिखा दी। इकड़े आला कोठे जला, अच्छी मराठी बोलता था तोता। मैं बाहर चला गया, उनका भी तबादला हो गया और बाद में पता नहीं कि किसको दिया तोता। 20 साल बाद एक गली में उसकी आवाज पहचान दी और मराठी में बात की तो उसने भी जवाब देकर पहचान पूरी कर ली। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। सच बताऊं मैंने भी ऐसे

पशुओं के कई बार लेकर एक उड़ गई और फिर एक मर भी गई, फिर बहुत दुख हुआ इसलिए अब हम नहीं लाने देती हूँ। अच्छा, आपने थोड़ा साफ नहीं लिखा है, इसलिए अब मैं होना चाहिए ना, नहीं लाने देती हूँ। पंछी आसमान में उड़ते हुए अच्छे दिखते हैं, न कि पिंजरे में। बहुत सुंदर, बिल्कुल सही कहा। जब कोई पंछी हम पालते हैं या अपने आसपास देखते हैं और वो उसकी मृत्यु हो जाए तो वो दृश्य बहुत बहुत बहुत खतरनाक होता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ऐसी कल्पना करके भी, और आज हमारी कल्पना बहुत सुखद है। ये विषय बड़ा अजीब है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में मेरे घर में एक तोता था, नानी ने पाला था। ससुराल में तो पूरा कबूतरों का झुंडी पाला हुआ था। अच्छा, पर पंछियों को पालना नहीं चाहिए। अभी मेरे फ्लैट के ऊपर एक परिवार तोता रखे हुए था। सुबह सुबह जब अपनी मधुर मीठी आवाज़ में मम्मी मम्मी बोलता है तो ऐसा लगता है कोई छोटा बच्चा बुला रहा है और मन खुश हो जाता है। कभी कभी वो धीरे से डांटती है तो चुप हो जाता है, पूछता है क्या बात है तो इस बात को रिपीट भी करता रहता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि पंछी हमारा मन बहलाते हैं, लेकिन शायद जब वो कैद में होते हैं तो उनका ही मन जानता है कि वो क्या चाहते हैं, है ना। आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं। फिल्म का नाम हरे कांच की चूड़ियां। शब्दकार हैं शैलेंद्र और धुन बनाई है शंकर जयकिशन ने। बहुत ही खूबसूरत गीत।

आपने अभी तक इस बात का जवाब नहीं दिया कि क्या आपने अपनी जो सीमा रेखाएं बना रखी हैं मन में, उन सीमाओं को कभी आपने तोड़ा है?

तो हम हमारे दो सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमारा पहला सवाल था कि अगर आपको भी किसी पंछी की तरह उड़ने का मौका मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों। हमारे कुछ श्रोताओं ने जवाब दिया है, लेकिन बहुत ज्यादा जवाब नहीं मिले हैं। और हमारा दूसरा सवाल था कि पंछी तो आसमान की सीमाएं पार कर जाते हैं, लेकिन क्या इंसान अपने मन में खींची हुई सीमाओं को कभी पार कर पाता है। सोचिए, एक गंभीर सवाल है और इसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, ज्यादा नहीं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस पर आपकी हर तरह से मुकम्मल परिपूर्ण इबारत पढ़कर मन उड़ान भरने की चाहत रखेगा, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि चंचल मन भी पंछी की तरह होता है, अभी अभी धरती पर होता है और देखते ही देखते आसमान में उड़ जाता है। मन जब उड़ान भरता है तब जमीन की बंदिशों को पीछे छोड़कर कल्पना आजादी और नए क्षितिज की तलाश में खो जाता है। अंबर को छूने, बीता कल भुलाने और बादलों के संग आंख मिचोली खेलने की चाहत में मन पूरी तरह बेफिक्र और आनंदित होता है। यही आनंद आज आपकी बातें और गीतों से मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी इबारत लिखी है आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि पारिवारिक परिपोषण, वंश संरक्षण, उत्तरदायित्व निर्वहन, प्राकृतिक सामंजस्य संग समुचित संतुलन ही प्रवास परिभ्रमण को प्रेरित करता है। चाहे प्राणी जगत हो या पशु पंछी जगत हो, अपनी नस्ल पहचान वंश को बचाए रखना ही प्राणी जगत का मूल उद्देश्य है। उन्हीं की उत्तरदायित्व में स्थानांतर होता है। इस प्रक्रिया में भी अपनी मूल कला, स्थान और परिवेश को दिल में जीवंत जागृत रखता है और कालांतर में उन्हें पुनः गृह वापसी को प्रेरित करता है। नई ऊर्जा उत्सर्जित करती विषय पर कार्यक्रम ही महोदया की पहचान है। अरे वाह, इस सफर का साक्षी बन हम सफर बन गर्वित होंगे। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी शुद्ध हिंदी में बात कही है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर है आज की इबारत और मन तो बहुत ऊंची उड़ान भरने वाला है, हजारों मील लंबे रास्ते तुझको बुलाते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सुंदर है, इसका जो सार मैंने निकाला कि वो ये, सपने देखो और उन्मुक्त आकाश में उड़ान भरते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचो, लेकिन अपनी जमीन, उसकी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि जिंदगी में उड़ान सिर्फ कामयाबी पाने का नाम नहीं, श्रोता लिखते हैं, बल्कि अपने टूटे हुए हौसलों को समेट कर दोबारा मुस्कुराने का नाम है। जब रास्ते अकेले हों, आंखें आंसुओं से भरी हों और दिल थक चुका हो, तब भी एक गहरी सांस लेकर खुद पर भरोसा करना ही सच्ची उड़ान है। बशीर बद्र का एक शेर है, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।

यह आवाज थी लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम था सेहरा, शब्दकार हसरत जयपुरी थे और तर्ज राम लाल की थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि पिछली सर्दियों में अपनी छत पर कई वर्षों से दाना पानी बारहमास रखता हूँ। पिछली सर्दियों में एक फाख्ता के जोड़े ने अंडे दिए, पर उनका बनाया हुआ घोंसला बराबर स्थान नहीं बना था, जिससे उनके घोंसले के तिनके गिर जाया करते थे। फिर मैंने वो स्थान बराबर किया और उनका घोंसला ठीक किया, उस पर एक गर्म कपड़ा बिछाया और उस पर अंडे रख दिए। तब से अभी तक फाख्ते वहीं पर अंडे देते हैं और अभी भी दो अंडे रखे हुए हैं। वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर काम किया, बहुत बड़ा काम किया आपने। आपने उनके को बनाया जो बार बार टूट जाता था, बहुत बड़ा काम है ये। और अब हमारी उड़ान कार्यक्रम के आखिरी सोपान तक पहुंच चुकी है, जहां हम चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में राजेंद्र कृष्ण के बोल सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म भाभी का ये गीत।

तो दोस्तों, आज इस उड़ान में आप हमारे साथ थे, बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बस ये ध्यान रखिएगा कि प्रवासी पंछियों की जो लंबी यात्रा है उनका संरक्षण

और उनकी जो प्राकृतिक आवास हैं उन्हें बचाने का प्रयास करना और दुनिया भर में जागरूकता फैलाना ये हम सभी का कर्तव्य है। और हाँ, अपने मन की रक्षा भी हमें करनी है, यानी मन की उड़ान को कभी कम नहीं होने देना है, इस उम्मीद के साथ कि हम इस उड़ान को जारी रखेंगे। अब इस कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज की त्रिवेणी डाक दिवस पर आधारित है। 9 अक्टूबर 1874 को यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के गठन हेतु बर्न स्विट्जरलैंड में 22 देशों ने एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसी कारण विश्व डाक दिवस मनाने की शुरुआत हुई। 1 जुलाई सन 1876 को भारत यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। पहली बार जब वर्ष 1766 में भारत में डाक व्यवस्था शुरू की गई, आज ये विभाग गांव शहरों में बड़ी संख्या में सेवाएं दे रहा है। भारत में एक विभाग के रूप में इसकी स्थापना 1 अक्टूबर सन 1854 को हुई। भारतीय डाक विभाग 9 से 14 अक्टूबर के बीच डाक सप्ताह मनाता है। भारत में सन 1852 में प्रथम बार चिट्ठी पर डाक टिकट लगाने की शुरुआत हुई और 1 अक्टूबर 1854 में महारानी विक्टोरिया के चित्र वाला डाक टिकट जारी किया गया। भारत में पहला ऑफिस कोलकाता में सन 1774 में खोला गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है, इसमें जुड़े कर्मचारियों की सेवाओं को मान सम्मान मिले एवं लोगों और व्यवसायों के रोजमर्रा के जीवन में पोस्ट की भूमिका के साथ साथ वैश्विक सामाजिक और आर्थिक विकास में योगदान के लिए जागरूकता लाना है।

लाया। चिट्ठी, खत और पत्र केवल कागज पर लिखे कुछ शब्द नहीं होते, वे दो दिलों के बीच बने उस पुल की तरह होते हैं जिसे दूरी भी तोड़ नहीं पाती। वे अपने साथ किसी अपने की आवाज, उसकी याद और उसके मन की धड़कन लेकर आती। चिट्ठी लिखना और पत्र पाना, एक इंतजार के बीच कितनी व्याकुलता होती थी। डाकिया के आने की राह देखना, अपने नाम की चिट्ठी देखकर मुस्कुराना, सब में एक मीठी सी खुशी छुपी होती थी। कितनी चिट्ठियों को संभाल कर रखा जाता था। आज जिनके पास ये चिट्ठियां हैं, वे उनमें माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, भाई बहन, अन्य रिश्तेदारों का प्यार, चिंता, प्रतीक्षा, प्रेम की भावनाओं से आज भी जुड़ जाते होंगे। सब कुछ उन कागजों में सांस लेने लग जाता है। वो दौर आंखों के आगे तैर जाता है।

आज तकनीकी आधुनिकता के दौर में सब चिट्ठियां इंटरनेट और मोबाइल्स में आ गया है, लेकिन पत्रों को लिखने, भेजने और जवाब पाने का इंतजार भी दिल में खुशी ले आता है। ये माना कि मोबाइल में फटाफट लिखा और एक क्लिक पर सामने वाले के पास पहुंच गया, लेकिन वो चिट्ठी पत्रों की जगह तो नहीं ले सकता। आज डिजिटल दुनिया ने हमें एक दूसरे के बहुत करीब ला दिया है, लेकिन कभी कभी लगता है हमें फिर से उस चिट्ठी वाले समय की जरूरत है, जहां किसी के दो शब्द पाने के लिए दिल घंटों नहीं दिनों तक इंतजार करता था। चिट्ठियां चली गईं, डाकिया चले गए, पर किसी अपने के संदेश का इंतजार आज भी वही है, क्योंकि माध्यम बदले हैं, भावनाएं नहीं।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने दोहराया कि आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अंतर्गत सशस्त्र बलों में बड़े बदलाव हो रहे हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली जिले में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जांच की जा रही है।
1: नई दिल्ली में आज जो प्रोटेस्ट डिक्लेयर किया गया है उसके मद्देनजर यहाँ पे प्रिवेंटिव चेकिंग लगाई गई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फीमेल स्टाफ भी है और हम लोग तमाम गाड़ियों को चेक कर रहे हैं। किसी भी तरह की शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और यहाँ से अभी कुछ देर पहले कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है जो कि आज के प्रदर्शन में शामिल होने वाले थे।
0: इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है।
2: हमने कल शाम को एक ट्रैफिक एडवाइजरी इशू की थी और उसमें हमने बता दिया था कि कुछ रास्ते हैं जिन पर ट्रैफिक रेस्ट्रिक्टेड रहेगा और जो बाकी रास्ते हैं जैसे नई दिल्ली अगर कनेक्ट कर रहा है दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स को तो वहां पे हम ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं और हम पब्लिक को फैसिलिटेट कर रहे हैं ताकि जो आम नागरिक है उसको ट्रैफिक मूवमेंट में कोई बाधा ना आए।
0: राजधानी में सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास द्वार बंद रहेंगे। एक रिपोर्ट।
3: जंतर मंतर पर आज प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। रेलवे के पुलिस उपायुक्त बी भरत रेड्डी ने बताया कि दिल्ली के 7 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर रेलवे पुलिस के 334 कर्मियों को तैनात किया गया है जिनमें लगभग 120 महिला कर्मी शामिल है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती का अनुरोध भी किया गया है। वहीं सुरक्षा कारणों से आज शाम 6 बजे तक 45 मेट्रो स्टेशनों पर प्रवेश और निकास बंद रहेगा। दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियां स्थिति की समीक्षा करेंगी और आवश्यक जानकारी साझा की जाएगी। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन सेवाएं निर्धारित समय के अनुसार जारी रहेंगी। इसके अलावा कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में यातायात मार्गों में बदलाव को लेकर परामर्श जारी किया है। पुलिस ने यात्रियों को

0: यात्रा की योजना पहले से बनाने और गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रेलवे ने आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली, तिलक ब्रिज और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कई रेलगाड़ियां भी रद्द कर दी हैं। रेलवे के अनुसार कल दोपहर 2 बजे से के बाद अपने प्रारंभिक स्टेशनों से रवाना हुई और आज सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच नई दिल्ली तथा हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पहुंचने वाली सभी मेल और एक्सप्रेस रेलगाड़ी प्रारंभिक स्टेशन से ही रद्द कर दी गई हैं। रेलवे ने बताया कि इन स्टेशनों के आसपास सड़कों पर यातायात की समस्या की आशंका को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने भी आज यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया है। इसमें यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया गया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे CJP समर्थकों को रोकने के एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने CJP की प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्रवाई को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया। गृह सचिव ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2018 के आदेश का भी उल्लेख किया और निर्धारित क्षेत्रों में सभाएं करने से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने पर जोर दिया। मंत्रालय ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना और कानून का पालन सुनिश्चित करना अधिकारियों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी CJP नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि देश पूरी तरह से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और लगातार वैश्विक संकटों के बावजूद आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश के भोपाल में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष जनता का भरोसा नहीं जीत पा रहा है, इसीलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है।
3: एक तरफ जनता विकसित भारत के निर्माण के लिए मोदी जी के साथ खड़ी है और दूसरी तरफ विपक्ष निराश, मैदान में जीत नहीं सकता, जनता का विश्वास प्राप्त कर नहीं सकता, इसलिए सड़कों पर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है, संवैधानिक संस्थाओं को ध्वस्त कर रहा है, लोकतंत्र में विश्वास को तोड़ने की साजिश रच रहा है, संविधान को तार तार कर रहा है। और ये विपक्ष केवल यही नहीं कर रहा, विदेशी ताकतों के समर्थन से ये कर रहा है।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे, X@AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के देशों के घटनाक्रमों और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तरंग शक्ति 2026 अभ्यास को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है।
5: टेक्नोलॉजी एंड म्यूचुअल कॉन्फिडेंस कम टुगेदर।
6: जब तकनीक और आपसी विश्वास एक साथ आते हैं तो यही हमारी साझेदारी की असली ताकत बनती है। आइए इस भावना को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें, नए प्रयोग करें और अपनी क्षमताओं को मजबूत करते हुए एयरोस्पेस तथा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशें। साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हमारी ताकत का इस्तेमाल शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए हो।
5: पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी।
1: वायुसेना स्टेशन पर हवाई प्रदर्शन देखने के बाद रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बल अपनी संरचना, क्षमताओं और रणनीतिक दृष्टिकोण में मौलिक परिवर्तन से गुजर रहे हैं। अधिक ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
7: युद्धाभ्यास में भारतीय वायुसेना के अलावा 7 देशों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और बांग्लादेश की

0: 2026 में संयुक्त रूप से रोबोटिक्स फॉर गुड यूथ चैलेंज इंडिया 2026-27 का आयोजन किया। 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 300 विद्यार्थियों ने रोबोटिक्स के माध्यम से अपनी रचनात्मकता, नवाचार और समस्या समाधान कौशल का प्रदर्शन किया, जिससे प्रौद्योगिकी सहयोग और नवाचार की भावना को प्रमुखता मिली। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देवघर का एम्स संतुलित और समावेशी विकास का एक उत्कृष्ट प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने एम्स के दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के हर हिस्से में उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में पूनमल्ली और वडापलानी के बीच 14 किलोमीटर से अधिक की मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 5 अमृत भारत स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आईआईटी मद्रास स्थित ब्रेन सेंटर का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के अटूट संकल्प के साथ जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में बदलाव ला रहा है। आज इस विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया जैसी पहलों से इस दृष्टिकोण को वास्तव में कैसे बदला जा रहा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के खेल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इसका सीधा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों के पदक प्रदर्शन में भी दिखाई दिया है। 2010 में खेल महाकुंभ से लेकर खेलो इंडिया तक सरकार ने जमीनी स्तर से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए तैयार करने की दिशा में कई पहल शुरू की है। प्रधानमंत्री ने लाल किले से अपने संबोधन में भी खेल व्यवस्था को मजबूत करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई थी।
2: भारत खेल की दुनिया में अपनी जगह बना रहा है। स्पोर्ट की दुनिया में भारत का प्रदर्शन बेहतर होता रहा है और हम 2036 में ओलंपिक के मजबूत दावेदार बनकर के आगे बढ़ रहे हैं।
1: हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों में भारत ने 85 पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया और चौथा स्थान हासिल किया। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी TOPS, राष्ट्रीय खेल नीति और फिट इंडिया अभियान जैसी पहले भी इसी दिशा में किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। राष्ट्रीय खेल नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप बनाने पर भी जोर दिया गया है। इस दिशा में राज्य सरकारें भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। भारत ने आज न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की चौथी समिति में वी उपनिवेशीकरण पर चर्चा के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये बात कही। भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे और पत्र सूचना कार्यालय में उनकी पहली नियुक्ति हुई थी। मौसम विभाग ने आज बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन में पूर्वी भारत के कुछ और हिस्सों, प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग और पूर्वोत्तर भारत के कई क्षेत्रों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हो रही है। आज महालया पर्व है। विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला यह त्यौहार माँ दुर्गा के आह्वान का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने महालया के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर सुलभ, किफायती और जन केंद्रित मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित 53 टेली मानस सेल और 48 लाख से अधिक कॉल प्राप्त होने के साथ मानसिक स्वास्थ्य सहायता अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन के बीच सुरक्षा के

0: कड़े इंतजाम किए। प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। राष्ट्रीय राजधानी में रेल और मेट्रो सेवाएं आंशिक रूप से प्रभावित। भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष पर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने और लोकतंत्र में जनता का विश्वास तोड़ने का आरोप लगाया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, भारत पड़ोसी देशों और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ और भ्रामक जानकारी फैलाने के लिए पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की और बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर में आज मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। फिल्म पाकीज़ा, शुरुआत कर रहे हैं इसी गाने से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें।

0: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे आखिरी दांव फिल्म का ये गाना। लिखा था इसे मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या हुआ।
1: आनंद बख्शी का लिखा गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, संगीतकार राहुल देव बर्मन और फिल्म थी अमर प्रेम। संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।

0: कोहरा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे हेमंत कुमार की आवाज में। कैफी आजमी के बोल थे, हेमंत कुमार का संगीत था। वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

दिल दिया दर्द लिया इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी के स्वर में। शब्दकार थे शकील बदायूनी और संगीतकार नौशाद। अनुराधा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र के बोल रविशंकर का संगीत है।

0: संगीतकार उत्तम सिंह, एक उत्तम जीवन
1: मैं निकला ओ गडले,
0: जो संगीत की साधना में बीता, एक विराट जीवन की कहानी।
2: दिल तो पागल है, दिल दीवाना है।
3: जब इसका म्यूजिक रिलीज हो रहा था तो रिदम हाउस में लाइन लगी होती थी।
0: उजाले उनकी यादों के एक सर्वोत्तम श्रृंखला उत्तम सिंह के साथ।
4: चिट्ठी ना कोई संदेह।
0: 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ

बम्बई का बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज़ में। बजरू सुल्तानपुरी के बोल थे सचिन देवबर्मन का संगीत था। इसी के साथ आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है।

याराना फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल थे, राजेश रोशन का संगीत था। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता खुर्सीपार भिलाई छत्तीसगढ़ से सतीश चौहान, शिवम और निर्मला चौहान, और पप्पू राजा खुशदिल, संगीता जिंदल, हंसमुख जिंदल, इन्होंने फरमाइश भेजी है चकला बाजार सामना से। और ये फरमाइश आई है हिंगोली महाराष्ट्र से, शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान उत्तम और इनके परिवार के अन्य लोग, जाखूद राजस्थान से पूजा खटक, निर्मला देवी, शंभू दयाल खटक और इनके मित्रगण, बीर शहर से रणजीत कुमार नामदेव, शोरात रितेश, आकाश रश्मि रंजना और गबरू। और फरमाइश आई है, इन्होंने नाम भेजे हैं जयराम पाटिल, मंजू, बालीराम पाटिल, शरीफा, नेहा, संध्या, गोलू, तनिष्का, रावी, देवांश और इनके पूरे परिवार की ओर से फरमाइश आई है इंदौर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत। ये

लता मंगेशकर की आवाज में ये था आंखें फिल्म का गाना। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रवि। और पसंद करने वाले हमारे श्रोता कापसी रोड अकोला से संतोष राव बाकड़े, ज्योति ताई, पवन कुमार और इनका पूरा परिवार, बिलासपुर से बागमारे परिवार, और फरमाइश आई थी गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, रविन्द्र रौनक सेन की ओर से, हिवरखेड़ से वासुदेव वाघ, लक्ष्मीबाई वाघ, संजय, ज्योति, आनंदी और इनके परिजन, बेरडी से हुकुम करमकर, सुनीता करमकर, हार्दिक, प्राची और तनु।

किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गाना, संगीत राहुल देव बर्मन का और फिल्म थी अनामिका। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गांव उगाला जिला अंबाला हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव और इनका पूरा परिवार, और कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बरता, नीलम बरता, नीतन, नितिन, पलक, कर्ण, गीतू, निहारिका और हार्दिक। और फरमाइश आई थी हमारे इन श्रोताओं की ओर से शैलेंद्र पाटिल, शांताबाई पाटिल, सिद्धि, सृष्टि और इनका पूरा परिवार, शिंदे चौक सोलापुर महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ देवरी भाटापारा से फरमाइश आई गन्नूलाल रजक, KRS, अश्विनी कुमार और गणेश राव की ओर से। औरंगाबाद से राजेश साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश, राशि राजेश।

सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यशोदास की आवाज़ में, संगीतकार राजकमल थे और फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता गुरुमीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और इनका पूरा परिवार ग्राम तंगौरी से फरमाइश आई थी। नारायण प्रसाद वर्मा, मयंक जीत वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, पुष्पांजलि वर्मा की ओर से फरमाइश आई थी नवगढ़ कटई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से। रविन्द्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर गद्रे, राजेश गद्रे और सृष्टि की ओर से फरमाइश आई बरगी नगर जबलपुर से। और इसी गाने के लिए फरमाइश आई थी अहिल्या नगर से के जैन और रंजीता की ओर से। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये प्रोग्राम का आखिरी गाना।

बेमिसाल फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन की तर्ज। फरमाइश करने वाले हमारे श्रोता बहरामपुर खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, अमित वर्मा और इनका पूरा परिवार, और साथ में ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा का भी नाम है। गोवर्धन जिला वाशिम से रविन्द्र पवार, मीना पवार, श्रीकांत और इनके अन्य साथी। शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन रानी और इनके परिजन। और जिला नांदेड़ हिम्मत नगर से ये फरमाइश आई है वाशीनाथ ये उलकर, बबीता, अनिष्का, तन्मय और इनके अन्य साथियों की ओर से फरमाइश आई है। और

0: गुलबदन, गुरुदर्शन, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहद और इनके साथियों की ओर से फरमाइश आई है जिला तरन तारण पंजाब से। इसी के साथ आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। चलने से पहले आपको बताते हैं इस कार्यक्रम की प्रोड्यूसर तेजश्री कामले। अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आज आपको सुनवाते हैं सुरेंद्र गुलाटी का लिखा नाटक प्लास्टिक की घास। आज आप सुनेंगे इस नाटक का पहला भाग। निर्देशक हैं दीनानाथ।

0: नई दिल्ली 17 जून। मौसम बिल्कुल नॉर्मल यानी बेहद गर्म और खुश्क। सूरज अपने सही वक्त पर यानी 5:23 पर तुलू हुआ और इस वक्त यानी सुबह के 8:59 पर पूरे आबोताब से रोशन है। लोधी रोड के सरकारी क्वार्टर F2 15/614 के बाहर श्री एच पी शर्मा के नाम की छोटी सी नेम प्लेट को मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा साफ कर रही हैं। बाहर कमरे में 1930 के मॉडल का क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक टिक टिक टिक टिक चल रहा है और जैसे ही क्लॉक की बड़ी सुई 12 के डिजिट तक पहुंचती है क्लॉक अपने मामूल के मुताबिक 9 बजने का ऐलान करता है और इसके साथ ही शर्मा जी अंगड़ाई लेकर उठ खड़े होते हैं। ना, शर्मा जी उन लोगों में से नहीं जो 9 बजे तक पड़े पड़े सोते रहते हैं और अपनी जिंदगी का कीमती वक्त जाया करते हैं। शर्मा जी तमाम जिंदगी बाकायदा सुबह 5:30 उठते रहे। स्नान आदि से फारिग होकर बाकायदा सुबह की सैर के लिए निकलते हैं। पूजा पाठ करने के बाद नाश्ता करते हैं और फिर ठीक 8 बजे सिर्फ घंटा भर के लिए छोटी सी झपकी लेते हैं ताकि ताजा दम होकर दफ्तर पहुंचे। उनका कहना है,
1: दफ्तर में ओंघने वाले लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
0: अंगड़ाई लेकर उठ चुकने के बाद रोजाना के मामूल के मुताबिक तौलिया लेकर शर्मा जी बाथरूम में घुसते हैं और मिसेस शर्मा रसोई में। शर्मा जी बाथरूम से बाहर निकलकर साथ वाले बेडरूम में झांकते हैं। बड़ा लड़का किशन या कृष्ण कुमार बुशर्ट और खाकी पैंट पहने अखबार पढ़ रहा है। उनकी लड़की उषा शर्मा मामूली सी सूती साड़ी पहने किसी गाइड में से कॉपी पर नोट्स लिख रही है। उससे छोटा बेटा विनय कॉलेज जाने के लिए अपनी किताबें इकट्ठी कर रहा है। यानी शर्मा जी को शिकायत का कोई मौका नहीं, सब कुछ ठीक है। वो बाहर के कमरे की तरफ पढ़ते हैं। एन उसी वक्त मिसेस शर्मा खाने का डिब्बा शर्मा जी को थमा देती हैं, जिसे शर्मा जी अपने थैले में डाल थैला साइकिल के हैंडल पर टांग देते हैं। साइकिल की गद्दी के नीचे से छोटा सा कपड़ा निकालकर गद्दी और हैंडल साफ करते हैं। पहियों की हवा और ब्रेक चेक करने के बाद जैसे ही साइकिल की घंटी पर उनका हाथ पहुंचता है क्लॉक 9:15 का ऐलान करता है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। पिछले 25 वर्षों से वो सदा ऐसा ही करते आ रहे हैं। उनका कहना है,
1: चलने से पहले साइकिल के ब्रेक्स और घंटी जरूर चेक कर लेनी चाहिए। सेफ्टी सेज।
0: घर से दफ्तर का रास्ता सिर्फ 20 मिनट का है, इसलिए वो दफ्तर हमेशा 9:35 पर पहुंचते हैं, यानी दफ्तर शुरू होने के 5 मिनट बाद। वक्त से पहले या एन वक्त पर दफ्तर पहुंचने वालों के बारे में शर्मा जी का कहना है,
1: सिर्फ 3 किस्म के लोग दफ्तर में वक्त से पहले पहुंचते हैं। एक वो जो अपने अफसरों की खुशामदी है, ताकि अफसरों के आने पर उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग सर कह सके। दूसरे वो जिनकी घरेलू जिंदगी इतनी नाखुशगवार है कि नाश्ता दफ्तर में आकर करते हैं। तीसरे वो जो दूसरों की मेजों से स्टेशनरी चुराते हैं और दूसरी हेरा फेरियां करते हैं।
0: चुनाचे आज भी अपने उसूल और मामूल के मुताबिक श्री एच पी शर्मा दफ्तर के लिए रवाना हुए। उनके रवाना होते ही रोजाना के मामूल के मुताबिक मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में आकर लेट गई। मिस उषा शर्मा ने झटपट साड़ी उतारी और लो कट स्लीव लेस फड़कदार कुर्ता पजामा पहना। कृष्ण कुमार ने अखबार फेंका, जेब में सिगरेट माचिस डाली और घर के बाहर। विनय ने अलमारी से नीली जीन्स और आई लव यू वाली टॉप निकाल सीटी बजाते हुए बाल संवारने शुरू कर दिए। 17 जून का दिन सब के लिए बिल्कुल नॉर्मल था। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा था जैसा कि सदा से होता चला आया है। इंसान गुजरते वक्त के तजुर्बों, अपनी उमंगों और अपनी ख्वाहिशों की बुनियाद पर आने वाले कल के रंगीन ख्वाब बुनता है। लेकिन होनी एक अजीब ही चीज है। होनी आने वाले अगले पल की जरा भी आहट नहीं देती, और जब कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो कहते हैं होनी अटल है। कौन जानता था कि 17 जून को होनी क्या रंग दिखाने वाली है। मिसेस शर्मा बाहरी कमरे में पूरी रफ्तार से चल रहे पंखे के नीचे आराम कर रही थीं कि अचानक उन्हें बाहर से साइकिल की घंटी की आवाज सुनाई दी।
2: अरे उषा, विनय, अरे किशन, अरे देखो ना बाहर कौन है। अरे देखो ना बाहर जाके कि कौन है। तरकारी भाजी वाला हो तो कह देना कि नहीं चाहिए। अरे हाय, लगता है चले। अरे रुक भाई, यार, रुक मैं अभी आती हूँ, ऐसी भी क्या उतारी। आप कैसे घर चले आए इस वक्त? तब तो ठीक है ना आप? अरे आप ठीक ठाक है ना? क्या हो गया, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, आप बिल्कुल, क्या कुछ हुआ है? बैठे बैठे मैं पानी लाती हूँ।
1: नहीं।
2: अरे नहीं, इतनी गर्मी है, प्यास लगी होगी, जरूर आपकी तबीयत खराब है। पता ही है ना, क्या बुखार है, कहीं लू तो नहीं लग गई?
1: नहीं नहीं।
2: तो फिर क्या हुआ है बताइए ना, बताते क्यों नहीं? आपको मेरे सिर की कसम, मेरा तो दिल थक थक कर रहा है। ओ, आज सुबह सुबह मेरी आंख भी फड़क रही थी, बताइए ना क्या हुआ है?
1: क्या बताऊं?
2: अच्छा अच्छा, ये तो बता दीजिए कि तबीयत तो खराब नहीं है ना?
1: नहीं।
2: तो फिर और क्या बात है, नौकरी तो आपकी पक्की है, उसका तो कोई भय नहीं, फिर क्या हुआ है?
1: बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय, महान अनर्थ।
2: क्या?
1: ट्रांसफर।
2: ट्रांसफर आपकी?
1: हाँ, आज सुबह ही 10:29 पर यह मनहूस खबर मुझे मिली।
2: भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया,
1: क्या बताऊं लाजवंती। खबर मिलते ही मेरे पांव तले से वो जमीन खिसक गई जहाँ पिछले 25 वर्षों से अपने जूते घिस रहा हूँ। अब क्या होगा लाजवंती?
2: किस्मत फूट गई हमारी, किस्मत फूट गई। हाय हाय, कैसा दुर्भाग्य है हमारा। हाय हाय राम, हाय, अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ?
1: आगरा।
3: हाय, क्या हो गया लाजवंती बहन?
4: पहले मैंने भाई साहब को घर लौटते देखा, फिर तुम्हारे रोने की आवाज आई, तो मैंने सुशीला बहन को भी बुला लिया।
3: हाय, कौन था बहन?
4: कोई आपका सगा था या भाई साहब का?
3: दिल्ली में था कि बाहर?
2: नहीं बहन, ये बात नहीं, जीना मरना तो भगवान के हाथ है। आए, हमारे साथ पूरी अनर्थ हो गया।
3: हौसला रखो बहन, हौसला रखो।
4: अरे बच्चे तो ठीक ठाक हैं।
2: आए भगवान उन्हें लंबी आयु दे, सब ठीक है।
3: बहन, फिर हुआ क्या?
2: अरे किस्मत फूट गई हमारी, तो किस्मत।
4: भाई साहब की नौकरी?
2: अरे पक्की नौकरी है उनकी, सरकारी पक्की नौकरी। पर क्या बताऊं, आए क्या बताऊं, भगवान ने कैसा अनर्थ कर दिया।
4: अनर्थ?
2: अनर्थ, आए इनकी ट्रांसफर हो गई।
3: हाय राम,
4: सबर करो बहन, धीरज रखो।
1: लाजवंती, हौसला रखो।
2: तुम्हें मालूम था कि एक दिन ये आस पड़ोस ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा।
3: बस धीरज रखो बहन, कोई ना कोई उपाय अवश्य निकलेगा।
2: उपाय निकलेगा, अरे क्या उपाय निकलेगा।

0: जड़ गया।
1: बस बस बैग उठो, देखो पानी वानी पियो। भाई साहब कितनी गर्मी में बाहर से आए हैं, मुंह हाथ धो और इन्हें जलपान कराओ। मन को शांत रखो बहन, और इसका कोई उपाय सोचो।
0: ठीक तो कहती हो बहन।
2: तुम कोई फिक्र न करो मिसेस शर्मा, थोड़ी देर आराम कर लो, वो जलपान मैं भिजवाई देती
0: हूँ। नहीं बहन, नहीं नहीं, आप क्यों कष्ट करो।
2: आए कष्ट कैसा, दुख सुख में पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। आओ सुशीला बहन।
3: हौसला रखो बहन, भगवान सब ठीक करेगा।
2: अभी मुन्नी के हाथ पानी वानी भिजवाती हूँ।
4: लाजवंती, क्या सोच रही हो लाजवंती?
5: आपने उसका क्या बिगाड़ा था जिसने आपको यूं उजाड़ा है? कौन है वो, जरा जरा उनसे पूछे तो।
4: ना जाने कौन है।
5: किस कमबख्त ने दिया है ये ऑर्डर?
4: अरे ये ऑर्डर तो ऊपर से आते हैं, न मालूम किस अफसर के दस्तखत हैं। फिर जिसके दस्तखत होते हैं उसको भी ऑर्डर ऊपर से आते हैं। दरअसल ऑर्डर करने वाला कौन है क्या मालूम।
5: जब आप उसे नहीं जानते, वो आपको नहीं जानता, तो उस अनजाने कलमुहे ने किस चरम का बैर निकाला है हमारे साथ?
4: किसने क्या बैर निकाला है लाजवंती, ये तो अपने ही पिछले कर्मों का फल है।
6: अम्मा खाना लगा दो तो जरा जल्दी से, मुझे फौरन वापस जाना है।
7: पिताजी आप?
4: कृष्ण तुम
7: इस वक्त यहाँ?
4: इस वक्त यहाँ?
7: आपकी तबीयत तो ठीक है ना पिताजी? अम्मा आपकी आंखें क्यों सुर्ख हो रही हैं? बात क्या है?
5: क्या बताऊं बेटे,
7: हुआ क्या है, कुछ बताइए तो।
4: आज सुबह 10:29 पर मुझे ये मनहूस खबर मिली है कि मेरा ट्रांसफर हो गया है।
7: ओ, तो उन्होंने वार कर ही डाला।
4: किसने, किस पर?
7: जालिम हुक्मरानों ने, अपने गुलामों पर।
4: क्या बक रहे हो तुम, कैसे जालिम हुक्मरान, कहां के गुलाम? अरे हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं।
7: ये सब धोखा है, आप अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक समझते हैं?
4: बेशक।
7: तो फिर आपका ट्रांसफर करने से पहले आपसे पूछा क्यों नहीं गया? इकबाल ने तो अपने शेर में भी कहा है कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी मर्जी क्या है।
4: रजा, रजा।
7: अब हाँ हाँ, वही वही मतलब है, जब खुदा को भी बंदे की मर्जी जाने बिना ट्रांसफर करने का हक नहीं है, तो फिर उन्होंने आपकी ट्रांसफर कैसे कर दी, क्यों कर दी? क्या इसलिए कि आप कमजोर हैं, हालात के गुलाम हैं? आपने अपनी जिंदगी के बेहतरीन 25 उनकी खदमत गुजारी में कुर्बान कर डाले, और बदले में मौका मिलते ही उन्होंने आपको दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर डाला। क्या आप अब भी इनकलाब का नारा नहीं लगाएंगे, इस जबरदस्त नाइंसाफी के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे? मेरे साथ मिलकर बोलिए, इनकलाब, इनकलाब।
4: जरा बदतमीज, तुम नहीं जानते मैं एक गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स हैं, इस किस्म के नारे लगाना सर्विस कंडक्ट रूल्स के खिलाफ। जरा सोचो ये क्या बक रहे हो तुम, जरा सोचो।
7: आप नहीं समझेंगे पिताजी, आप मुझे सोचने के लिए कह रहे हैं जबकि सोचने की जरूरत आपको है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने तमाम जिंदगी काम किया है, कभी सोचा नहीं। और मैंने कभी काम को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ सोचा है।
4: दो वक्त का खाना तुम्हारा बाप जो जुटा रहा है,
7: वो खाना जो 25 साल तक एक बहुत बड़ी मशीन के एक मामूली पुर्जे की तरह काम करने के बदले मालिक आपको देते आ रहे हैं।
4: अरे कौन से मालिक, किसके मालिक, दिमाग चल गया तुम्हारा?
7: चल रहा है दिमाग उन साम्राज्य ताकतों का जिनके हाथ बहुत लंबे हैं, बहुत लंबे, हजारों मील एज द क्रो फ्लाइज, और उससे भी लंबे अगर भाई सी आए तो। हो सकता है पिताजी उनको एक मामूली से पुर्जे यानी आपकी सीट की अहमियत का अंदाजा लग चुका, या वो यहां अपने किसी लोकल एजेंट को बिठाना चाहते हो। यह ट्रांसफर उन्हीं विदेशी ताकतों की एक गहरी साजिश है, दुनिया के बड़े बड़े सरमायादार, ये इंडस्ट्रियलिस्ट।
4: बेवकूफ पागल गधे, तुझे शर्म नहीं आती ऐसे कठिन समय में ऐसी ऊट पटांग बेसिर पैर की हाके जा रहा?
5: जब से इसकी नौकरी छूटी है रोज ऐसी ही बहकी बहकी बातें करता है।
7: नौकरी छूटी नहीं, छोड़ी है मैंने, लात मार दी है गुलामी पर, गुलामी की चिकनी चुपड़ी से आजादी की रूखी सूखी अच्छी,
4: और बेकारी के फाके उससे भी अच्छे। जी चाहता है ऐसी निकम्मी औलाद को लात मार के घर से बाहर निकाल।
5: हाय हाय, अब घर भी कहाँ रह गया है। मैं कहती हूँ जी कुछ तो सोचो, ऐसी विपता सिर पर पड़ी है और बाप बेटा आप आपस में झगड़ रहे हैं। आप मिल बैठ के कुछ सोचिए कि अब करना क्या है।
7: आई एम सॉरी डैडी, मुझे क्षमा कर दीजिए। अचानक ऐसी बुरी खबर सुनकर मैं जोश में आ गया था। मेरी पार्टी की ट्रेनिंग ही कुछ ऐसी है।
4: अब निखट्टू बेकारों ने अपनी कोई पार्टी भी बना ली है।
0: ओहो, फिर वही। जाओ जाओ कृष्ण, तुम अपने कमरे में जाओ। आप जरा शांत होकर बैठिए, जरा सोचिए तो सही कि करना क्या है।
4: करना क्या है, क्या हो सकता है? ओनी बड़ी बलवान है लाजो, और इंसान बहुत कमजोर।
7: लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे। आपको कुछ करना चाहिए।
0: और क्या, कुछ ना कुछ कोशिश तो करनी ही चाहिए।
4: अरे तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ? आज सुबह ही दफ्तर के तमाम बाबुओं ने फैसला किया है।
7: कल से स्ट्राइक?
4: अरे नहीं बेवकूफ, कल 11 बजे एक मीटिंग होगी जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ जो कुछ भी करना है कल की मीटिंग के बाद किया जाए।
8: उसी रोज यानी 17 जून की शाम, वक्त लगभग 5:30 और 6 बजे के बीच, उषा शर्मा कॉलेज से घर लौटी है। वक्त से पहले अपने पिता को घर पर देखकर अचानक ही हड़बड़ा उठी, और हड़बड़ाहट में यह भी भूल गई कि उसने बिल्कुल ऐसे वस्त्र पहन रखे हैं जो मिस्टर शर्मा के कथनानुसार
4: शरीफ खानदान के बेटे बेटियों का पहरावा नहीं है। ये पहरावा कम है, दिखावा ज्यादा।
8: बाहरी कमरे में उषा शर्मा की एंट्री के वक्त कुछ तो रोशनी फीकी सी थी, कुछ मिस्टर शर्मा की तबीयत निढाल, शायद आंखें भी अधमुंदी सी थीं। शर्मा जी को यकीन है कि सब कुछ बहुत साफ नहीं था, इसलिए उषा की आवाज सुनते ही
9: मामी मामी।
0: पिताजी, आप? बाप रे,
4: कौन?
9: मैं कोई नहीं।
4: कौन? लाजवंती? अरे उषा ही है क्या?
9: उषा? हाँ, नहीं।
4: तो कौन घुसा है अभी घर में?
9: उषा।
4: वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि इस घर में हो क्या रहा है? ऐसे कपड़े पहनने की इजाजत किसने दी उसे?
9: ओहो, किसे कोस रहे हैं?
4: मैं पूछता हूँ ये कैसा पहरावा है?
0: ओहो, पूरी बात तो सुन लिया करो। मैंने कहा उषा की कोई सहेली थी, उषा तो कभी की आई हुई है।
4: बुलाओ उसे।
0: अरे इधर क्या आएगी बेचारी, घर आते ही जब से मनहूस खबर सुनी है बेचारी रोए जा रही है।
4: हे भगवान, मेरा नहीं तो इन नन्हे नन्हे मासूम बच्चों का ही कुछ ख्याल किया होता। विनय लौट आया कॉलेज से?
0: हाँ, वो भी बहुत परेशान था, अपने किसी दोस्त को मिलने गया था, आता ही होगा।
4: सूरज ढलने के बाद बच्चों का घर से बाहर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
0: आप सूरज ढलने की बात करते हो, हमारे लिए तो अब सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब ही गया है।
4: हौसला रखो लाजवंती, कुछ न कुछ उपाय अवश्य निकलेगा, अवश्य निकलेगा। विनय।
10: जी पिताजी।
4: कॉलेज से लौटकर तुम्हें घर पर ही रहना चाहिए।
10: इफ यू डोंट माइंड, आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
4: कैसा सवाल?
10: इतने सालों से आप दफ्तर में काम कर रहे हैं, और आपके आसपास क्या हो रहा है इसकी आपको जरा भी खबर नहीं रहती?
4: विनय,
10: आपकी ट्रांसफर होने वाली है, इसकी खबर तक न मिली आपको?
4: खबर आज ही आई है।
10: आज ऑर्डर आए हैं, आप जरा भी होशियारी से काम लेते तो इसकी खबर आपको पहले हो सकती थी।
4: तुम्हारा मतलब क्या है?
10: खबर पहले मिल जाती तो ऑर्डर रुक सकते थे।
4: ऑर्डर? ऑर्डर? ऑर्डर ऊपर से आते हैं, ये कोई मेरे हाथ की बात है?
10: पिताजी, आपको ये तो सोचना चाहिए था कि आपकी ट्रांसफर से हमारी जिंदगी, हमारे एजुकेशन, हमारे करियर का क्या बनेगा।
4: तो ट्रांसफर क्या मैं खुद करवा रहा हूँ?
10: लेकिन ट्रांसफर ना हो इसकी कोशिश तो कर सकते थे आप, और ट्रांसफर हुई भी थी तो किसी अच्छी जगह हो सकती थी, बंबई, लंदन, न्यूयॉर्क, कहीं करवा लेते तो भी इज्जत रह जाती। अब क्लास में किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे डैडी की ट्रांसफर आगरे हुई है? सब कहेंगे आगरे के पागल खाने में जा रहे हैं।
4: तू क्या बक रहा है बेवकूफ कहीं का?
10: डोंट माइंड पिताजी, एक बात मैं साफ बताई देता हूं, मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकता।
4: तुम दिल्ली छोड़कर नहीं जा सकते?
10: कैसे जा सकता हूं, यहां मेरा करियर है, एक अपना सोशल सर्कल है।
4: तुम्हारा सोशल सर्कल?
10: मैं आपकी तरह जिंदगी भर दफ्तर में क्लर्क ही नहीं कर सकता। अगर आप ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते तो आप लोग जाइए, मैं यहां हॉस्टल में रह लूंगा।
4: क्या? तो यहां हॉस्टल में रह लेगा? और खर्चा? खर्चा कौन देगा?
10: ऑफ कोर्स आपको देना होगा।
4: मैं इस तनख्वाह में तुम्हें हॉस्टल का खर्चा दे सकता हूं?
10: तो ना सही, मैं कुछ छोटा मोटा काम कर लूंगा।
4: और मेरे इस घर बार के साथ, इसके साथ नहीं रहोगे?
10: मैं घर के साथ चिपका रहूं या अपना फ्यूचर देखूं? आज आप ये ट्रांसफर नहीं रुकवा सकते, आगरे चले जाएंगे, फिर वहां से निकाल वो आपको वेलू ट्रांसफर कर देंगे, वहां से गाजियाबाद कर देंगे, वहां से धनबाद, और धनबाद से फिरोजाबाद। माल गाड़ी की तरह आपको यहां से वहां, वहां से यहां शंटिंग करते फिरेंगे। हम साथ साथ अपनी जिंदगी कहां बर्बाद करते रहेंगे पिताजी?
4: मेरे साथ, अपने परिवार के साथ रहने में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है।

0: मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मेरी औलाद मुझे इस तरह, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूर हो जा मेरी नजरों से।
1: विनय, अपने पिताजी के सामने जबान खोलते तुझे शर्म आनी चाहिए।
2: नहीं अम्मा, मैंने ये सब कुछ मैं क्या बताऊं अम्मा, मैं क्या बताऊं? मैं दिल्ली छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा।
3: निकल जा मेरे घर से, चला जा यहाँ से, जहाँ तुझे रहना रह ले। बाप का घर छोड़कर दिल्ली में जा रह सकता, रह ले।
1: ओहो, आप क्यों बच्चों पर क्रोध करते हैं? जिसे बाप का घर कह रहे हो वो अब कितने दिन और हमारा है? आए राम, किसे पता था कि एक दिन यूं बैठे बिठाए सारा घर बार उजड़ जाएगा।
2: आई एम सॉरी पिताजी, ट्रांसफर की बात सुनकर मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं ना जाने क्या क्या कह गया। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी।
0: तुम लोग क्या समझते हो बेटे, मैं क्या कम परेशान हूं? पिछले 25 वर्षों में पहली बार दफ्तर से भाग कर आया हूं और सुबह से इस खटिया पर पड़ा हूं।
2: लेकिन पिताजी, खटिया पर पड़े रहने से क्या होगा, कुछ कीजिए ना।
0: हाँ, कर रहा हूं। कल सुबह एक मीटिंग होने वाली है, बस उसके बाद ही कोई एक्शन लूंगा।
4: अगले रोज यानी 18 जून सुबह 11 बजे मिस्टर शर्मा के ऑफिस में।
5: भाई साहब, आजी भाई साहब, जी जी, चालान देखकर जरा इस पर दस्तखत कर दीजिए, एक कैश जमा करवाना है।
6: लंच के बाद आना।
5: लंच के बाद आपका कैश काउंटर बंद हो जाता है
6: तो जनाब? फिर सुबह जरा जल्दी आना था।
5: लेकिन जनाब, वक्त तो अभी भी है।
6: कहाँ है वक्त, 11 बज रहे हैं, स्टाफ की मीटिंग है।
7: अरे ललित बाबू, और 11 बज गए, चलो भाई, बड़े बाबू जी की मीटिंग का वक्त हो गया है।
6: चलो।
5: अरे भाई साहब, बस एक मिनट की बात थी, एक नजर देख जाते, बड़ी मेहरबानी होती आपकी। बात यह है, आज पैसा जमा कराना बहुत जरूरी था।
6: कमाल है साहब, यहाँ बड़े बाबू की जिंदगी मौत का सवाल बना हुआ है और आपको पैसा जमा करवाने की पड़ी है। आपके सीने में इंसान का दिल है या पत्थर?
7: ओए चलो ना ललित बाबू, ये पब्लिक तो हमको अपना घरेलू नौकर समझती
6: है। चलो।
8: आओ आओ ललित बाबू, आओ इधर आओ, आओ भाई आओ।
7: नमस्कार बड़े बाबू जी।
6: अरे बड़े बाबू, आप तो बस एक ही दिन में इतने कमजोर लग रहे हैं जैसे महीने भर की बीमारी से उठे हैं।
9: नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है।
8: अरे भैया, ट्रांसफर की चोट लकवे से कम नहीं होती, अचानक आती है और इंसान को अधमुआ करके चली जाती है।
7: फिर भी मैं तो यही कहूंगा कि बड़े बाबू की बर्दाश्त का जवाब नहीं।
6: सो तो है, पर अब सोचना ये है कि इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए क्या एक्शन लिया जाए।
8: कुछ ना कुछ एक्शन तो लिए ही जाना चाहिए। रामलाल, जरा कैंटीन से जरा चाय तो लिया।
10: कितने चाय?
8: यही 4-5, और 4-5 प्लेट बढ़ेगी।
10: और पैसे?
9: ये ले, मैं देता हूँ।
6: अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हैं बड़े बाबू, ये नहीं हो सकता।
7: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं।
9: एक ही बात है भैया, एक ही बात है, एक दिन में क्या मैं इतना पराया हो गया?
7: नहीं, चलो चलो, जैसे बड़े बाबू जी कहते हैं कर लो।
9: ले रामलाल, ये ले 10 का नोट और लपक के ले आ जा।
8: मेरी राय में तो बड़े बाबू, सबसे पहले आपको कर्माकर साहब से मिल लेना चाहिए। क्यों भाई?
7: हाँ बिल्कुल,
9: मगर वो क्या कर सकता है?
7: बड़े बाबू जी, आप तो जानते हैं किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को प्रोसीजर में कच्चा नहीं होना चाहिए। देखो ना, वो है आपका इमीडिएट अफसर, उसको बाईपास करके सीधा ऊपर जाना अगेंस्ट द प्रोसीजर हो जाएगा। क्यों भाइयों?
6: सही बात,
7: सही है,
8: सही बात।
9: अच्छा तो फिर पहले मैं कर्माकर साहब से ही मिल लेता हूँ, और क्या।
8: और फिर आपने तो कितना कुछ किया है कर्माकर साहब के लिए।
9: हाँ सो तो है,
6: बस एक नोट लिख दे वो तो रुक गई ट्रांसफर। क्यों भाई?
7: बिल्कुल
8: सही बात,
6: बिल्कुल सही बात,
7: बिल्कुल।
8: आज ही मिल लीजिए,
9: पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी।
8: बिल्कुल नहीं, आपको अपॉइंटमेंट लेने की क्या जरूरत? अपॉइंटमेंट ली तो मामला भाप, अगला पहले से ही कोई एक्सक्यूज सोच लेगा, बस सीधा जा पहुंचे उसके पास। क्यों भाई?
6: बिल्कुल ठीक बात है।
9: तो ठीक है, मैं आज ही कर्माकर साहब से मिल लेता हूँ।
4: मीटिंग से उठना मिस्टर शर्मा का, और उसी रोज यानी 18 जून को ही जाना कर्माकर साहब के पास।
11: मे आई कम इन सर?
12: आओ आओ मिस्टर शर्मा, कम इन, आओ बैठो। कैसे आया?
9: सर आपसे थोड़ा वो एक पर्सनल काम था।
12: हाँ हाँ बोलो।
9: सर वो बात ये थी कि
12: आपने तो इतना कुछ किया कर्माकर साहब के लिए।
9: सर आपको याद होगा, जब आप दिल्ली आए थे तो आपको स्टेशन पर रिसीव करने मैं ही आया था।
12: हाँ याद है।
9: जब आपको सरकारी क्वार्टर न मिला था तो गुप्ता जी के क्वार्टर का आधा कमरा मैंने ही दिलवाया था। सर
12: याद है बरोबर।
9: पहले 2-3 महीने आपकी सारी फाइलें मैं ही अपनी बाईस किल पर आपके घर पहुंचाता रहा हूं।
12: बरोबर।
9: और एक दिन वो भीनी भीनी सुगंध वाला रुमाल जो आप दफ्तर में भूल गए थे, जिस पर अंग्रेजी का शब्द
12: बरोबर

0: बरोबर मिस्टर शर्मा, हमको सब कुछ याद है. यू हैव डन अ लॉट फॉर मी.
1: आपको सब कुछ याद है?
2: ऑफ कोर्स.
1: अगर सचमुच अपने सारे कैरियर में पूरे फर्ज से ड्यूटी मैंने निभाई है, सच्चे दिल से आपकी सेवा की है, तो बस एक काम कर दीजिए मेरा.
0: बोलो बोलो, क्या काम है
1: सर? आपको तो मालूम है मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं.
0: मालूम जरूर है, पर उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है. बाय गॉड, ये ऑर्डर हमारा नहीं है.
1: ये मैं जानता हूँ सर, लेकिन अगर आप चाहें तो ये ट्रांसफर रुकवा सकते हैं.
0: क्या मैं रुकवा सकता हूँ?
1: बेशक सर, बेशक आप रुकवा सकते हैं.
0: लेकिन ऑर्डर तो बहुत ऊपर, बहुत ऊपर और ऊपर से आया है.
1: कहीं से भी आया हो सर, ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए. सर मैं घर से बेघर हो जाऊंगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा घर उजड़ जाएगा, मेरे बीवी बच्चे तबाह हो जाएंगे. सर मैं
0: ये क्या कर रहे हैं मिस्टर शर्मा?
1: सर मैं आपके पांव पकड़ता हूँ.
0: अच्छा अच्छा अच्छा, अगर ये बात है तो हम पूरी कोशिश करेंगे. एक बात बोलूं मिस्टर शर्मा, आप ट्रांसफर रुकवाना क्यों चाहते हैं?
1: आप क्या पूछ रहे हैं सर?
0: क्यों,
1: हम पिछले सैकड़ों सालों से दिल्ली में रहते आ रहे हैं. मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, और उससे पहले सुना है मेरे परदादाजी भी दिल्ली में आने वाली हर हुकूमत में सरकारी मुलाजिम रहे हैं. और आज तक उनमें से कभी किसी का ट्रांसफर नहीं हुआ.
0: अच्छा।
1: जरा सोचिए करमारकर साहब, अगर मेरी ट्रांसफर न रुकती तो शर्मा बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी, खानदान की इज्जत खाक में मिल जाएगी सर.
0: ओ आई सी.
1: हमारे पूर्वज इसी धरती पर जन्मे, इसी धरती पर परवान चढ़े और इसी धरती पर राख हो गए. हमारी नाल घड़ी है सर, नाल घड़ी है इस धरती में. आप ही बताइए, अब इस उम्र में कहां परदेश में जाकर भटकता फिरूंगा सर.
0: गवर्नमेंट सर्विस में तो ट्रांसफर होता ही रहता है. अब अपन को ही देख लो, अपने देश शोलापुर से कितनी दूर आकर सर्विस कर रहे हैं.
1: आपकी नाल न गड़ी होगी ना सर वहाँ पर. फिर आप जवान थे, अकेले थे, और वो खुशबू वाला रुमाल.
0: बरोबर, तुम ठीक कहते हो मिस्टर शर्मा, पर ये नाल गड़ी वाली बात समझ नहीं आई.
1: नाल सर, वो नाल बच्चे की पैदाइश के वक्त होती है. नाल क्या बोलते हैं सर उसको? हाँ, अम्बिलिकल कॉर्ड.
0: अच्छा, कभी देखा नहीं.
1: सर आपकी शादी कहाँ हुई है? बच्चा तो बाद की चीज है ना सर. और फिर अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाल जमीन में गाड़ दी जाती है सर, जमीन में.
0: ओ आई सी.
1: मेरी माँ ने भी धरती में गाड़ दी थी सर.
0: कहाँ?
1: वो घर के आंगन में सर.
0: लोधी रोड के क्वार्टर में?
1: नो सर, पुरानी दिल्ली में.
0: ओ, वो तो 10-12 मील होगा.
1: यस सर.
0: तो नालगढ़ी से कितनी दूर तक जा सकते हो?
1: आप समझे नहीं, है तो अपनी धरती ना सर, सेम सिटी.
0: पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली?
1: सर है तो दिल्ली ना.
0: यस, यू आर राइट.
1: अब आप समझे ये बात, आप ही समझ सकते थे इसको, ऊपर वाले नहीं सर. बस सर, अब आप सारी बात समझ गए ना, तो सर ये ट्रांसफर रुकवा दीजिए.
0: हम रुकवा सकते हैं?
1: यस सर, आप रुकवा सकते हैं.
0: ओके, हम रुकवा देंगे.
1: थैंक यू सर.
0: नो, व्हाई थैंक मी? इट इज माय ड्यूटी.
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. मैं अब चलता हूँ.
0: ओके,
1: थैंक यू सर, थैंक यू.
0: मिस्टर शर्मा.
1: यस सर.
0: आपने ये तो बताया ही नहीं कि ट्रांसफर रोकने के लिए हमको करना क्या होगा.
1: बस सर, आप एक डीओ लिख दीजिए. हाँ. ये स्पेशल केस है, ये ट्रांसफर रोक दी जाए.
0: इज दैट ऑल?
1: यस सर.
0: ओके, हम लिख देंगे.
1: थैंक यू सर, थैंक यू. अच्छा अब मैं चलता हूँ सर.
0: अच्छा, बट लिसन.
1: यस सर.
0: ये डीओ लिखकर भेजने से ऊपर वाले ये तो ना समझेंगे कि मेरा कोई इंटरेस्ट है. यू नो भाई, ये ऑफिसर लोग बहुत सस्पिशियस होते हैं.
1: सर आप ये लिखिए ना कि काम बहुत है. हाँ. शर्मा बहुत पुराना आदमी है, इसको रिलीव नहीं किया जा सकता.
0: हाँ हाँ, ये ठीक है.
1: थैंक यू सर.
0: अच्छा अच्छा,
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच.
0: पर मिस्टर शर्मा.
1: यस सर.
0: वो ये भी तो कह सकते हैं कि ट्रांसफर में एक आदमी लेकर बदले में दूसरा आदमी दे रहे हैं. भाई स्टाफ टैंक वही रहेगी ना.
1: सर आप जरा स्ट्रॉन्ग डीओ भेजिए ना.
0: सुनो, नालगढ़ी मेंशन कर दें.
1: नो सर, वो उनकी समझ में नहीं आएगा सर.
0: मिस्टर शर्मा.
1: यस सर.
0: आप ऐसा क्यों नहीं करते कि अपना रिप्रेजेंटेशन बनाकर मुझे दे दें, मैं उसे थ्रू प्रॉपर चैनल फॉरवर्ड कर दूंगा.
1: वो तो सर.
0: कोई बात नहीं, हम फौरन पास ऑन कर देगा. भाई तुम तो जानते ही हो, हमारी पोजीशन बस एक पोस्ट ऑफिस की है. जैसे ऊपर का ऑर्डर हमने आपको पास ऑन कर दिया, आपका रिप्रेजेंटेशन ऊपर फॉरवर्ड कर देगा. डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेगा.
1: ओके सर.
0: ऑल द बेस्ट.
1: थैंक यू सर.
0: ऑल द बेस्ट.
1: थैंक यू.
3: प्लास्टिक की घास. श्रोताओं, आज आपने सुना इस नाटक का पहला भाग. लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। आपको बता दें, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग आप सुन सकेंगे कल नाट्य तरंग कार्यक्रम में। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज में आज हम आपको सुनवा रहे हैं।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी मुंबई के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 102.8 और न्यूज ऑन एआईआर रायपुर। शाम के 4 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लम्हे प्रोग्राम विद मी योर आरजे चेतन। अल्जाइमर की बीमारी एक दिमागी बीमारी है। ये डिमेंशिया की सबसे आम किस्म है जो व्यक्ति को धीरे धीरे परेशानियों व मुश्किलों की तरफ से ले जाता है। यह खतरनाक बीमारी है जो ज्यादातर 50 साल की उम्र के बाद ही देखने को मिलती है, परंतु ऐसा जरूरी नहीं है। कई शोध में पाया गया है कि यह बीमारी 30 या 40 साल के बाद भी शुरू हो सकती है। यहां तक कि आजकल ये बीमारी 30 साल से कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल जाती है। इस बीमारी की खोज सबसे पहले जर्मनी के एक मनोवैज्ञानिक और न्यूरोलॉजिस्ट एलोइस अल्जाइमर ने 1906 में की थी, इसीलिए इस बीमारी का नाम उनके नाम से अल्जाइमर हो गया है। इस बीमारी में व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है, उसका खास ख्याल रखना बहुत जरूरी है। हर साल अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को इसके प्रति जागरूक हो जाए और उन्हें इस बीमारी की ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो सके। इसे व्यक्ति वक्त रहते इसका इलाज करना शुरू कर सकता है। यह बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है। यदि यह बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाए तो इससे छुटकारा पाना आसान नहीं है। अल्जाइमर बीमारी एक दिमागी बीमारी है। इस रोग में दिमाग के कुछ ऐसे हिस्सों पर प्रभाव पड़ता है जो व्यक्ति की सोचने, समझने, याद करने और फिक्र करने की क्षमता के साथ साथ जबान पर काबू करते हैं। उन हिस्सों पर यह बीमारी असर डालती है। अल्जाइमर बीमारी का सबसे सामान्य प्रकार डिमेंशिया है। ये बीमारी बुजुर्ग लोगों में ज्यादा होती है जो धीरे धीरे याद करने और सोचने समझने की क्षमता को खत्म कर देते हैं। इस बीमारी के कारण व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी में होने वाले कामों को वह आसानी से नहीं कर पाता। वैज्ञानिकों ने इस बीमारी के बारे में बहुत अध्ययन किए हैं, परंतु कोई भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाया कि आखिर इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण क्या है। ये एक ऑटोपैथिक रोग है। आज के लम्हे प्रोग्राम में हम अल्जाइमर बीमारी के उस लक्षण और उसके कारण के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं आपके आरजे चेतन से। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण ये होते हैं कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने सामान्य कामों को भूलने लगता है। लोग समझते हैं कि ये बुढ़ापे के कारण है। भूलना एक आम बात है, परंतु हर चीज को भूल जाना ये खास विषय है, इसीलिए व्यक्तियों को इस पर ध्यान देना चाहिए। रोजमर्रा के कामों में परेशानियां आने लगती है। व्यक्ति आसानी से अपने दैनिक कार्यों को नहीं कर पाता। कार्य करने की क्षमता खत्म होने लगती है। व्यक्ति अपनी जीवन शैली की सामान्य बातों को भी धीरे धीरे भुलाने लगता है। किसी भी व्यक्ति का नाम या घर के आसपास की मशहूर जगह या रास्ते भी भूल जाता है। ये सब अल्जाइमर के लक्षण है। अल्जाइमर की बीमारी का एक लक्षण ये भी है कि इस बीमारी में व्यक्ति की जबान लड़खड़ाने लगती है और वह किसी भी बात को सही तरीके से नहीं कह पाता है। हर बात को कहने में अटकने लगता है और अटक अटक कर भी बात करते हैं। उसकी जबान उसके काबू में नहीं रह पाती। किसी भी काम को या किसी भी मसले को हल करने की शक्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहती। वह सोचने समझने की क्षमता खो बैठते हैं। व्यक्ति का मस्तिष्क सही से काम नहीं कर पाता। व्यक्ति को सामाजिक होने में परेशानी होती है। वह आसानी से लोगों से घुल मिल नहीं पाता और अकेले रहना ही पसंद करता है। अल्जाइमर के रोगियों के पर्सनैलिटी में बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो कंफ्यूज रहते हैं। अल्जाइमर बीमारी को

लेकर वैज्ञानिकों ने अनेक शोध किए हैं और इसके कारण जानने की भरपूर कोशिश की है। अल्जाइमर बीमारी के कई कारण वैज्ञानिकों के द्वारा खोजा भी गए हैं। यह पर हम कुछ कारणों के बारे में बताएंगे जो अल्जाइमर बीमारी के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आरजे चेतन के साथ। वंशानुगत या जेनेटिक कारण की वजह से भी अल्जाइमर की बीमारी हो सकती है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि परिवार के किसी सदस्य में यदि अल्जाइमर की बीमारी पहले रही है तो ऐसे में आने वाली पीढ़ियों में भी ये बीमारी देखने को मिल सकती है। व्यक्तियों के जीन्स दूसरी पीढ़ियों में जाकर इस बीमारी के लिए जिम्मेदार बन सकते हैं। अल्जाइमर बीमारी का एक कारण विटामिन B12 की कमी का भी होना भी है। जब शरीर में विटामिन B12 की कमी होने लगती है ऐसे में व्यक्ति का दिमाग कमजोर होने लगता है। इसे व्यक्ति को सामान्य दैनिक क्रियाकलापों को याद रखने में परेशानी होने लगती है। शरीर को पर्याप्त आराम की जरूरत होती है। यदि सही से नींद के चक्र को पूरा न किए जाए तो ऐसे में व्यक्ति का मस्तिष्क या दिमाग कमजोर होना शुरू हो जाता है। इसका फलस्वरूप अल्जाइमर जैसे खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। सिर में दर्द भी अल्जाइमर जैसे खतरनाक बीमारी का कारण हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को लगातार सिर या माइग्रेन की समस्या हो तो उसे इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए। शरीर पर अतिरिक्त वसा होने के कारण भी दिमाग की नसें कमजोर हो सकती है। ये अल्जाइमर का कारण बन सकता है। चिंता, तनाव या डिप्रेशन इत्यादि मस्तिष्क के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। यह दिमाग के नसों को सुखा सकते हैं। इससे अल्जाइमर की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त जो मैं बताने वाला हूँ इससे भी अल्जाइमर का रोग हो सकता है, जैसे मधुमेह की बीमारी रहने के कारण, देर से सोने और जागने के कारण, पोषण से भरपूर खाना न लेने के कारण अल्जाइमर्स हो सकता है। तो दोस्तों अब मैं इसका निवारण बताने जा रहा हूँ। इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है कि अल्जाइमर की बीमारी का कोई भी सटीक इलाज नहीं है। यदि यह बीमारी किसी व्यक्ति को हो गई तो इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनकी अच्छी देखभाल की जाए, उनका खास ख्याल किया जाए, उसके साथ साथ उन्हें अच्छे खाने पीने, पोषण से भरपूर आहार, व्यायाम, सुबह जल्दी उठने और रात को जल्दी सोने का खास ख्याल रखना जरूरी है। इस तरीके से किसी हद तक उसकी उस बीमारी पर नियंत्रण पाया जा सकता है, परंतु बीमारी पूरी तरीके से खत्म नहीं हो सकती है। अल्जाइमर भूलने की बीमारी की सबसे आम किस्म है। WHO के अनुसार दुनिया भर में लगभग 55 मिलियन लोग इस भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं। ये बीमारी मस्तिष्क में याददाश्त को नियमित करने वाले हिस्सों को प्रभावित करती है, जिसके कारण व्यक्ति का अस्तित्व, उसकी पहचान, शख्सियत, व्यवहार, उसके मिजाज, यहाँ तक कि उसके पूरे याद करने वाले हिस्से पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। डिमेंशिया की बीमारी के कम से कम 100 किस्में होती है, परंतु सबसे जानी पहचानी किस्में अल्जाइमर है। स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले ये बीमारी होने की संभावना ज्यादा होती है। ये बीमारी आजकल तेजी से लोगों में फैल रही है। ये बीमारी कंट्रोल की जा सकती है, इसीलिए इस बीमारी से पीड़ित लोगों को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि किस व्यक्ति को अल्जाइमर रोग है तो उसे तुरंत चिकित्सक से सलाह लेना आवश्यक है। Well, dear friends, with this very useful information about Alzheimer's, we wrap up the program for today. I'll get back to you in our next segment. Till then, have a great time. Bye. दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039. I repeat, 09515227039. हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com. आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com. दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाय एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। हम आकाशवाणी मुंबई के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं, FM 102.8 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। आइए सुनते हैं अपना अगला कार्यक्रम।

0: पड़ता है। तो हमें वो स्क्रिप्ट मिलती है, फिर हम हर कैरेक्टर का एक अच्छा सीन निकालते हैं, उसके फिर हम कॉपीज हम एक्टर्स को देते हैं जो हमें लगता है कि हाँ ये रोल में सूट होंगे। तो इस तरह से हम फिर पूरी एक लिस्ट बनाते हैं कैरेक्टर्स की, जो स्पीकिंग पार्ट्स है, जिनके डायलॉग्स है, उनकी पूरी एक लिस्ट बनाते हैं। फिर हर कैरेक्टर के हमारे जो डेटाबेस में है, हमारी जानकारी में जो अच्छे एक्टर्स है, जिनकी अच्छी ट्रेनिंग हुई है, जिन्होंने थिएटर, NSD, FTII या जो भी अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, जिसने 10-15 साल थिएटर किया हो, वैसे सब नाम हमारे पास होते हैं। तो हम उसमें देखते कि किसका चेहरा ये कैरेक्टर से मिलता है। तो वैसे हम 8-10 शॉर्टलिस्ट करते, उनको वो एक सीन भेजते, फिर वो उनको टाइम देते थे कि भैया 2 दिन बाद आपको 4-5 के बीच में आके ये सीन करना है। फिर वो एक्टर आता है, परफॉर्म करता है, फिर उसमें से जो 8-10 जन जो हमने ऑडिशन किए, उसमें जो हमें जो बेस्ट 3-4 लगते हैं, वो हम डायरेक्टर को दिखाते हैं कि देखो ये 3 बेस्ट थे, आप देखो, उनको अगर नहीं पसंद आए कोई भी तो और लोगों को ऑडिशन करते, वरना वो 3-4 में से कोई एक लॉक कर लेते हैं।
1: तो मतलब ये पूरा एक प्रोसेस रहता है, पहले आपकी नजरों से गुजरती है सारी चीजें कि कौन आपको कौन लगता है उस किरदार में फिट बैठेगा, और देन आप आगे लेके जाते हैं। गौतम जी, इतनी बातों के बीच एक गाना तो होना चाहिए।
0: हाँ, एक पुराना गाना जो मुझे बहुत पसंद है वो है हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे, वो भी बहुत पसंद है
1: जी। सुन लेते।

0: तो गौतम जी, आपने कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर जब अपनी शुरुआत कर ली, हर डायरेक्टर का काम करने का कुछ तरीका अलग होता है उनकी कास्टिंग जब आप करते हैं उनकी फिल्म के लिए, या कास्टिंग का अपना एक ही तरीका है?
1: यूजुअली एक ही तरीका होता है, सिर्फ है कि कोई डायरेक्टर का देखने का नजरिया अलग अलग होता है। एक ही प्रोसेस होता है। अनुराग जैसे डायरेक्टर को 5 सेकंड लगते हैं डिसाइड करने को कि ये एक्टर फिट है कि नहीं उनके लिए। कुछ कुछ डायरेक्टर्स को और टाइम लगता है और उनको ज्यादा ऑप्शंस देखना पसंद करते हैं। कोई थोड़े इंडिसाइसिव होते हैं, लास्ट मिनट में डिसाइड करते हैं। अलग अलग टाइप के हैं, बट प्रोसेस ज्यादातर सेम ही होता है।
0: आपकी ओर से प्रोसेस सेम है और डायरेक्टर्स का नजरिया है।
1: हाँ, बट कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दो एक्टर्स दोनों परफेक्टली फिट है, समझ नहीं आ रहा है कि किसके पास जाएं। तो जैसे विशाल जी के साथ हुआ था, विशाल भारद्वाज के साथ
0: जी।
1: हम दोनों कंफ्यूज थे कि हु इज द बेटर ऑप्शन, लेकिन सर ने बोला कि इसका इंट्रोडक्शन लगाओ। तो एक्टर का इंट्रोडक्शन देख के उसकी पर्सनैलिटी और क्लियर हो गई, तो जिसका पर्सनैलिटी थोड़ी फिट हो रही थी और ज्यादा
0: जी,
1: वो लॉक हो गया।
0: तो ऐसे मुश्किल मौके
1: ऐसे भी कभी कभी होता है
0: जी।
1: कभी कभी बहुत अच्छे एक्टर्स भी फिट नहीं होते क्योंकि टेक्निकली सिनेमाटोग्राफर के वजह, या अगर हाइट डिफरेंस हो, या जब आप कॉम्बिनेशन कास्टिंग कर रहे हो, एक फैमिली की कास्टिंग कर रहे हो, तो आपको यू हैव टू कीप ऑल द 4 कैरेक्टर्स इन माइंड कि चलो ये 4 जन एक फैमिली के लगने चाहिए।

0: तो भी कभी कभार होता है कि एक अच्छा ऑडिशन नहीं सिलेक्ट होता, वो भी होता है, बट दैट इज रेयर। मोस्टली द बेस्ट ऑडिशन गोज थ्रू यूजुअली।
1: तो अगर कोई बाय चांस सेलेक्ट नहीं होते हैं आर्टिस्ट आपने जिनका ऑडिशन लिया है और भेजा है, तो उनको बताने का कुछ ऐसा स्पेशल प्रोसेस होता है कि कभी कोई बुरा नाम आने, कुछ ऐसा ना लगे उन्हें कि क्यों नहीं सेलेक्ट हुए?
0: देखो, एक्टर को तो बुरा लगता ही है, पर हम उन्हें कोशिश करते हैं समझाने की कि ये इसमें आपकी गलती नहीं है। कि मैं हमेशा एक्टर को तो पर्सनली मत लो, क्योंकि बहुत चीजें जाती है इन एक कैरेक्टर को फाइनल करने में, तो पर्सनली ना ले और ऑडिशन करते रहें विद द सेम पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ऑडिशन करें, नेगेटिवली ना ले और आगे बढ़े, क्योंकि ये सब एक्टर के साथ होता है। हर एक्टर को बहुत समय लगता है टू रीच दैट सक्सेसफुल पोजिशन, एवरी एक्टर, आपको वो जर्नी क्रॉस करनी है थ्रू रिपीटेड फेलियर्स।
1: तो कभी ऐसा हुआ कि किसी एक्टर को आपने, मतलब वो सिलेक्ट नहीं हुए हो लेकिन वो बुरा मान गए हो, लेकिन बाद में उन्हें ये एहसास हुआ हो कि नहीं?
0: हाँ, ऐसे भी थे एक्टर्स। एक एक्टर है, 2-4 साल पहले मैंने उसके साथ 3-4 बार काम किया है, उसका कॉल आया मुझे कि गौतम भाई मैंने फिल्म में असिस्ट किया और मुझे समझ आया कि प्रोसेस क्या है, कैसे कास्टिंग होती है, और मैं खामखा आपको कोसता था कि आपने मुझे कास्ट नहीं किया करके। तो जब एक एक्टर कास्टिंग डिपार्टमेंट में काम करता है कास्टिंग असिस्टेंट की तरह, या एक असिस्टेंट डायरेक्टर के पोजीशन में काम करता है, तो उन्हें पता चल जाता है बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है, कैसे कास्टिंग होती है, क्या जाता है डिसीजन मेकिंग में, और उन्हें फिर बेटर समझ आता है। इसलिए मैं हर एक्टर को बोलता हूँ, पर्सनली मत लो, बस अपने क्राफ्ट पे काम करो, कोशिश करो कि आप जो पिछले साल जो आपकी एक्टिंग एबिलिटी थी, इस साल उस पिछले साल से बहुत बेटर होनी चाहिए। तो क्राफ्ट पे काम करते रहो, वो मेरी एडवाइस होती है हर एक्टर को, और आपका टाइम आएगा। ये एक 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है, यहाँ लंबी रेस के घोड़े जीतते हैं।
1: पूरे वक्त अपने कला को निखारते रहिए, तराशते रहिए।
0: हाँ,
1: अगर हम देव डी की बात करें जिसकी कास्टिंग आपने की, तो कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए, क्योंकि इसकी कास्ट एक से बढ़कर एक है, बिल्कुल अलग तरह की कास्ट है, कुछ टिपिकल किरदार उसमें बहुत कम है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहा, किस तरह से आपने चुना?
0: आई थिंक अनुराग भी काफी इन्वॉल्व होता है कास्टिंग में, और अभय तो पहले से ही था कास्ट, अभय का ही आइडिया था आई थिंक एक मॉडर्न डे देवदास बनाना, और अनुराग ने और विक्रम ने शायद वो स्क्रिप्ट लिखी, और माही को आई थिंक अनुराग ने ही एक पार्टी में देखा था, जो कल्की का पार्ट है
1: जी
0: चंदा, उसके लिए बहुत मेहनत गई थी, और जैसा पार्ट था वो पार्ट आज बहुत कॉमन दिखता है, बट 2007 में वो बहुत ही शॉकिंग था एक्टर्स के लिए। तो वो कैरेक्टर पढ़ के ही कितने एक्टर्स भाग जाते थे कि हमको ये ट्राई भी नहीं करना है करके, बट इसमें हमने बहुत एक्टर्स को ऑडिशन किया था, राधिका आप्टे को किया था, रिचा चड्ढा, ऑल दीज पीपल वर टेस्टेड, फाइनली वी वेंट विद कल्की,
1: और बिल्कुल सही लगती हूँ किरदार। हाँ, हाँ, जैसा कह रहे थे,
0: हाँ,
1: ऐसा लगता है वो ही उस किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभा सकती हैं।
0: हाँ,
1: तो यहाँ पर हम एक गाना भी सुन ले, क्योंकि इतनी सारी मेहनत की आपने इसके पीछे, तो एक गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: हाँ, ये देवडी का गाना है, अमित त्रिवेदी का, साली खुशी आई थिंक।
1: खुशियों को याद करते हुए गाना सुनते हैं आपकी पसंद पर।
2: जलत

0: तो कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि बहुत से किरदार को सोच के ही कहानी लिखी जाती कि इसमें यही व्यक्ति अच्छा लगेगा और उसने मना कर दिया, मान लीजिए उस एक्टर ने, फिर उसके बाद जब किरदार खोजना होता है तो मुश्किल ज्यादा होती है क्या? जैसे किसी खास एक्टर को सोच के लिखा गया हो और उन्होंने कहा कि हमें तो नहीं करना इसमें काम,
1: मतलब आई थिंक ये बात है कि देखो मुश्किल तो होती है लेकिन दूसरा ऑप्शन मिल ही जाता है
0: जी।
1: नोबडी इज इंडिस्पेंसेबल, लाइक आपको हमेशा एक अच्छा एक्टर मिल ही जाएगा और फिर आप उस कैरेक्टर को थोड़ा सा रीराइट करते हो उसे मन में रख के।
0: और सबसे ज्यादा टाइम किस फिल्म की कास्टिंग के लिए आपको लगा?
1: सबसे ज्यादा वक्त एक हमने एक प्रोजेक्ट के लिए किया जो शेल्व हो गया था। हमने ऑलमोस्ट 4-4.5 months कास्टिंग की थी मिडनाइट चिल्ड्रेन की, जो विशाल जी बना रहे थे नेटफ्लिक्स के लिए। वो मैं, अनमोल अहुजा जो कास्टिंग बे के चलाते हैं, हम दोनों मिलके कर रहे थे वो, क्योंकि बहुत बड़ा कास्ट था वो, लेकिन सैडली प्रोजेक्ट शेल्व हो गया था वहाँ। आई थिंक उससे ज्यादा टाइम मैंने कोई प्रोजेक्ट पे स्पेंड नहीं किया।
0: और सबसे कम किस में लगा आपको समय?
1: सबसे कम आई थिंक काफी कम, सबसे कम नहीं बट काफी कम टाइम लगा नो वन किल जेसिका में, क्योंकि उसमें हमारे पास सिर्फ एक महीना ही था, महीना या सवा महीना था, और बड़ा कास्ट था, 50-70 स्पीकिंग पार्ट्स थे। बट वो था कि हम, बिकॉज शूट दिल्ली में था तो हमने दिल्ली में ही सारा टैलेंट 3-4 हफ्ते में टेस्ट करके, आई थिंक टचवुड राज को 95% ऑफ द ऑप्शंस पसंद आए थे। काफी मतलब लगा था जो मुश्किल होगा लेकिन बहुत स्मूथली हुआ वो,
0: क्योंकि बहुत बड़ी कास्ट थी जैसे कि आप बता रहे हैं
1: और टाइम बहुत कम था
0: जी। अगर सीक्रेट गेम्स की हम बात करें तो ये, अगर मुझे सही जानकारी है तो भारत की पहली ओरिजिनल ओटीटी सीरीज है ये, और उसकी कास्टिंग भी आपने की है?
1: मैंने season 2 की थी, season 1 मुकेश छाबड़ा ने किया था
0: जी। पर ओटीटी और फिल्म्स की कास्टिंग में कुछ ऐसा फर्क रहता है?
1: नहीं, कुछ फर्क नहीं होता है। ओटीटी में फिल्म वाला ही सुर होता है परफॉर्मेंस का, तो बस वो एक लंबी फिल्म होती है, लेकिन ज्यादा फर्क है नहीं। फर्क आती है जब आप टीवी सीरियल, जो सास बहू टाइप के टीवी सीरियल होते हैं, उनके एक्टर्स अलग होते हैं, उनका परफॉर्मेंस हाइटेंड होता है, थोड़ा रियलिज्म से थोड़ा ऊपर होता है वो
0: जी।
1: तो वहां अलग एक्टर्स होते हैं। जैसे मेरे को तकलीफ होती है जब कुछ एक्टर्स को मैंने, जिन्होंने बहुत सारा सोप ऑपेरा वाले शोज किए हैं, तो उनको फिल्म में अडेप्ट करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है। कर पाते हैं इवेंचुअली, बट थोड़ा सा वो मीडियम से इस मीडियम में आने को टाइम लगता है। बट वेब और फिल्म में ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही है।
0: और आपने कभी ऐसा सोचा कि कास्टिंग डायरेक्टर का काम आप करते हैं, उसके अलावा भी कोई काम करना चाहते हैं ऐसा कुछ?
1: अभी भी डायरेक्ट करने का सपना तो है ही है, वही पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: और कुछ कभी किया हो बीच में, मतलब ऐसे कास्टिंग के काम के बीच में ऐसा कुछ, अपना कुछ काम करते हैं? कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ये इस रोल में तो मैं ही फिट बैठता हूँ?
1: नहीं नहीं, मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है।
0: और आपके ऑफिस में अगर मान लीजिए आपकी टीम में कोई हो तो कभी ऐसा लगता है कि ये इस रोल
1: में? कोशिश करता हूँ कि अपनी टीम को कास्ट ही नहीं करूं। क्या है, क्योंकि दूसरे एक्टर्स को फिर बुरा लगता है, एक्टर्स को लगता है कि अच्छा ये कास्टिंग के जरिए काम मिल जाएगा करके, वो भी बहुत गलत होता है। तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो बिगनिंग में एक दो बार हुआ होगा कि चलो टीम को ही कास्ट कर लो या छोटे छोटे पार्ट जिसमें इतना फर्क नहीं पड़ता हो, बट जब कुछ थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगी, जब बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उनको काम नहीं मिला और जो कास्टिंग असिस्टेंट्स को काम मिला, तो एक्टर्स में बहुत एंगर देखा मैंने। तो वो जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ ना, तो मैंने तब वो रूल ही बना दिया मेरे टीम के साथ कि भाई अगर आप मुझे असिस्ट कर रहे हो तो आपको मैं ऑडिशन नहीं करूंगा, अगर आपको एक्ट करना है तो आपका कास्टिंग का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये रूल मैंने बना दिया।
0: तो अगर किसी को आपकी टीम में से कास्ट होना है किसी फिल्म में तो उसको टीम छोड़नी पड़ेगी?
1: हाँ, और फिर एज एन एक्टर ऑडिशन करना पड़ेगा, फिर उनकी जगह नहीं है मेरे टीम में।
0: तो मतलब वो फेयरली हो ताकि सब,
1: हाँ, ताकि जो लोग पूरा टाइम एक्टिंग में घुसे हुए हैं, जो ट्रेन कर रहे हैं अपने आप को, वर्कशॉप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें एक बेटर चांस मिले।
0: तो गौतम जी, यहाँ आपकी पसंद का एक गीत सुनते चलें और उसके बाद फिर हम आगे की बात करेंगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये जो रेखा भारद्वाज जी ने जो गाया है कबीरा, वो गाना मुझे बहुत पसंद है।
0: तो चलिए वो गाना सुन लेते हैं।

0: तो गौतम जी, जब कास्टिंग की हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह की कास्टिंग होती है, तो मेन कैरेक्टर की, जैसे आपने बताया कि पहले मेन कैरेक्टर्स की जब कास्टिंग हो जाती है, उसके बाद आगे के कैरेक्टर्स आप चूज करते हैं, तो अलग अलग तरह के कैरेक्टर होते हैं। जैसे आपने बताया संवाद वाले कुछ कैरेक्टर होते हैं, पर बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनका कोई संवाद नहीं होता है, पर वो फिल्म में नजर आते हैं, बार बार भी नजर आते हैं, तो किस तरह से ये सारी कास्टिंग का काम होता है?
1: देखो, पहले तो आप प्राइमरी कैरेक्टर्स पे ध्यान देते हैं, जिनका सबसे ज्यादा किरदार है, उनकी कास्टिंग पहले होती है। फिर हम सेकेंडरी कैरेक्टर्स पे जाते हैं जिनके 3-4 सीन हो, साइड बाय साइड हो ही जाता है वो भी प्राइमरी के साथ शुरू करते हैं। फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी कवर हो जाते हैं, तब टर्शियरी होते एक लाइन वाले, वो फिर हम ओवर अ पीरियड ऑफ 4-5 डेज सारे कैरेक्टर्स को बुलाते हैं, सारे एक्टर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है, क्योंकि एक ही लाइन बोलनी है, तो 5-7-10 मिनट में एक एक ऑडिशन हो जाता है। तो ये 4-5 दिन जाते हैं, सारे टर्शरी करते हैं, बाकी जो नॉन स्पीकिंग पार्ट है, अगर उसमें टर्शरी में भी कोई है जिसको बिना डायलॉग के इमोट करना है, एक्सप्रेशन देनी है, तो भी हम एक्टर्स ही ढूंढते हैं उसके लिए। और फिर बाकी रहता है जो क्राउड, फिर एक जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो प्रोडक्शन जब डायरेक्टर डिमांड करता है कि हाँ मुझे सपोज ये मार्केट का सीन है, मार्केट के सीन में मुझे 70-80 लोग चाहिए एज अ क्राउड इन द मार्केट, तो वो फिर वैसे वो स्ट्रेटा के लोग एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि कहाँ है। डिपार्टमेंटल स्टोर का सीन है, मतलब एक मॉल में है तो अलग होगा, एक सब्जी मंडी होगा तो अलग टाइप का क्राउड होगा, तो वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर होता है, वो लेकर आता है, उन जूनियर आर्टिस्ट ही कहलाते हैं वो।
0: मतलब कि अगर गांव का सीन है तो उनकी उस तरह के लोग दिखने वाले, एकदम कोई बहुत ज्यादा शहरी जो दिख रहे हैं उनको नहीं लेंगे, तो इस तरह से वो आप चुनाव कर लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो गौतम जी, अगर किसी एक्टर को हम कास्ट करते हैं, तो सबसे पहले तो हम उसे चेहरा उसका है, कैसी कद काठी, ये तो देखते हैं, उसके अलावा और क्या चीजें हैं जो आप जज करते हैं?
1: देखो, हर एक्टर को आपके दिमाग में जो विजुअल है एक कैरेक्टर का, उसमें अगर वो बैठता है तो वो एक फर्स्ट प्लस पॉइंट हो जाता है उसके लिए। बाकी फिर है कि एक्टर कितना स्ट्रांग है, दैट इज द फाइनल मेन इम्पॉर्टेंट थिंग है, कि अगर कैरेक्टर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसकी एक्टिंग एबिलिटी पे बात आ जाती है। फिर अगर वो परफेक्टली मैच हो रहा है कि नहीं, थोड़ा ऊपर नीचे है, वो मैटर नहीं करता। फिर अगर एक स्ट्रॉन्गर एक्टर ऑप्शन है, तो यूजुअली अ डायरेक्टर विल गो विद हिम और हर,
0: क्योंकि वो अपनी परफॉर्मेंस से वो,
1: हाँ, वो ऐसे लेयर्स लाएगा परफॉर्मेंस में जो शायद एक वीकर एक्टर नहीं ला पाए।
0: और आप जब कभी फिल्म देखने जाते हैं, तो कहते हैं कि जब इस मीडिया में कोई काम करने लगता है तो वो जो काम कर रहा है उसके हिसाब से ही फिल्में देखता है।
1: बट कभी कभी हो जाता है, जब आपको अगर कास्टिंग गलत लगती है या सेट ठीक नहीं लगते हैं, तो वो नोटिस में आता है जो भी ज्यादा फिल्में देखता है। आई एम नॉट सेइंग जो काम करते हैं, बट जो काम करते हैं, जो बहुत सारी फिल्में देखते हैं, वो बहुत जल्दी पकड़ने लगते हैं प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को। तो एक दफा आप वो कुछ नोटिस करने लगे, तो फिर थोड़ा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है फिल्म देखने का।
0: पर्दे के पीछे की बातें जब आप जान रहे थे,
1: जान जाते हो, अरे यहाँ ये रह गया, इन्होंने ये ठीक नहीं किया।
0: अगर कोई इंडस्ट्री में आता है, कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहता है वो, तो इसके लिए क्या कर सकते, कोई कोर्स है या बस करने की कला है सब?
1: आई थिंक कास्टिंग डायरेक्टर के

0: कोर्स तो अभी तक आई डोंट थिंक है, बट आपको आके कोई कास्टिंग डायरेक्टर कोई असिस्ट करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कास्टिंग की एक इंस्टिंक्ट होती है जो मुझे लगता है कि मेरे में थी, इवन दो मुझे ये करना नहीं था, ये तो मुझे पता भी नहीं था, बट ये था कि जब आप एक एक्टर को देखते हो एक पर्टिकुलर किरदार में और आप बोल रहे हो कि यार ये तो वो लग ही नहीं रहा, जब आप चेहरों को रोल्स के साथ एसोसिएट करते हो, अगर वो इंस्टिंक्ट हो तो आप बन सकते हो। आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, ऐसा मुझे लगता है, आई मे बी रॉन्ग बट देयर इज एन इंस्टिंक्ट।
1: हाँ, मतलब वो स्टोरी को पढ़ के आपको ऐसा लगता है कि इसमें ये व्यक्ति ज्यादा अच्छा लगेगा और उस तरह से आपको एक अंदाजा।
0: वो होता ही है, मतलब अगर एक कास्टिंग डायरेक्टर को चेहरे दिख जाते, अगर एक चेहरा दिख गया तो उसको लगता है हाँ ये यहाँ पे अच्छा बैठेगा करके, और एक आपको एक इंटरेस्टिंग चेहरा पहचानने की एबिलिटी आ जाती है।
1: कोई अगर एक्टर बनने के लिए यहाँ आते हैं, पहचाने कैसे कि असल में कास्टिंग डायरेक्टर क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है हर दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मैं काम दिला सकता हूँ, ऐसे भी लोगों से हम मिलते हैं।
0: जब भी एक्टर्स आते हैं ना, जो भी बॉम्बे आते हैं, एक तो मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक्टिंग सीखने मत आना, कभी सीख के आओ, ट्रेन करके आओ, क्योंकि मुंबई बहुत महंगा शहर है
1: जी,
0: सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, और एक दफा आपके पास पैसे नहीं हो, अगर आप एक रईस खानदान से नहीं हो तो आप एक्सप्लॉयट हो जाओगे, या बहुत बहुत डिफिकल्ट जगह रहने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए। इसलिए मैं हर कोई एस्पायरिंग एक्टर को कहता हूँ, आपके होमटाउन में, आपके घर के पास कोई भी थिएटर ग्रुप हो या कोई इंस्टीट्यूट हो, वहां ज्वाइन करो। एक्टिंग ऐसे आप कुछ एक हफ्ते भर का कोर्स करके आप एक्टर नहीं बनते हो, बहुत टाइम लगता है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए, लाइफ टाइम लग जाती है एक अच्छा एक्टर बनने के लिए। तो मेरी एडवाइस वही रहती है कि आप जाके एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करिए, या एक NSD जैसा इंस्टीट्यूशन हो, ड्रामा इंस्टीट्यूट, या FTI जैसा, या ड्रामा स्कूल, ऐसे लॉन्ग फॉर्म इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन करें, या आपके आसपास के शहर में एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करें, 4-5 साल थिएटर करें, पूरा क्राफ्ट समझे और फिर बॉम्बे आए। क्योंकि फिर क्या है, जब आप आओगे आपके थोड़े से जो रेडार्स है वो एक्टिव हो जाएंगे, आपको समझ आएगा कौन बुद्धू बना रहे और कौन जेन्युइन है करके। आई थिंक है जेन्युइन लोग भी है बट फ्रॉड्स भी बहुत है, वो फिर फेक ऑडिशंस करते हैं एक्सप्लॉयट करने के लिए, या फिर आपसे पैसा मांगेंगे कि आप 50,000 दे दो या 20,000 दे दो, आपको रोल फाइनल होगा और आपको कुछ बता देंगे, ये सीन दे देंगे, और बाद जब शूट का टाइम होगा वो लोग ही गायब हो जाएंगे। तो ऐसा भी एक्सप्लॉयटेशन बहुत होता है, इसीलिए मैं हर व्यक्ति को बोलता हूँ जो एक्टर बनना चाहता है या बनना चाहती है कि ट्रेन करके आओ, यू विल बी बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द इंडस्ट्री देन,
1: और उनके भी एक अनुभव रहेंगे एक्टिंग के, तो वो ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं।
0: हाँ, और अब जब आप थिएटर वेटर करके आओगे तो बॉम्बे आओगे तो आपको भी थिएटर सर्किट के और लोग मिलेंगे, वो भी एक होता है, आपका कोई ना कोई पहचान वाला होता है बम्बई में, फिर ऐसे ही आप डायरेक्ट आ जाओगे बिना एनी नॉलेज तो आपका फायदा उठाया जाएगा।
1: तो जिन फिल्मों के लिए आपने कास्टिंग की है उनमें से कौन सी आपके सबसे दिल के करीब है?
0: आई थिंक पहली वाली ब्लैक फ्राइडे, पहली फिल्म आई थिंक यूजुअली स्पेशली होती है सबके लिए, और क्वांटिटी भी ज्यादा थी, 172 स्पीकिंग पार्ट्स थे और 2 महीने थे, और बस मैं था और एक वो एक और असिस्टेंट होता था क्यूज के लिए, बस हम दो ही मिलके पूरी कास्टिंग हमने की। बहुत ही मुश्किल था, सुबह से लेके रात तक बस ऑडिशन पे ऑडिशन एंड विदाउट एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस। सबसे डिफिकल्ट बट खुशी वही कास्ट को देख के लगती है।
1: तो ये आपको मतलब याद रहेगी फिल्म, और इससे ऐसा कह सकते हैं कि इससे आपकी एक ट्रेनिंग हो गई पहली फिल्म।
0: हाँ हाँ, ब्लैक फ्राइडे ने सारा जो कुछ भी मैं हूँ उस फिल्म के वजह से हूँ।
1: तो गौतम जी, जब ब्लैक फ्राइडे की इतनी बात हो रही है तो उस फिल्म से कोई गाना सुन ले।
0: अरे बंदे है ना, इंडियन ओशन का गाना,
1: बहुत ही प्यारा गाना है, चलिए सुन लेते।

0: तो ये आप लोगों के पास ये पूरा आर्टिस्ट का एक कोई बैंक होता है, डेटाबेस होता है, किस
1: तरह से? जैसे आप और काम करते जाते हैं, आपको नए नए एक्टर्स पता चल जाते हैं, और बस आपकी टीम भी होती है। मैं अपनी टीम को प्लेस देखने, थिएटर देखने भेजता हूँ, अगर मैं खुद नहीं जा पाऊँ। कोशिश करता हूँ जितना हो सका थिएटर देखूँ, शॉर्ट फिल्म्स देखूँ। इंस्टाग्राम पे भी आजकल लोग देखते हैं कोई अच्छा टैलेंट निकल आया क्या। तो मेरी एडवाइस वही होती है जो एक्टर्स जिनके पास अगर अभी कम काम है, कि अपनी विजिबिलिटी बढ़ाएं, प्लेस करें मिलके, प्ले होस्ट करें, कास्टिंग की इंडस्ट्री जो है, कास्टिंग असिस्टेंट्स, कास्टिंग एसोसिएट्स, उनको इनवाइट करें अपने प्ले के लिए, या शॉर्ट फिल्म बनाएं, सबको भेजें, 100 जन को भेजो, शायद 4 जन जो सही हो गए उनके पास पहुंच गया तो वो आपको बुलाएंगे। अगर आपके पास कोई ऐसी पीस है जो आपको बहुत अफेक्ट की, कोई राइटिंग जो आपने थिएटर करते हुए कुछ आपको बहुत प्रभावित हुआ, तो वो इंस्टाग्राम पे परफॉर्म कर लो। जस्ट होप कि कोई सही इंसान कहीं पे भी हो, वो आपको देख ले और आपको कांटेक्ट करे, शायद शॉर्ट फिल्म के लिए, प्ले के लिए, या जिसके लिए भी। यही कहता हूँ कि एक्टर्स को, कि अपने आप को विजिबल रखो
0: और अपने आप परफॉर्म करते रहे, अपना काम तो करते जाइए, मतलब अपनी तरफ से कोशिश आप जारी रखिए,
1: कोशिश जारी रखिए। अगर आप अच्छे एक्टर हो, आप नोटिस हो जाओगे और आपको बुलाया जाएगा ऑडिशन के लिए।
0: तो इंस्टाग्राम में जो फॉलोवर्स किसी किसी ज्यादा होते हैं, तो ये भी कुछ असर करता है कास्टिंग के लिए?
1: ये मतलब प्रेशर आ जाता है प्रोड्यूसर से, क्योंकि प्रोड्यूसर्स को लगता है कि जिसके पास ज्यादा फॉलोवर है उससे उनको ऑडियंस ज्यादा मिल जाएगी, TRPs या जो भी मेजर ऑफ सक्सेस है वो ज्यादा मिल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि ऐसा है कि वो अगर वो इन्फ्लुएंसर को लोग अपने फोन पे देख रहे हैं, तो वो शायद उनमें थिएटर में देखने के लिए 500 रुपया तो शायद नहीं खर्च करें। उन्हें जब फोन पे फ्री पे मिल रहा है सब कुछ, और अगर वो इन्फ्लुएंसर वो ही कर रहा है, मैं नहीं कहता कि सब इन्फ्लुएंसर वैसे, बट अ मेजोरिटी ऑफ देम विल हैव टू वर्क ऑन द क्राफ्ट। उन्हें अपने कैरेक्टर जो इंस्टाग्राम पे प्ले करते हैं, उसके बाहर के कैरेक्टर प्ले करने के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अदरवाइज उन्हें सिर्फ वही काम मिलेगा, जो वही रोल जो वो इंस्टाग्राम पे प्ले कर रहे हैं, वही किरदार उनको

0: फिल्म में मिलेगा, तो वो एक दो बार मिलेगा, उसके बाद नॉवेल्टी वेयर ऑफ हो जाएगी, क्योंकि वो फोन पे ही फ्री पे मिल रहा है आपको।
1: तो ये बताइए कि अभी कौन सा गीत हम सुन ले आपकी पसंद से।
0: हाँ, वो डेली सिक्स का रहमान का रहना तू,
1: बहुत ही अच्छा गाना, हम सुन लेते हैं आपकी पसंद का।

0: गौतम जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि पहले जैसे फिल्मों में कास्टिंग होती थी वो कुछ अलग तरह से होती होगी, और अभी जैसे अब सोशल मीडिया का इतना दौर है तो कुछ लोग अपने यूट्यूब चैनल्स भी हैं लोगों के फिल्मों में आने से पहले भी, तो इस तरह से भी कुछ कास्टिंग में चेंजेस आए हैं?
1: मैंने शुरुआत की 2003 में ब्लैक फ्राइडे के साथ। उसके पहले 90 सिनेमा था जिसमें सिनेमा ऐसा बन नहीं रहा था। एक बैंडिट क्वीन छोड़ दो आप, जो तिग्मांशु धूलिया जो पहले आई थिंक हिंदी सिनेमा के कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो एक ही फिल्म थी आई थिंक तब की जो इतनी रियल थी। बट अदरवाइज जो हिंदी कमर्शियल सिनेमा बन रहा था 90s में 80s में, उसमें वही होता था कि अनुपम खेर फादर, फरीदा जलाल मदर, ये पर्सन दोस्त, और फिक्स्ड एक्टर्स होते थे। बाद में जब अनुराग और विशाल जी ने मकबूल बनाई या मकड़ी बनाई, जब हनी त्रेहान जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे, वो टाइम था जब इन डायरेक्टर्स को रियलिस्टिक कास्टिंग चाहिए थी। तब थिएटर का इम्पोर्टेंस सबको लगा कि थिएटर के एक्टर करो, NSD के एक्टर्स ढूंढो, हमें रियलिज्म चाहिए, जितना रियलिस्टिक परफॉर्मेंस है जी। तो वो 2001-2003 से वो चलता आ रहा है, टिल कोविड वही चल रहा था। अब कोविड के बाद क्या हुआ है कि स्टूडियो के ऑडिशंस कम हो गए, तो अब सेल्फ टेस्ट बहुत होते हैं, तो अब लोगों को आदत भी पड़ गई है कास्टिंग डायरेक्टर्स को कि सीन भेज दो, एक्टर वहीं अपने घर पे रिकॉर्ड करके भेज दे।
0: मतलब अब स्टूडियो में वो नहीं आते, वो खुद ही अपनी,
1: वो पता नहीं क्यों, बट मैं अभी भी प्रेफर करता हूं कि जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तो एक स्टूडियो हायर करो, एक्टर को बुलाओ और ऑडिशन करो। हाँ, अगर मुंबई के बाहर है वो एक्टर तो फिर आपको सेल्फ टेस्ट ही करना पड़ेगा। बट कोविड के पीक में ये शुरू हुआ, जूम टेस्ट, सेल्फ टेस्ट, तो आजकल एक्टर्स को उसमें भी प्रिपेयर करना चाहिए कि एक अच्छा सेल्फ टेस्ट कैसे दे, उनको फिगर आउट करना चाहिए। यूट्यूब वीडियोज है उसके बारे में, वो शायद देखना चाहिए। और बाकी कास्टिंग असिस्टेंट्स हो या एसोसिएट्स हो या कास्टिंग डायरेक्टर्स हो, क्योंकि हम सब सोशल मीडिया पे हैं, तो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी इंटरेस्टिंग दिख जाता है तो अभी उनका एटलीस्ट आपको एक कांटेक्ट भी है। इंस्टाग्राम में आपको उनका वर्क ईमेल भी मिल जाता है, तो हम रीच आउट भी करते हैं अगर कोई बहुत इंटरेस्टिंग और यूनिक कैरेक्टर मिल गया हमको कि हाँ ये ऐसा कैरेक्टर बैठता है हमारी फिल्म में, तो हम उसे रीच आउट करते हैं और उन्हें कास्ट करते हैं। इसीलिए मैं आपको पहले भी कह रहा था कि मैं एक्टर्स को बोलता हूँ जिनके पास काम नहीं है फिलहाल, विजिबिलिटी बढ़ाओ, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करिए,
0: अपने रील्स या ऐसे अपने काम आगे
1: रील्स, ह्यूमर, कुछ भी जो भी आपको पर्सनली बहुत अफेक्ट करता है वो पोस्ट करिए। हर एक कोई कॉमेडी रील्स नहीं कर सकता। जो आपकी स्पेशल

0: है जो आपका कोर स्ट्रेंथ है वो पोस्ट करिए, कहीं ना कहीं किसको वो अफेक्ट होगा और वो आपको कांटेक्ट करेगा।
1: जब आप किसी को बुलाते हैं ऑडिशन के लिए, आप बुलाना प्रेफर करते हैं ज्यादा और वो खुद अगर कोई वीडियो बना के भेजते हैं, दोनों में क्या फर्क आ सकता है?
0: देखो, ऑडिशन रूम में कोई कैमरा पकड़ के बैठा है, एक असिस्टेंट आपको क्यूज दे रहा है, दूसरा परफॉर्मेंस देख रहा है, चार पांच जन की टीम होती है एक प्रोजेक्ट पे, तो एक पूरी टीम होती है जिसमें हर एक का एक अलग काम होता है। वो कास्टिंग एसोसिएट या कास्टिंग डायरेक्टर होगा, वो आपको गाइड करेगा, ऐसे नहीं ऐसे, करेक्ट करेगा आपको। लाइव उधर आपका बेटरमेंट होता जाएगा, घर पे आप सेल्फ टेस्ट करोगे, आप भेजोगे, फिर जब किसको टाइम होगा देखने का तब वो देगा, फिर वो मैसेज पे आपको रिप्लाई करेगा, इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, फिर आप वापस करोगे। अगर आपको कोई क्यू देने वाला दोस्त नहीं मिला घर पे, तो आपके मम्मी पापा क्यूज देंगे जो बहुत खराब क्यूज होंगे मोस्टली, तो प्रॉब्लम्स होते हैं सेल्फ टेस्ट में। बट मैंने ऐसे भी देखा कोई दो तीन ऑडिशन सेल्फ टेस्ट इतने बढ़िया है क्यों, एक्टर्स बहुत स्ट्रांग थे।
1: बेसिकली अगर वो आपके सामने आते हैं तो आप उन्हें उनके कैरेक्टर के बारे में भी समझा सकते हैं और
0: बहुत इजी हो जाता है स्टूडियो में, बहुत इजी हो जाता है। सेल्फ टेस्ट में क्या है, एक्टर को सब कुछ इंतजाम करना पड़ेगा, जो स्टूडियो में होता है वो आपको घर में करना पड़ेगा। आपको चार दोस्त लगेंगे, एक दोस्त आपको रिकॉर्ड करेगा, दूसरा दोस्त आपको क्यूज देगा, तीसरा आपको बताएगा ऐसे नहीं ऐसे कर, ये स्टूडियो में बढ़िया हो जाता है।
1: और वो भी निर्भर करता है कि आपके दोस्त कितना ज्यादा जुड़े हुए उस क्राफ्ट से।
0: अगर वो खुद एक्टर्स है तो शायद कुछ ठीक ठाक निकल जाएगा।
1: और जैसा कि आप बोले थे कि सोशल मीडिया पर भी रीच आउट करते हैं आप लोग, तो फिर बहुत से लोग है, वही बात है कि तो किस तरह से पहचाने कि जो हमें बोल रहे हैं कि आपको कास्ट किया जा सकता है या आपने टेप भेजी इस तरह से बोल रहे हैं अगर कोई, तो कितने जेन्युइन है, कितने रियल हमें वो चीज मिल रही है?
0: देखो, सोशल मीडिया में हम रीच आउट करते हैं जब हमें कोई प्रोफाइल ऐसी दिखती है जो हमारे स्क्रिप्ट में बैठ रहा हो, कोई ह्यूमरस कैरेक्टर हो या कुछ हो, वो वहां हमको बाय चांस दिख गया और वो वही है जो कैरेक्टर है, अगर वो इज वेरी और ही और शी इज वेरी क्लोज टू दैट कैरेक्टर, देन वी रीच आउट कि हाँ भाई हमारे पास ये है, आप अब स्टूडियो में आके ये परफॉर्म कीजिए, ये हमारे सीन पे करिए। वो अब वो अच्छी तरह कर पाए नहीं कर पाए वो एक अलग बात है,
1: पर जानना हम ये चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी आम इंसान को जो कि रोज रील बनाता है उसका कोई एक कैरेक्टर आपको अपने कैरेक्टर के इर्द गिर्द लग रहा है, तो आपने उसे रीच आउट किया, लेकिन आप तो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि नहीं है, जैसे कि आपने कहा कि वो पता करना पड़ता है कि कौन रियल है कौन नहीं है, तो वो किस तरह से पता कर सकते हैं, ऐसा कोई ऑप्शन हो?
0: नहीं, उनको तो फिर पता करना पड़ेगा। एक तो आजकल सब कास्टिंग डायरेक्टर्स के इंस्टाग्राम पेजेस है, आई थिंक आप इंडियन कास्टिंग डायरेक्टर्स या हिंदी फिल्म कास्टिंग डायरेक्टर टाइप करोगे तो आपको 5-10 नाम तो आ ही जाएंगे, तो आज जो भी सोशल मीडिया पे है आपको पता ही चलेगा, इंस्टाग्राम में आपको सब सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप कितने कास्टिंग डायरेक्टर्स है कौन है सब पता चलता है, अभी सब क्रेडिट्स देखते हैं। अगर आप फिल्म की क्रेडिट देखोगे कास्टिंग में, कोई जो कास्टिंग डायरेक्टर का नाम है वो नाम टाइप कर लोगे उसका इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा, फिर आप देखिए उसके कोई असिस्टेंट्स टीम वाले कौन है या उसे मैसेज भेजिए, देखिए रीच आउट करिए। अगर आप बंबई में हैं तो आप ट्रेंड एक्टर हो तो आपको इवेंचुअली पता चलेगा कि मैक्सिमम काम आरामनगर वर्सोवा में हो रहा है
1: जी।
0: तो वहां पहुंच जाइए, वहां पे पता करिए कौन कौन कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, उनके ऑफिसेज में जाइए, दरवाजा खटखटाइए, इंट्रोडक्शन के लिए बोलिए कि मुझे इंट्रोडक्शन देना है। कोई कोई कास्टिंग डायरेक्टर्स एडवर्टाइज करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि इस दिन ये बजे से ये बजे तक हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो 200-200 एक्टर्स पहुंच जाते हैं इंट्रोडक्शन देने, तो उनके डेटाबेस में आ जाते हैं,
1: तो जब भी आपको जरूरत हो आप उसमें से किसी को चूज कर सकते हैं,
0: चूज करते बुला सकते हैं फॉरेन ऑडिशन।
1: अगर आपकी फिल्मों की बात करें तो कुछ फिल्मों में आपने बिल्कुल ही अलग तरह की कास्टिंग की है जो कभी पहले उस तरह से नजर नहीं आए, जैसे पटाखा की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो भी सब कास्ट है उनको कभी हमने उस तरह से कभी देखा ही नहीं, तो ये कैसे आप सोचते हैं कि वो किरदार में फिट बैठेंगे वो एक्टर जिन्होंने कभी वैसा नहीं किया?
0: आई थिंक वो ही है, एक्टर का स्ट्रेंथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कैपेबिलिटी अगर आपको पता हो कि एक अच्छा एक्टर है तो इसको हम टेस्ट करते हैं बेसिकली। हमने बहुत लोगों को वो दोनों लड़कियों के लिए टेस्ट किया था और फाइनली सानिया और राधिका हुई, और वो दोनों बहुत ही अच्छी एक्टर्स हैं। इवन दो दोनों दिल्ली की हैं, बट फिर भी उन्होंने वो एक्सेंट और वो राजस्थानी बोली बहुत बढ़िया पकड़ी उन्होंने। उनका वर्कशॉप भी हुआ था, बट जिन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी थी वो उनके घर पे रहे थे दोनों,
1: अपने किरदार को पकड़ने के अच्छी तरह
0: लैंग्वेज पे ट्रेन कर रहे थे। तो एक अच्छा एक्टर होता है वो फिर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है इनटू द कैरेक्टर।
1: वैसे सांड की आंख की अगर हम बात करें तो इसमें भी जब किरदार चुना तो उसमें भी आपने ऐसा पहले से ही नहीं सोचा था कि जब वो बुजुर्ग हो जाएंगी तो दूसरे किरदार लेंगे?
0: नहीं, भूमि और तापसी की कास्टिंग हो चुकी

0: जब वो दोनों कास्ट हुए तो फिल्म बनी. आई थिंक डायरेक्टर वांटेड कि एक्चुअली सीनियर सिटीजन्स को कास्ट करे, बट रियलिटी ऑफ फिल्म मेकिंग ऑफ फंडिंग इज वेरी डिफरेंट. तो आई थिंक दे वर नॉट गेटिंग फंड्स टू विद अ कास्ट ऑफ सीनियर सिटीजन्स, हेंस दिस वाज डन.
1: कभी ऐसा होता है कि आपने किसी को चूज किया हो, आपको लगा हो कि ये उस किरदार में ज्यादा अच्छा बैठेगा, फिट होगा, लेकिन फिर आगे जाके उन्हें ऐसा लगा हो निर्माता निर्देशकों की हमें ये नहीं चाहिए?
0: एक बार हुआ था एक फिल्म में, अब मैं फिल्म नहीं बोलूंगा बट बताऊंगा नहीं कौन सी फिल्म है, मैं अच्छा दोस्त है वो, बट उसको मैंने प्ले में देखा था और एक रिहर्सल में देखा था और उसका ऑडिशन इतना इनक्रेडिबल था कि मैंने अनुराग को दिखाया और अनुराग बोला हाँ करते हैं इसको कास्ट. लेकिन उसने कभी कैमरा पे काम किया नहीं था, सिर्फ थिएटर किया था, वो भी कॉलेज में. और जब वो उसका पहला दिन शूट का था, और ये मैं बात कर रहा हूँ 2007-08 की बात कर रहा हूँ, जब बड़े कैमरास होते थे, लाइट्स भी बहुत बड़ी होती थी, अब लाइटें भी छोटी हो गई है कंपेरेटिवली, उतना साइज नहीं होता है लाइट्स का. तो अगर आपको HMI लाइट्स लगाओ और 50 लोग आपको देख रहे हैं, वो फ्रीज हो गया था, वो परफॉर्म नहीं कर पाया था पहले दिन. फिर बाद में उसे कॉन्फिडेंस आया, उसको ये किया और वो उसने किया, बट नॉट टू हिज एबिलिटी. फिर उसने अपने आप पे काम किया और फिर वो अच्छे काम करने लगा, उसने काफी फिल्में की बाद में. लेकिन ये हुआ था, उसके बाद मेरा लेसन था कि भाई सिर्फ थिएटर में बहुत बढ़िया हो बट लेकिन अगर कैमरा का आइडिया नहीं है
1: जी,
0: तो उसे पहले थोड़ी ट्रेनिंग लगेगी. ऐसे रॉक लो मत, या जब तक आपके पास ऑप्शन नहीं, बट ऐसे भी है जिन्होंने कभी थिएटर नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, वो लोग छा गए कैमरा पे
1: कोई बिना ट्रेनिंग के. वो
0: बिना दो बच्चे थे, स्लम के बच्चे थे, उनको अनुराग की एक शॉर्ट फिल्म के लिए कास्ट किया था, सलाम बालक ट्रस्ट जो मीरा नायर ने शुरू किया था, तो वहाँ के दो बच्चे कास्ट किए थे, उसमें से एक तो इतना नेचुरल था जिसने कुछ नहीं किया पहले भी, तो वो भी हो सकता,
1: तो वो आप कह सकते गॉड गिफ्टेड है.
0: हाँ वो गिफ्टेड था, वो कॉन्फिडेंट था, नेचुरल था, बढ़िया था वो.
1: तो आप सेट पे भी मौजूद रहते हैं या आपका काम सेट के बाहर का ही रहता है?
0: यूजुअली जरूरत नहीं पड़ती है, बट जहाँ जब डायरेक्टर्स पसंदीदा डायरेक्टर्स हैं या जब ज्यादा रिलेशन है तो मैं जाता हूँ सेट पे जाता.
1: बट आपका सपना तो सेट में ही रहने का है, हालांकि जैसे आपने बताया.
0: हाँ मेरा सपना तो डायरेक्ट करना ही है. अब मैं एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, पहली दो स्क्रिप्ट्स बना नहीं पाया, अब एक नई स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ, होपफुली वो बन जाए.
1: तो आप अपनी स्क्रिप्ट पे काम करें तो आप क्या पहले से किसी एक्टर को ऐसा मन में सोच के ही बना रहे हैं या आप उसे बाद में?
0: पहले स्क्रिप्ट तो कंप्लीट करूंगा फिर कास्टिंग पे आऊंगा.
1: तो ये राइटिंग वाला पक्ष कब से आपका सामने आया? आपने डायरेक्शन तो आपने कहा.
0: हाँ वो जब मैंने 5 साल के लिए बीच में कास्टिंग छोड़ दी थी.
1: अच्छा.
0: तो घनचक्कर थी 2013 में मैंने कास्ट की थी, उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट रोक ही दिया था. फिर मैंने एक स्क्रिप्ट पे काम किया जो नहीं बन पाई, फिर मैंने दूसरी स्क्रिप्ट डेवलप की राइटर्स के साथ, फिर वो भी नहीं बन पाई, फिर एक बुरा दौर रहा मेरी लाइफ में, फिर उधर से कैसे तैसे निकल आया मैं और फिर मैंने फिर से कास्टिंग शुरू की. मैंने बोला कि चलो फिर से कास्टिंग शुरू करते हैं, फिल्म कभी ना कभी तो बना लूंगा.
1: तो इस जो ये दौर रहा उसके नाम कोई गीत बताना चाहेंगे?
0: जिंदगी कैसी है बहेली.
1: ठीक है, तो सुनते हैं आपकी पसंद पर ये गाना.

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: तो गौतम जी, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए, इतनी सारी बातें आपने हमसे की हैं, आखिर में अगर आप कोई संदेश देना चाहें हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको, कुछ फिल्म इंडस्ट्री में आने चाहते होंगे या कोई कास्टिंग डायरेक्टर बनना चाहते होंगे, तो उनके लिए कोई एक संदेश अगर आप देना चाहें।
2: वही जो मैंने एक्ट्रेस के लिए कहा कि आप ट्रेन करके आइए। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए फिल्मों की किताब, पढ़िए फिल्म मेकिंग की किताब, पढ़िए एक्टिंग की किताब, पढ़िए कास्टिंग डायरेक्टर जो हॉलीवुड के फेमस है उनके बारे में पढ़िए, उनके प्रोसेस। आज के टाइम में इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, तो जितना आप अपने आप को एजुकेट करके आएंगे उतना बेटर होगा आपको जब आप बॉम्बे आए। बट हर एक जो भी इंसान है जो फिल्म इंडस्ट्री में जुड़ना चाहता है उसको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा वो वाली फील्ड में। अगर आप एडिटर बनना चाहते तो यूट्यूब पे सीखिए कोर्स, खुद प्रैक्टिस करिए, इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए। FTI प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करिए, कुछ भी करिए, ट्रेन करके आइए। दैट्स माय बिगेस्ट एडवाइस।
1: बस बिल्कुल, मतलब तैयार होके ही आइए।
2: अनप्रिपेयर्ड मत आइए, फिर आपको एक्सप्लॉइट किया जाएगा।
1: गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो कास्टिंग से रिलेटेड बातें थी, जो हमें पता ही नहीं थी कि किस तरह से चुना जाता है एक किरदार को, बहुत ही अच्छी तरह से आपने विस्तार में हमें बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की।
2: जी, बहुत मजा आया आपके साथ बात करने का। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए।
1: धन्यवाद।
3: बॉम्बे टॉकीज में अभी आप सुन रहे थे कास्टिंग डायरेक्टर गौतम कृष्ण चंदानी से नेहा शर्मा की बातचीत। संपादन सहयोग प्रभा भटनागर का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। और अब

0: सुपर है डुपर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
3: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
4: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
3: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
4: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
3: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।

की मासूम चाहतों में क्या कुछ किए जाते हैं हम, लिखते हैं तेरा नाम कभी कभी छुपाते हैं हम। दिल की बातों को कह पाना कहाँ आसान रहा, लिखने लगूं तो शब्द भी पढ़ते हैं कम। जो कहना था तुमसे मिलकर हमें, वो जज्बात कागज में कहाँ समाएंगे। कभी मिलो जो ख्वाबों में तुम, हर वो बात तुम्हें बताएंगे।

मिली जो प्यार की पहली पाती, हुए मेरे पैर हवा अब। कभी उड़ती हूँ यहाँ, कभी उड़ती हूँ वहाँ, कदमों ने मेरे छू लिया जैसे आसमां। न होश खुद का न खबर जमाने की, कहने लगी सखियाँ मेरी हुई तो उस दीवाने की। इश्क मोहब्बत प्रेम की पींगे खेलने लगी हैं दिल से, अब राज ये छुपाना मुश्किल हुआ है इस दिल से।

आप सुन रहे हैं छाया गीत। भेज तो दिया दिल का पैगाम उन्हें, न जाने क्या लिखा इस दिले नादान ने। अब घबराते हैं अरमान, डरते हैं खुदा जान उन्हें। प्रेम में नाराजगी न मिले कहीं अंजाम हमें। ये प्रेम की पाती लिखना कहाँ आसान रहा, जब तक न मिले जवाब उनका दिल रहे परेशान।

आया है खत तो देंगे जवाब भी हम, कैसे कह दें किसी अनजान से अपने दिल की ये बात हम। कहनी तो थी उनसे लाखों बातें दिल की, मगर किसी और से कहते वो बातें झुकती हैं शर्म से नजर। लिखा था मेरे सांवरिया ने, जानते हैं वो मेरे दिल की हर बात, लिखा सलाम छुपाए हैं उसमें ही दिल के सारे जज्बात।

लिख तो दिया था सलाम खत में छुपा कर दिल के जज्बात, वो क्या समझेंगे मेरे विरह की ये रात, क्या जान जाएंगे मेरी उलझी लटों

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम तराने नए पुराने प्रस्तुत होगा बस थोड़ी ही देर के बाद।

0: ली धड़कन।
1: तराने नए पुराने।
0: स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम तराने नए पुराने में। मैं हूं विधि प्रवीण जैन। नमस्कार।

हम सुन रहे थे ये गीत परिणीता फिल्म से, जिसे गाया सुनिधि चौहान ने। स्वानंद किरकिरे इसके गीतकार हैं और शांतनु मोशा ने इसे संगीत दिया है।

0: हम सुन रहे थे सोनू निगम की आवाज़ में यह गीत, जिसके गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार हैं अनु मलिक और फिल्म का नाम है जाने मन। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: हम सब ICU यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
2: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
1: ICU में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
2: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
1: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं खूबसूरत फिल्म से यह गीत। आशा भोसले, अशोक कुमार की आवाजें हैं, गुलजार के हैं बोल और संगीत है RD वर्मन का।

आज कार्यक्रम तराने नए पुराने में हम याद कर रहे हैं अभिनेत्री रेखा को भी। और चलिए सुनते हैं अगला गीत फिल्म उमराव जान से। आशा भोसले की आवाज़ है, गीतकार हैं शहरयार और संगीतकार हैं खयाम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है तराने नए पुराने। आज है अभिनेत्री रेखा का जन्मदिवस, तो आइए सुनते हैं उन्हीं पर फिल्माई गई फिल्म सिलसिला का यह गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं जावेद अख्तर और संगीत दिया है शिवहरी ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। शाम के 6 बजने वाले हैं, अब हम सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। नई दिल्ली में आज जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और कड़े इंतजाम किए हैं। नई दिल्ली में कई जांच चौकियों पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस उपायुक्त कुमार अभिषेक ने बताया कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक व्यवस्था की गई है और सुरक्षा के लिए एहतियाती जाँच की जा रही है। यातायात पुलिस के उपायुक्त विकास कुमार ने कहा कि नई दिल्ली क्षेत्र में यातायात नियंत्रण के कारण वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों से निकाला जा रहा है। दिल्ली हवाई अड्डा प्रशासन ने यात्रियों के लिए परामर्श जारी कर यात्रा की योजना पहले से बनाने का आग्रह किया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारे पर ये कर रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन कर लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
2: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वाले लोगों की कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सरकार ने पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट से फैलाए जा रहे गुमराह करने वाले वीडियो को गलत बताया है। इस वीडियो में झूठा दावा किया गया था कि दिल्ली पुलिस ने राजधानी में विरोध प्रदर्शन के दौरान गोली चलाई है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि ये वीडियो जंतर मंतर पर हो रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़ा नहीं है। ये फुटेज पुराना है और इसे गुमराह करने वाले दावे के साथ साझा किया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली के दयालपुर क्षेत्र में दंगों के मामले में दंगे भड़काने का दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए मामले की अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में हुसैन और 4 अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आधुनिक युद्ध और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था में हो रहे बड़े बदलावों के बीच भारत अपने पड़ोसी देशों और दुनिया भर के घटनाक्रम और उनके रणनीतिक प्रभाव पर बारीकी से नजर रख रहा है। जोधपुर में उन्होंने कहा कि स्थापित विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, जबकि उभरती वैश्विक व्यवस्था का स्वरूप अनिश्चित बना हुआ है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा है कि परिवहन और पुलिस विभाग के विशेष प्रयासों और कार्य योजनाओं से राज्य में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने बताया कि पीएम राहत योजना के अंतर्गत सड़क हादसे के शिकार लोगों की मदद करने वालों को 25,000 रुपये तक का पुरस्कार दिया जाता है। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी श्री विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ थे। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है। मौसम विभाग ने बिहार, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरलम और माहे में कल तक गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण कल वाराणसी में नमोघाट से संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित किया जाएगा। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इसमें शामिल होंगे। ये पहल नशा मुक्त युवा विकसित भारत के विषय पर केंद्रित है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम तराने नए पुराने में।

हम सुन रहे थे ये गीत घर फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं गुलजार और संगीतकार हैं आरडी वर्मन। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने में अगला गीत, जो कि है फिल्म हम दिल दे चुके सनम से। हरिहरन, कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाज़ है, महबूब के हैं बोल।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है तराने नए पुराने।

0: हम सुन रहे थे ये गीत कहो ना प्यार है फिल्म से, लकी अली और राम्या की आवाजों में। इब्राहिम अश्क ने इसे लिखा और संगीतबद्ध किया राजेश रोशन ने। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।

देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है तराने नए पुराने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने में मिस्टर नटवर लाल फिल्म का यह गीत। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

0: और इसी के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम तराने नए पुराने।
1: तराने

रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज है दिनांक 10 अक्टूबर 2026, दिन है शनिवार। आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी झरोका के अंतर्गत। हम सुनेंगे शाम 6:45 पर संगीत सरिता, श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, इसका 10वां भाग आज हम सुनेंगे। आमंत्रित कलाकार, गायक एवं संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन, संपादन सहयोग संवादिका है ममता सिंह और प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। 7 बजे का समय होगा विशेष जयमाला का, जो कि केंद्रित होगी, जो कि जिसमें साथ देंगी संगीतकार उषा खन्ना। शाम 7:45 पर इंद्रधनुष, रात 8 बजे सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल कंचन, इसका हम 2वां भाग आज सुन सकेंगे। सुनो कहानी, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी, वाचन ममता सिंह, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की। आठ बजकर 15 मिनट पर सुनेंगे चित्रलोक, 8:45 पर समाचार संध्या और 9 बजे सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 9:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम आज के

फनकार जो कि केंद्रित होगा अभिनेत्री रेखा पर। रात 10 बजे का समय होगा छाया गीत का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम ढलती जाए रात और रात 11 बजे से सुनेंगे मैटनी शो। चलिए चलते हैं झरोखा के अगली प्रस्तुति की तरफ, जिसमें हम सुनेंगे कल यानी 11 अक्टूबर 2026 दिन रविवार को प्रस्तुत होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी। 6:05 का समय होगा वंदनवार का और 6:35 पर सुनेंगे श्री रामचरितमानस का 338वां भाग। सुबह 6:45 पर एवं रात्रि में 6:45 पर सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, इसका 11वां भाग हम कल सुन सकेंगे। आमंत्रित कलाकार गायक एवं संगीतकार पद्मश्री शेखर सेन, संवादिका ममता सिंह और प्रस्तुति अनुषी पाठक की। 7 बजे का समय होगा भूले बिसरे गीत का और 7:30 पर सुनेंगे हम हैं राही प्यार के। 8 बजे का समय होगा समाचार प्रभात का। 8:15 पर सुनेंगे त्रिवेणी जिसकी प्रस्तुत करता है अनुषी पाठक। 8:30 पर सुनेंगे चित्रलोक सुबह के 9:30 एवं रात्रि के 9:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम आज के फनकार जो कि केंद्रित होगा अभिनेता अमिताभ बच्चन पर, प्रस्तुतिकर्ता शकील बख्शी। रात 10 बजे का समय होगा पिटारे का और सुनेंगे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज, गौतम कृष्ण चंदानी कास्टिंग डायरेक्टर से नेहा शर्मा की बातचीत, प्रस्तुति तेजश्री कामले। सुबह 11 बजे सुनेंगे विविधा सृजन भारती काव्य तरंग, हिंदी पखवाड़े पर विशेष कवि गोष्ठी, प्रतिभागी सुभाष कावरा देमणि पांडे आशाकरण शर्मा और दमयंती दीपा। 12:05 का समय होगा यादों की महफिल का और 1 बजे सुनेंगे आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। त्रिवेणी का 2:15 पर सुनेंगे समाचार और 2:30 पर होंगे सदाबहार नगमे। 3 बजे मनचाहे गीत और 3:30 पर सुनेंगे कार्यक्रम नाट्य तरंग प्लास्टिक की घास, इसका 2रा भाग हम कल सुन सकेंगे। लेखक सुरेंद्र गुलाटी, निर्देशक दीनानाथ। 4 बजे का समय होगा उजाले उनकी यादों के, संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का 4था भाग, प्रस्तुति अनुषी पाठक। 5 बजे सुनेंगे छाया गीत, 5:30 पर तराने नए पुराने, शाम 6:35 का समय होगा संध्या रंजन का, 6:45 पर सुनेंगे संगीत सरिता और 7 बजे होगी विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा, प्रस्तुति तेजश्री कामले की, प्रस्तुति होगी महावीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजित राय पर।

इसके बाद सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल झलकी हमारा क्या होगा चित्रलोक रात 8:15 पर, रात 10 बजे छाया गीत और 10:30 पर ढलती जाए रात, उसके बाद होगी विविधा।

हम सुन रहे हैं कार्यक्रम संध्या रंजन और हम सुन रहे थे ये भजन हम दोनों फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं साहिर और संगीतकार हैं जयदेव।

हम सुन रहे थे ये गीत बहजू बावरा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल और संगीत दिया नौशाद ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम संध्या रंजन में अगला गीत, जो कि है फिल्म सीमा से। मन्ना डे की आवाज है, शैलेंद्र के बोल हैं और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

0: श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार, संगीत सरिता की अगली कड़ी के साथ हम फिर उपस्थित हैं। शेखर सेन जैसे महान गायक, साधक, संगीतकार हमारे साथ मौजूद हैं विविध भारती के स्टूडियो में। शेखर दादा, एक बार फिर से आपका स्वागत है, नमस्कार।
2: नमस्कार, और सभी श्रोता वृंद को हृदय से प्रणाम कर रहा हूं। और आज मैं चाह रहा हूं एक अद्भुत रचना के साथ आज की इस कड़ी की शुरुआत करना।
1: जी,
2: ये कालखंड था 1961 का।
1: जी,
2: और उस समय भारतवर्ष के लिए एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी कि हमने चीन से अपना युद्ध हारा था। और मैं ये मानता हूं कि जब भी कोई अतीव दुख हो, बहुत अधिक दुख जिसका कोई उपचार न हो,
1: जी जी,
2: तो उसमें कहीं पर कोई संगीत, कोई गीत, कोई प्रार्थना ही एक फाहे की तरह उसको धीरे से सहलाती है, ताकि हम अपना दर्द भूल सकें।
1: बिल्कुल, औषधि का काम करती
2: बिल्कुल
1: है।
2: और इसी समय जो फिल्म एक आई थी, उस फिल्म का एक गीत आपको सुना रहा हूं, जिसमें बहुत ही विद्वान गुणी संगीतकार जयदेव जी ने संगीत दिया था।
1: जी जी,
2: और गाया था लता मंगेशकर जी ने। आप जब ये रचना सुनेंगे तो आप स्वयं साथ में गाने लगेंगे, लेकिन इस रचना को सुनाने के पहले मेरा एक आग्रह है।
1: जी जी,
2: आप में से जो संगीत के विद्यार्थी हैं वो उसको इस दृष्टि से सुने कि ये शायद उन बहुत ही बिरले गानों में से है जहां स्थाई और अंतरे की धुन एक ही है।
1: जी,
2: लेकिन सा बदल गया है। स्थाई जो है वो सा से है, और वही धुन, वही नोटेशन अगर आप म से गाएं तो वो अंतरा बन जाता है।
1: जी जी,
2: तो मैं आपको पहले गा के सुनाता हूँ, तो आपको रचना याद आ जाएगी।
1: जी,

0: अब मैं स्थाई में अंतरा गा सकता हूँ, अंतरे की धुन में स्थाई गा सकता हूँ।
1: क्या बात,
0: क्योंकि नोटेशन वही है, केवल सा से अगर वो नोटेशन गाया जाए तो स्थाई है, मध्यम से गाया जाए तो अंतरा है।
1: जी।
0: और ऐसी रचना के लिए मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे आदरणीय जयदेव जी के उस महान प्रतिभावान संगीतकार की प्रतिभा को नमन करें, और लता जी ने इसको जिस ढंग से गाया है वो तो खैर अद्वितीय है, अतुलनीय है।
1: जी।
0: मैं चाहूंगा श्रोता आनंद लें, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर।

0: दोनों फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर के स्वर में हमारे श्रोता सुन रहे थे। शेखर दादा, अब इस गाने के बाद आप हमारे श्रोताओं को क्या सुनवाएंगे?
1: मैं अभी तक तो आपको शब्द सुना रहा था, स्वर सुना रहा था
0: जी।
1: लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको शब्द सुनाऊं।
0: जी जी जी,
1: क्या? और 600 वर्ष पहले सिख पंथ के जो प्रवर्तक थे आदरणीय गुरु नानक देव जी, उन्होंने एक विलक्षण परंपरा को जन्म दिया था। उस कालखंड में अगर आप देखें तो उत्तर भारत में महाप्रभु वल्लभाचार्य जी ने संगीत के माध्यम से उपासना की पद्धति शुरू की, जो हमारे यहाँ हवेली संगीत के नाम से प्रसिद्ध
0: जी
1: है
0: जी।
1: और पूर्व में देखें तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन गा रहे थे और गवा रहे थे, पर पंजाब में गुरु नानक देव जी, जो कि बहुत ही श्रेष्ठ कवि भी थे, उन्होंने सिख पंथ की स्थापना की। और उन्होंने इसको कहा कि केवल मेरे या मेरे शिष्यों के या मेरी परंपरा को मानने वाले ही नहीं
0: जी जी,
1: बल्कि अन्य संतों की रचनाओं को भी हम संकलित करें
0: जी।
1: और एक गुरु ग्रंथ साहब के रूप में उन्होंने कहा कि ये जो ग्रंथ है, ग्रंथ साहब, वही प्रकाश स्तंभ की तरह सिख संप्रदाय को दिशा निर्देश देता रहेगा। तो ये हमारे यहाँ एक बड़ी अद्भुत परंपरा उन्होंने चालू की। और अगर आप कभी देखने का आपको अवसर मिले गुरु ग्रंथ साहब, तो हर एक शब्द के ऊपर
0: जी
1: उसके राग का नाम लिखा हुआ है कि किस राग में उसको गाना है।
0: बहुत बढ़िया जानकारी।
1: तो ये एक बड़ी अद्भुत परंपरा कि संगीत के साथ, प्रार्थना के साथ और आध्यात्मिक शब्दावली के साथ उन्होंने जोड़ा। और उन्होंने कहा कि इसमें जो कुछ भी है वो शब्द है, क्योंकि वो शब्द ब्रह्म है
0: जी। क्या बात।
1: तो उसके बाद जो खालसा पंथ की शुरुआत होती है वो उसके काफी दिनों बाद, वो 1699 में जो

0: दसवें गुरु थे
1: जी जी
0: गुरु गोविंद सिंह जी, तो उन्होंने फिर खालसा पंथ की स्थापना की। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपने ही स्वर में सुना रहा हूं। वैसे तो आपको मिल जाएंगे गुरु ग्रंथ साहब से या शब्द, बहुत अच्छे अच्छे गायक हमारे देश में हैं, पर मैं इस लोभ का संवरण नहीं कर पा रहा हूं कि गुरु नानक देव जी की वाणी गाने का मुझे अवसर
1: मिले। और हम नहीं लोभ संवरण कर पा रहे हैं कि हम बार बार आपसे अनुरोध करते रहे, तो जरूर गाए दादा।
0: ये मेरी माँ की स्वर रचना है। अच्छा। शब्द गुरु नानक देव जी की।
1: जी, अनीता सेन जी।
0: जी।

0: क्या बात है, अद्भुत रचना आपने सुनाई और अद्भुत स्वर में आपने समा बांधा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। अब हमें लगता है कि इस कड़ी को यहीं पर समेटना होगा। श्रोताओं से लेते हैं अनुमति और कहते हैं नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, आज आपने सुनी इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार, गायक, संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन से बातचीत कर रही थी ममता सेन। तबला संगत आशीष विश्वास। तकनीकी सहायक HR पाटले। संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।

फौजी भाइयों, हर कलाकार को किसी न किसी से प्रेरणा जरूर मिलती है। मुझे जिनसे प्रेरणा मिली और अभी भी मिलती है, वो मेरे मन पसंद संगीतकार हैं शंकर जयकिशन। उनके संगीत का मुझ पर बहुत ही प्रभाव पड़ा है। मेरे ख्याल से एक यही संगीतकार हैं जिन्होंने जितनी फिल्मों में म्यूजिक दिया है वो सब हिट म्यूजिक रहे। इनके गाने के साथ इनका जो म्यूजिक होता है, जिसे हम इंटरल्यूड म्यूजिक कहते हैं, वो आम लोग भी गा सकते हैं। जैसे कि उनके गाना है आवारा हूँ, होठों पे सच्चाई रहती है, दोस्त दोस्त ना रहा। इन सब के जो गायक थे वो थे मुकेश साहब। मुकेश जी अपने कलर के, अपने रंग के अलग ही गायक थे। मैं हमेशा उनकी फैन रही हूँ और फैन रहूंगी। मेरे उन्होंने बहुत से गाने गाए थे जो काफी लोकप्रिय भी हुए। उनमें से एक जो मैं गाना आपको सुनाती हूँ वो ये है।

अजी भाइयों, एक दिन मैं गाना कंपोज कर रही थी जिसके बोल थे, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ आप लोगों का ख्याल आया। कितनी सच बात है, आप लोग सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीते, बर्फीली सरहदों पर तपते हुए रेगिस्तान में तैनात अपने देश की, अपनी धरती माता की और हम सब की रक्षा के लिए आप जान की परवाह न करते हुए कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। इंसान तो वही है जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के काम आए। लीजिए सुनिए मन्ना दा ने इस गाने को कितने खूबसूरत अंदाज में गाया है।

0: क्या दिए।
1: विशेष जयमाला कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: सर्वोत्तम क्वालिटी, देव दर्शन धूप, अगरबत्ती, कॉर्न व हवन सामग्री।
1: फौजी भाइयों, आशा भोसले जी यानी मेरी आशा दीदी मुझे बहुत ही प्यार करती हैं। हमारी मुलाकात रिकॉर्डिंग पर तो होती ही रहती है, या फिर कभी टेलीफोन पर और कभी आमने सामने बैठकर। एक दिन मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में पहुंची और दीदी को फोन किया कि आप 11 बजे तक आ जाना। मैंने देखा कि दीदी आज 10 बजे चली आ रही। मैंने उनसे पूछा, दीदी क्या बात है, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? उन्होंने कहा कि तेरा गाना था और मैं आज जरा जल्दी सुबह उठ गई तो तैयार हो गई थी। मैंने सोचा चलो जरा जल्दी पहुंच जाओ और थोड़ी देर गप्पे गप्पे मारेंगे। उन्होंने मेरी तरफ अचानक देखा और कहा कि उषा तू तो कुछ उदास नजर आ रही है, क्या बात है? मैंने कहा, दीदी जरा मूड ठीक नहीं है। क्या बात है मुझे तो बता दीदी, कुछ बात ऐसी है, पता नहीं क्या, ये जो लोग है ना कुछ कह देते हैं तो बहुत बुरा लगता है। अरे लोगों की बातों की तू क्या परवाह करती है? मैंने कहा, नहीं दीदी, लोग बाहर के हो तो अलग बात है, जब अपने कुछ बोलते हैं ना तो बात कुछ अलग ही।

थी। दीदी ने बोला, कमाल करी उषा, तेरा गाना क्या कह रहा है और तू क्या सोच रही है? अरे सुन, बेहतर यही है कि तू अपने गाने पर ध्यान दे और बोलों को सुन। और वाकई फौजी भाइयों, मेरा सचमुच मूड ठीक हो गया। जब, जब, अपने

फौजी भाइयों, एक बहुत बड़े गायक कलाकार के बारे में ये मशहूरत की बहुत मुड़ी है। मेरा इशारा मेरे ख्याल से आप समझेंगे कि मैं उनका नाम बताऊं। हाँ जी हाँ, किशोर कुमार जी की तरफ है, मगर मेरे साथ तो कभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है। वो मेरी रिकॉर्डिंग पर हमेशा समय पर आए हैं, जो कोई भी डेट मांगे, जब कभी भी मांगी डेट, उन्होंने राजी खुशी होकर डेट दी है और मुझे कभी परेशानी नहीं। एक दिन मैं सुबह सुबह किशोरदा के घर पहुंची तो किशोरदा ने मुझे बुलाया ऊपर अपने कमरे में बैठे हुए, कहा कि क्या बात है उषा, आज तुम सुबह सुबह कैसे यहाँ आ गई। मैंने कहा दादा क्या है ना कि गाना है वो, मैं चाहती हूँ आप गाएं, क्योंकि मैंने जो गाना कंपोज किया है वो सिर्फ आपको ध्यान में रख के किया है और ये गाना आप ही अच्छा गा सकते हैं। अरे अच्छा, मैं समझ गया, बजट के मामला तो नहीं है। तो मैंने कहा हाँ दादा, वो कुछ प्रोड्यूसर बेचारा नया है तो और थोड़ा बजट का। अरे कमाल की लड़की है, मूर्ख लड़की, तू इतनी छोटी सी बात के लिए यहाँ तक आई मेरे घर तक, टेलीफोन पर कह दिया होता मैं आ जाता रिकॉर्डिंग पर। एक बात बताओ फौजी भाइयों, किशोर कुमार जी जितने अच्छे गायक हैं उतने अच्छे ही एक्टर हैं, उतने अच्छे ही

0: विशेष जयमाला कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम विशेष जयमाला, फौजी साथियों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना।
1: काम की पूजा करने वाले मेहनत से ना डर।

0: के सीना धरती का हरियाली जो लाते हैं वो इनके हाथ हैं,
1: वो इनके हाथ हैं।
0: जो पर्वतों को काट कर रास्ते बनाते हैं वो इनके हाथ हैं,
1: वो इनके हाथ हैं।
0: आग से जो खेल कर लोहे को मोम बनाते हैं इनके हाथ हैं,
1: इनके हाथ हैं।
0: मिलों में कारखानों में मशीनें जो चलाते हैं इनके हाथ हैं,
1: इनके हाथ हैं।
2: फौजी भाइयों, दक्षिण भारत के एक मशहूर गायक जिन्होंने सबसे पहले बंबई की हिंदी फिल्मों में लोकप्रियता हासिल की, जी हाँ, यशोदा जी के बारे में कहना चाह रही थी। उन्होंने मेरे साथ पहला गाना फिल्म दादा के लिए गाया था, जिसके बोलते दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। एक बार मेरी रिकॉर्डिंग के दिन एक मजेदार किस्सा हुआ। फिल्म का नाम था सादिन बिना स्वागन और मैं अपने म्यूजिशियनों के साथ अंदर थिएटर में रिहर्सल कर रही थी, क्योंकि क्या होता है कि गाने की रिकॉर्डिंग करते वक्त कुछ अपनी घड़ी की तरफ ख्याल ही नहीं रहता। इतने मेरे असिस्टेंट ने कहा कि उषा जी 4 बज गए और यशोदा जी अभी तक आए नहीं है। मैंने कहा अरे कमाल है, ये तो बड़े पंक्चुअल है, अपने टाइम पे आ जाते हैं। मैंने कहा चलो 5-10 मिनट 15 मिनट वेट करते आ जाएंगे। 7 बज गए जी, पता चला कि यशोदा जी अभी तक तो आए नहीं, क्या उनकी खबर ही नहीं लगी कि वो कहाँ है। इतने मैंने देखा कि यशोदा जी कि कोई और है, देखा तो सच में वो भीगे हुए स्टूडियो में दाखिल हुए और आते ही बोले उषा जी आई एम वेरी सॉरी, मैं क्या करूं, मैं अपने घर से 3 घंटे हुए पहले निकला हूं और अभी देखिए पहुंचा हूं। मैंने कहा क्या आप इतने कैसे भीग गए, तो कहने लगे क्या बंदा बैठी रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, आपको बाहर की हालत क्या है क्या पता लगी है, जरा खिड़की खोलकर बाहर तो देखिए। और मैंने खिड़की खोली तो देखा फौजी भाइयों सबकी कारें आधी आधी डूबी पानी में खड़ी हुई थी और बे इंतहा बारिश हो रही थी। शायद यशोदा जी तैर कर ऊपर तक भी पहुंचे थे, क्योंकि मेरे स्टूडियो जरा 5-6 सीढ़ियां चढ़ के आना पड़ता है। फौजी भाई उसके बाद मैं इतनी हंस रही थी, मगर मैंने अपने आप को अपनी हंसी को छुपाते हुए मैं म्यूजिशियन की तरफ चली गई और इसके बाद हम लोगों ने रिकॉर्डिंग शुरू की, क्योंकि देर से रिकॉर्डिंग शुरू हुई थी तो सुबह की 4 बजे जाके ये गाना खत्म हुआ। हम सब स्टूडियो में चाय पीते रहे और गप्पे मारते रहे, क्योंकि चारों तरफ पानी ही पानी था, हम लोग कोई भी अपने घर नहीं पहुंच सकता था। और फौजी भाइयों मजे की बात तो ये है कि जब मैंने ये गाना रिकॉर्ड किया था वो महीना सावन का था, गाने के बोल में भी सावन का नाम आता था और यहाँ तक कि प्रोड्यूसर का नाम भी सावन था। लीजिए आप लोग भी इस गाने को सुन लीजिए।

फौजी भाइयों, मैं आज जो कुछ भी हूँ इस कला के क्षेत्र में, इसमें मेरे माता पिता जी का बहुत बड़ा योगदान है। उन लोगों के प्रोत्साहन से और मेरी खुद की मेहनत से मैं आज जो कुछ भी हूँ यहाँ तक हूँ। मेरे पिताजी एक जमाने में बहुत अच्छे फिल्मी गीत लिखते थे और वो बहुत अच्छे शायर भी हैं। साथ में संगीत की तालीम मैंने अपने पापा से ही सीखी है। जब मैं बहुत छोटी थी, बचपन से ही गाने का शौक देखकर मेरे पापा ने मुझे उसी दिशा में आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं आई थी फिल्मों में गायिका बनने और इच्छा थी कि मैं बहुत बड़ी सिंगर बनूं, मगर क्या है ना कि मुकद्दर वक्त की बात बड़ी अजीब है, बन गई संगीतकार। वैसे मैं गाने भी गाती रहती हूँ। अब जो गीत मैं आपको सुनाना चाहती हूँ वो एक रागमाला है, यानी कई रागों पर आधारित एक कंपोजिशन है। बहुत पहले जब मैं अपने पापा से गाना सीखती थी, उनसे ही मैंने ये सीखा है। उसी रागमाला को फिल्म स्वीकार किया मैंने के लिए मैंने ये रिकॉर्ड किया था। उम्मीद है आप इस रागमाला को जरूर पसंद करेंगे। लीजिए सुनिए।

0: अच्छा तो फौजी भाइयों, घड़ी मेरी तरफ कुछ इशारा कर रही है और मुझे प्रोग्राम खत्म करना चाहिए। मैं आप लोगों से आज्ञा लेती हूँ। मेरी प्यार भरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद।
1: श्रोताओं, ये था आज का विशेष जयमाला कार्यक्रम फौजी साथियों की सेवा में, जिसे प्रस्तुत किया जानी मानी संगीतकार उषा खन्ना ने। आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग हम आपके लिए लेकर आए विविध भारती के संग्रहालय से।

0: देव दर्शन थू।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक देव दर्शन धूप अगरबत्ती धूप स्टिक्स कोन एवं हवन सामग्री।
0: देव दर्शन धूप
2: के लिए कि ओपिनियर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ।
3: ऐसी अद्भुत या

0: इंस्टाग्राम पर आप सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं?
1: हाँ जी।
0: अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को फॉलो करते हैं?
2: हाँ जी हाँ।
0: पर क्या आपने विविध भारती को फॉलो किया?
2: नहीं नहीं अभी नहीं।
0: विविध भारती भी तो आपके परिवार का हिस्सा है। तो इंस्टाग्राम पर लिखिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
1: कुछ लिखा,
0: और फॉलो कीजिए विविध भारती के ऑफिशियल पेज को। आप हैं विविध भारती के संग।
3: जिज्ञासा
0: जिज्ञासा जिज्ञासा ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग। ज्ञान की रेडियो एक्टिव तरंग जिज्ञासा में मैं यूनुस खान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने एशियन गेम्स पर पैनी नजर नहीं रखी है या फिर आप एशियाई खेलों से जुड़ी खबरों पर ध्यान नहीं दे पाए रोजाना, और आपको भारत के प्रदर्शन, भारत के पदक विजेता खिलाड़ियों वगैरह के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो आज का जिज्ञासा कार्यक्रम ध्यान से सुनिएगा और अगले 15 मिनटों में आपको एशियन गेम्स के पूरे हालचाल भारत के नजरिए से पता चल जाएंगे। तो शुरू करते हैं। एशियन गेम्स 2026 में भारत ने पदक तालिका में अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है। भारत ने 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक जीते हैं, 21 गोल्ड, 27 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज। चलिए, कुल 85 पदक भारत ने अपने नाम किए हैं। अगर भारतीय एथलीटों की बात करें तो उन्होंने एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स यानी ट्रैक एंड फील्ड में कुल 24 मेडल जीते हैं। इसमें एक गोल्ड है, 9 सिल्वर हैं और 14 ब्रॉन्ज हैं, यानी तकरीबन सबसे ज्यादा मेडल ट्रैक एंड फील्ड इवेंट से भारत ने हासिल किए हैं। एशियन गेम्स में अगर हम पदक तालिका को देखें तो चीन हमेशा की तरह फिर से टॉप पर रहा है, 169 गोल्ड, 89 सिल्वर और 83 ब्रॉन्ज, कुल मेडल्स हैं 341। जापान जो है वो 83 गोल्ड, 95 सिल्वर और 91

ब्रॉन्ज के साथ 269 मेडल लेकर दूसरे स्थान पर रहा है। तीसरे स्थान पर 39 गोल्ड, 43 सिल्वर, 68 ब्रॉन्ज, टोटल 150 मेडल तीसरे स्थान पर रहा है साउथ कोरिया। चौथे स्थान पर भारत, पांचवें स्थान पर उज्बेकिस्तान रहा है। गोल्ड भारत के बराबर 21 हैं, टोटल मेडल हैं 70, भारत के टोटल मेडल हैं 85। वांगजो 2023 के एशियन गेम्स में भारत के जो कुल पदक थे उसके मुकाबले में इस बार पदक कम आए हैं, लेकिन एशियन गेम्स में भारत फिर भी चौथे नंबर पर रहा है। इस बार पुरुष और महिला खिलाड़ियों के प्रदर्शन में भी एक अच्छा खासा संतुलन देखने को मिला है। 2023 में भारत को कुल 107 मेडल्स मिले थे, 2026 में 85 मेडल्स मिले हैं, यानी 22 मेडल्स की कमी आई है। 2023 में 28 गोल्ड मिले थे, इस बार 21 गोल्ड मिले हैं, यानी 7 गोल्ड कम हो गए हैं, और इसके बावजूद भारत चौथे स्थान पर रहा है। पुरुष और महिलाओं का मेडल्स का मामला देखें तो पुरुषों ने भी 38 मेडल जीते और महिलाओं ने भी 38 मेडल जीते, यानी बराबरी पर मामला छूटा है। और मिश्रित स्पर्धाओं में 9 पदक मिले हैं, महिला खिलाड़ियों ने 11 स्वर्ण जीते हैं और पुरुषों के 7 स्वर्ण रहे हैं। एशियन गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने कई व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पदक जीते, तीरंदाजी, शूटिंग, मुक्केबाजी, कुश्ती, गोल्फ और एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने गोल्ड समेत कई मेडल्स अपने नाम पर किए हैं। तो अब उन खिलाड़ियों के नाम जिनके गले में सजा सुंदर सा मेडल, तीरंदाजी चिकित्सा तानीपार्थी कुमकुम मोहोद समेत भारतीय खिलाड़ियों ने मेडल जीते, शूटिंग नीरू धांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, मुक्केबाजी लवलीना बोरगोहेन, परवीन हुड्डा और अंकुश ने गोल्ड मेडल अपने नाम पर किए, कुश्ती में सुजीत और अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीते, गोल्फ में प्रणवी उर्स ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है और एथलेटिक्स में महिलाओं की 4x400 मीटर रिले टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। और यह इतना शानदार मुकाबला था कि अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो अभी ढूंढकर 4x400 महिलाओं की रिले रेस का वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि ये नहीं देखा तो क्या देखा, शानदार रोमांचक मुकाबला था ये। टीम स्पोर्ट्स में भी भारत का प्रदर्शन खास रहा, पुरुष और महिलाओं की क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी सभी 6 स्पर्धाओं में भारतीय टीमों ने गोल्ड मेडल जीते। महिला हॉकी, भारतीय महिला टीम ने 44 साल बाद एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता। पुरुष हॉकी, पुरुष टीम ने फाइनल में मलेशिया को 5-1 से हराकर गोल्ड मेडल जीता। क्रिकेट, पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीता। कबड्डी, पुरुष और महिला दोनों ही टीमों ने गोल्ड मेडल जीता। अब गुलवीर सिंह की बातें, एशियन गेम्स 2026 में भारत ने 85 पदक जीते हैं, एक बार फिर बता रहा हूं, 21 गोल्ड, 27 सिल्वर, 37 ब्रॉन्ज। कुलवीर सिंह 10,000 मीटर और 1500 मीटर की रेस में उन्होंने जीता सिल्वर और 5,000 मीटर की रेस में उन्होंने जीता ब्रॉन्ज। कुलवीर सिंह एक ऐसे एथलीट हैं जिन पर भारत की बहुत ज्यादा नजर है और उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जय मीना, सॉफ्ट टेनिस, भारत में पहला एशियन गेम्स मेडल मिला है। सुचिता तारियाल MMA में भारत का पहला पदक, प्रणवी उर्स महिला गोल्फ में भारत का पहला एशियन गेम्स गोल्ड, नीरू धांडा महिला ट्रैप मुकाबलों में व्यक्तिगत स्वर्ण जीतने वाली भारत की पहली महिला शूटर। उद्घाटन समारोह में निशानेबाज मनु भाकर और कबड्डी खिलाड़ी पवन सहरावत ने भारतीय दल की अगुवाई की थी, यानी ये दोनों खिलाड़ी बने थे फ्लैग बेरर। समापन समारोह में 2 स्वर्ण और 1 रजत जीतने वाली निशानेबाज नीरू धांडा भारत की तरफ से फ्लैग बेरर बनी। कुल मिलाकर भारत के एशियन गेम्स 2026 में 85 पदकों का अभियान तो रहा, लेकिन नए खेलों में पहली उपलब्धियां, खिलाड़ियों के व्यक्तिगत रिकॉर्ड, महिला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन ने इन एशियन गेम्स को यादगार बना दिया। भारतीय एथलीटों ने नागोया में 5 नेशनल रिकॉर्ड तोड़े हैं, जिसमें से 2 तो गजब के रिकॉर्ड है। सावन बरवाल को भले ही सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा हो, लेकिन
उन्होंने मैराथन रेस में 2 घंटे 11 मिनट 37 सेकंड में रेस पूरा करके अपने ही रिकॉर्ड को 21 सेकंड से तोड़ दिया। मैराथन में भारत का ये पदक 48 साल बाद आया है। इससे पहले एच के सीताराम ने दिल्ली के 1982 के एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, जहां बरवाल ने स्टेडियम के बाहर कमाल किया। वहीं विद्या रामराज ने नागोया के मिजुहो पार्क स्टेडियम में शानदार तरीके से इतिहास रचा। तमिलनाडु की

विद्या ने 3 मेडल अपने नाम किए। 400 मीटर के हर्डल में उन्होंने जीता ब्रॉन्ज मेडल। पीटी उषा का 42 साल पुराना नेशनल रिकॉर्ड भी विद्या ने तोड़ा। विद्या ने 54.75 का टाइम निकाला, पीटी उषा ने 54.42 का टाइम निकाला था। उनका ये रिकॉर्ड टूट गया जो उन्होंने 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में बनाया था। इसके अलावा विद्या ने किरण पहल, एम पूवम्मा और प्राची चौधरी के साथ 4x400 मीटर रिले का गोल्ड मेडल भी जीता है। इस रेस में विद्या ने रेस की आखिरी लेग को दौड़ते हुए शानदार प्रदर्शन किया और पीछे से आकर भारत को गोल्ड दिलवाया। क्या शानदार मुकाबला था, रोमांचक, यानी आप खड़े हो जाएं और तालियां बजाएं, इतना शानदार मुकाबला था। 70 के दशक में अक्सर पुरुषों की रेस में श्री राम सिंह ये कारनामा करते थे। विद्या ने मिक्स्ड रिले में भी सिल्वर मेडल जीता। पारुल चौधरी ने 3000 मीटर स्टीपल चेज में ब्रॉन्ज मेडल जीता, लेकिन उनका समय 9.8.67 काफी अच्छा रहा, जो उनके नेशनल रिकॉर्ड से 3.79 सेकंड बेहतर था। बारुल अच्छी एथलीट है, लेकिन शायद उनका रनिंग स्टाइल और लंबी हाइट स्टीपल चेज से ज्यादा मैराथन में सही बैठे। महिलाओं की पोल वॉल्ट इसी सीरीज में आती हैं। बरानिका एलिंगोवन ने इस इवेंट में 4.15 मीटर की जंप लगाकर ब्रॉन्ज मेडल जीता, जो भारत के लिए इस इवेंट में पहला पदक है। एलिंगोवन के प्रदर्शन को किसी भी हालत में खराब नहीं कहा जा सकता। महिलाओं की पोल वॉल्ट हाल ही में शुरू की गई है और एलिंगोवन का प्रदर्शन अच्छा माना जाना चाहिए। इसी प्रकार से सर्वेश कुशारे ने पुरुषों की हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले इस इवेंट में पिछला मेडल 1970 में बैंकॉक खेलों में आया था। इतने साल बाद यह मेडल आया है। हम बात कर रहे हैं एशियन गेम्स में भारतीय खेमे के प्रदर्शन की। एनसी सोजन एक ऐसी खिलाड़ी जिसका नाम घर घर में जाना पहचाना हो गया है। एक कठिन और नाटकीय मुकाबले में लॉन्ग जंप इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है इस खिलाड़ी ने। एनसी ने 6.53 मीटर की जंप लगाकर यह मेडल जीता। आखिरी राउंड तक एनसी गोल्ड मेडल की प्रबल दावेदार चल रही थी और भारत की दूसरी एथलीट शैली सिंह कांस्य पदक की होड़ में थी, लेकिन छठे और आखिरी राउंड में चीन की 2 एथलीटों ने भारतीय खिलाड़ियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जहां मेंगी तान ने 6.46 मीटर की जंप से शैली सिंह को पछाड़ दिया, वहीं वाई हुआंग ने 6.55 मीटर की छलांग लगाकर एनसी का खेल बिगाड़ दिया। दिल्ली के तेजस्विन शंकर ने 7,934 अंकों के साथ डेकाथलॉन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 10 इवेंट का डेकाथलॉन एथलेटिक्स का सबसे कठिन इवेंट माना जाता है, जहां एथलीट को 2 दिन में 10 इवेंट में हिस्सा लेना पड़ता है। हालांकि तेजस्विन का सर्वश्रेष्ठ स्कोर 8,057 है, लेकिन नागोया में वो उस तक नहीं पहुंच पाए। और चीन के जिंगवा चेन ने 8,012 अंकों से सिल्वर मेडल जीता। शंकर की इवेंट खत्म होते ही 1974 तेहरान एशियाई खेलों के डेकाथलॉन गोल्ड मेडलिस्ट विजय सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तारीफ की। हरिता भद्रा को 200 मीटर की दौड़ में कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। किसी भी एथलीट के लिए मुश्किल होता है कि वो हर प्रतियोगिता में अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दोहराए या उससे बेहतर प्रदर्शन करे। हालांकि मनप्रीत कौर 18.06 मीटर गोला फेंक चुकी थी, लेकिन नागोया में वो केवल 17.17 मीटर के साथ ही सीमित रह गई और ब्रॉन्ज मेडल जीत पाई। लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह एक ही एशियन गेम्स में 3 मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष एथलीट बने हैं। गुलवीर ने 1500 मीटर में 10,000 मीटर में रजत और 5,000 मीटर में कांस्य पदक जीता, 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज। इससे पहले पीटी उषा ने 1986 के सियोल एशियन गेम्स में 4 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज जीता था। भारत ने इस बार लड़कियों के इवेंट में 11, लड़कों के इवेंट में 7 गोल्ड जीते, 3 गोल्ड मिक्स्ड इवेंट में जीते हैं। इससे पहले 2002 में बुसान में हुए एशियन गेम्स में भारत की लड़कियां आगे रही थी, तब लड़कियों ने इवेंट 6 और लड़कों के इवेंट में 5 गोल्ड मेडल जीते गए थे। इन एशियन गेम्स में अलग अलग इवेंट में कुल 53 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 76 एशियन रिकॉर्ड तो टूटे हैं और साथ ही 166 नए गेम्स रिकॉर्ड भी बने हैं। भारतीय विमेंस कंपाउंड तीरंदाजी टीम ने फाइनल में चीन के खिलाफ 238 पॉइंट्स बनाए और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। इस एशियन गेम्स में ये सारे कमाल भारत के लिए बहुत ज्यादा हौसला बढ़ाने वाले रहे हैं। 19 सितंबर से जापान के आईची नागोया में एशियन गेम्स शुरू हुए थे। 2026 में 4 अक्टूबर को ये गेम्स खत्म हो गए। क्लोजिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजवाहक रही नीरू धांडा। जैसा कि हमने आपको बताया, 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। हालांकि

तीसरा मेडल जीतने के बाद नीरू इंडिया वापस लौट आई थी, लेकिन क्लोजिंग सेरेमनी में भारतीय दल का नेतृत्व करने के लिए उन्हें फिर से जापान बुलाया गया और वो फ्लैग बेरर बनी और गर्व के साथ भारतीय टीम का नेतृत्व करते हुए क्लोजिंग सेरेमनी में उन्होंने वॉक किया है। ये है कमाल। एशियन गेम्स 2026 का अब आधिकारिक रूप से समापन हो चुका है। अगले एशियाई खेलों की मेजबानी होगी कतर में और ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का झंडा कतर को सौंपा जा चुका है। भारत के पूरे एशियाई दल को बहुत सारी बधाइयां हम दे रहे हैं इस कामयाबी के लिए। बहुत कम वक्त बचा है इस बार के जिज्ञासा कार्यक्रम में, लेकिन दो महत्वपूर्ण दिनों की चर्चा करने के बाद हम आपसे इजाजत लेंगे। हर साल 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी और इसका उद्देश्य है मेंटल हेल्थ के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाना, झिझक दूर करना। 2026 की थीम है जीने के अनुभवों को सुना गया, वास्तविक आवाजें वास्तविक बदलाव हैं। इसके अलावा 10 अक्टूबर को एक और महत्वपूर्ण दिन मनाया जाता है और वो दिन है राष्ट्रीय डाक दिवस। डाक दिवस इंडिया पोस्ट यानी भारतीय डाक विभाग मनाता है, जो पिछले 170 से ज्यादा सालों से भारत को पूरी दुनिया से जोड़े हुए है। 9 से 15 अक्टूबर तक राष्ट्रीय डाक सप्ताह मनाया जा रहा है और इस बार का विषय है विश्व डाक दिवस, एक डाक नेटवर्क अनंत संभावनाएं। आपको बता दें कि भारतीय डाक प्रणाली की नींव 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने रखी थी और आज भारतीय डाक ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा रखा है। हमारी चिट्ठियां, हमारे पार्सल, हमारे पैकेट्स, पैसे और तमाम चीजें, इसके अलावा बचत योजनाएं, अब जो डाकघर हैं वो बहुत सारी सुविधाओं वाले डाकघर बन गए हैं, एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गए हैं। ये था इस सप्ताह का जिज्ञासा कार्यक्रम, जिसमें मुख्य रूप से हमने एशियाई खेलों पर विशेष सामग्री पेश की। अब मिलेंगे अगले हफ्ते, इजाजत दीजिए यूनुस खान को। अब मिलेंगे अगले हफ्ते। इस कार्यक्रम के लिए शोधालेख स्वर और संपादन आपके इस दोस्त यूनुस खान का। जिज्ञासा।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: श्रोताओं, आकाशवाणी मुंबई के विविध भारती केंद्र से बोल रहे हैं FM 102.8 और न्यूज़ ऑन AIR पर। आइए सुनते हैं एक गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चित्रलोक में। मैं हूं विधि प्रवीण जैन। नमस्कार।

हम सुन रहे थे तमाशा फिल्म का यह गीत अलका याग्निक अरिजीत सिंह की आवाजों में, इरशाद कामिल के बोल और संगीत एआर रहमान का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक में अगला गीत, जिसे गाया है अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर, शबाब शबरी और साथियों ने। इसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मॉर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: वो रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
3: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
2: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
3: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
2: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
4: अब सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आइए लेते एक छोटा सा विराम।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक में यह गीत जो कि है फिल्म दिलवाले से। इसे गाया है अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा ने। इसके साथ ही इसे लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी।

0: जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
2: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
0: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
2: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है चित्रलोक। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक में ये गीत।

हम सुन रहे थे ये गीत फना फिल्म से, शान और कैलाश खेर ने से गाया, प्रसून जोशी ने इसे बोल दिए और संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने। कार्यक्रम चित्रलोक समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के जंतर मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में 15 लोग मारे गए और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग करते हुए कहा है कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। अदीस अबाबा में डॉ. जयशंकर ने स्थायी और अस्थायी दोनों तरह की सदस्यता में अफ्रीका के उचित प्रतिनिधित्व की मांग की। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
2: इंडिया वर्क रेजोल्युटली।
3: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
1: अफ्रीका के तीन देशों की यात्रा के आखिरी चरण में डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दोनों के बीच व्यापार लगभग 100 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर को लेकर झूठ और गलत अफवाहें फैलाने के लिए पाकिस्तान को कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र

0: महासभा में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान की आलोचना की।
1: ये अफसोस की बात है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र मंच का इस्तेमाल भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बारे में झूठ फैलाने के लिए कर रहा है। हम पाकिस्तान से मांग करते हैं कि वो अपने गैर कानूनी कब्जे वाले इलाकों में मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघन पर रोक लगाए। वहाँ की जनता पाकिस्तान के अवैध सैन्य कब्जे, दमन, क्रूरता और संसाधनों के शोषण के खिलाफ खुलकर विद्रोह कर रही है।
0: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने फ्लाई दुबई के विमान में पिछले महीने उड़ान के दौरान कॉकपिट में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया है। गुजरात निवासी कैप्टन स्मिथ पर पिछले महीने की 30 तारीख को दुबई से तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की उड़ान के कॉकपिट में उनके सह पायलट ने चाकू से हमला किया था। घायल होने के बावजूद यात्रियों की जान बचाने के लिए कैप्टन मच्छर के साहस की दुनिया भर के कई नेताओं ने सराहना की। इस उड़ान में 27 बच्चों सहित 174 यात्री सवार थे। भारत ने कहा है कि अमेरिका के साथ प्रस्तावित अंतरिम व्यापार समझौते को बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर अंतिम रूप दिया जाएगा। नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फरवरी में घोषित इस समझौते के प्रारूप की अमेरिका की शुल्क नीति में बदलावों के बाद पुनः समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अधिक अनुकूल शुल्क शर्तों के लिए दबाव बना रहा है ताकि अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पाद प्रतिस्पर्धी बने रहें। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने बिना पूर्व अनुमति के प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने कल सीजेपी को विरोध प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। हिरासत में लिए गए लोगों को धीरे धीरे रिहा किया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के खिलाफ सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी में भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों को भी कानून व्यवस्था के किसी भी उल्लंघन को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कानून और व्यवस्था संबंधी विशेष पुलिस आयुक्त देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने लोगों से किसी भी अवैध विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं होने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के सहयोगी सीजेपी के नेता देश में खतरनाक और गंभीर स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि विपक्ष के लोग राजनीतिक उद्देश्यों के साथ साथ विदेशी ताकतों के इशारों पर ये सब कर रहे हैं।
2: लगातार वैश्विक संकट के बावजूद आज ये देश निरंतर प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है, पर ये विषय आप सबको चुभ रहा है। आप भारत की विकास को, भारत की उन्नति को पचा नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार से आज भारत आत्मनिर्भर भारत के रूप में, सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है, आप इसको देख नहीं पा रहे। और जिस प्रकार से विदेशी ताकतों के इशारे पे आप इसको अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, मैं स्पष्ट रूप से आपको कहता हूं, भारत के लोकतंत्र में इतनी ताकत है, जितने हमारे राष्ट्रभक्त हैं वो सब मिलकर आपके मंसूबे को पानी फेरेंगे।
1: पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि विपक्षी दलों के नेता प्रदर्शन करके दिल्ली के लोगों को लगातार परेशान कर रहे हैं।
3: हम प्रोटेस्ट के खिलाफ नहीं करते हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में होना भी चाहिए, लेकिन आपने अपनी हार के कारण सड़क के प्रोटेस्ट को वेपनाइज कर लिया है। आम आदमी पार्टी के लिए शैडो बॉक्सिंग करने वाले सीजेपी और बाद में फिर अरविंद केजरीवाल और बाकी लोग आ गए, तो ममता जी ने कहा हम क्यों पीछे हैं, और बीच में सीपीआई सीपीएम भी अपना चले आए। ये जो हारे हुए हताश लोग हैं, ये दिल्ली की जनता को पिछले 3-4 दिन से परेशान कर रखा है।
1: श्री प्रसाद ने कहा कि उपचुनावों में भाजपा की जीत ने साबित कर दिया है कि लोकतंत्र ने देश में अराजकता फैलाने वालों की कोशिशें नाकाम कर दी हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़काने के मामले में दोषी ठहराया। सजा की अवधि पर बहस के लिए अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी। इससे पहले जुलाई में दिल्ली की एक अदालत ने दंगों के दौरान आसूचना ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या

0: मामले में हुसैन और चार अन्य लोगों को दोषी ठहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। वे लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण की मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा से देश सेवा के मूल मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता के साथ सार्वजनिक सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं और उनका यह सफर लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। आज विशेष श्रृंखला में बात पीएम जनधन योजना की, जिसकी सफलता प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के साकार होने का प्रमाण है।
1: प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। यह योजना भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं और इसके जरिए हर परिवार को बैंकिंग सुविधा से जोड़ने में मदद मिली है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का पैसा अब सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाने का एक अहम माध्यम बन गई है। पिछले महीने नई दिल्ली में श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि जनधन योजना ने भारत की बैंकिंग व्यवस्था को बदल दिया है और आज देश का लगभग हर परिवार बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ चुका है।
2: मार्च 2014 तक देश की 50% से ज्यादा आबादी के पास बैंक अकाउंट तक नहीं थे और जो बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे वो ज्यादातर गरीब थे। हम जन धन स्कीम लेकर आए और बीते 12 वर्षों में जन धन योजना की वजह से करीब 60 करोड़ नए बैंक अकाउंट खुले। आज देश में लगभग हर परिवार बैंकिंग सिस्टम से जुड़ा हुआ है।
1: गुजरात के मुकेश नाइक ने बताया कि उन्हें सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ सीधे उनके जनधन खाते में मिल रहा है।
3: मेरा नाम मुकेश भाई नाइका है, मेरा जनधन अकाउंट है और मेरी माँ का भी अकाउंट है। सरकार तरफ से जो भी मिलती है सहाय वो मेरे खाते में तुरंत आ जाती है और बाद में मैं अपना रुपये क्रेडिट कार्ड भी यूज करता हूँ, उससे भी मुझे फायदा है।
1: दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजनाओं में शामिल जनधन योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए बैंक में खाता खोलना और बैंक की सुविधाओं का लाभ लेना आसान हो गया है। इस योजना के तहत जनधन खाता धारक को 10,000 रूपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी मिल रही है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंकों को 16 अक्टूबर से आवश्यक नकद आरक्षित अनुपात CRR को मौजूदा 90% के बजाय 99% पर बनाए रखने की आवश्यकता होगी। ये कदम बैंकिंग प्रणाली में मौजूदा तरलता स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया है। ये बैंकिंग प्रणाली को तरलता कम करने में सहायक होगा, जो 8 अक्टूबर तक 3,88,000 करोड़ रुपए के अधिशेष पर थी। एशिया का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी सम्मेलन 4 दिवसीय इंडिया मोबाइल कांग्रेस आज संपन्न हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में निवेश बढ़ाने, नीति ढांचे को सशक्त करने तथा सस्ते, विश्वसनीय, सुदृढ़ और समेकित डिजिटल संपर्क का विस्तार करने के लिए सरकारों, उद्योग और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में मजबूत सहयोग की आवश्यकता का उल्लेख किया गया। इस सम्मेलन ने सहयोग, निवेश और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए वैश्विक मंच प्रदान किया। आकाशवाणी रायपुर के उपनिदेशक विकल्प शुक्ला का आज दोपहर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वे 58 वर्ष के थे।
4: भारतीय सूचना सेवा के 1993 बैच के अधिकारी विकल्प शुक्ला छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक प्रसारण के प्रमुख स्तंभ रहे थे। समाचार संचालन और रिपोर्टिंग में उनका असाधारण योगदान था। श्री शुक्ला की पहली नियुक्ति पत्र सूचना कार्यालय दिल्ली में हुई थी। उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी सहित कई मीडिया इकाइयों में कार्य किया। उन्होंने भोपाल में भी सेवाएं दी और करियर के अंतिम 25 वर्ष रायपुर में व्यतीत किए। अपने पूरे करियर में वे सार्वजनिक प्रसारण का प्रमुख चेहरा रहे। उनके परिवार में पत्नी और दो विवाहित बेटियां हैं। आकाशवाणी परिवार उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता है।
0: रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोगों की मौत हो गई है और 16 अन्य घायल हुए हैं। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की हवाई बम

0: बारी ने ज़ापोरिजिया के आवासीय इमारतों को भी निशाना बनाया। रूस और यूक्रेन लंबी दूरी के हवाई हमले कर रहे हैं। दोनों देशों की सेनाएं 4.5 वर्ष से अधिक समय से सीमा पर डटी हुई हैं। रूस का डीजल खरीदने संबंधी समझौते की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के एक दिन बाद ये हमले हुए। ये समझौता यूक्रेन के साथ युद्ध तथा अमेरिका में मध्यावधि चुनावों के पहले तेल की बढ़ती कीमतों को काबू करने के प्रयास के मामले में रूस पर वर्षों के अमेरिकी दबाव में आए बदलाव को दर्शाता है। पुतुल सोनोवाल ने ऑस्ट्रेलिया में विश्व बाउल चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। वे इस प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 43 वर्षीय सोनोवाल सिंगल्स सेमीफाइनल में स्कॉटलैंड के इयान मैकलिन से हार गए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिकाल में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा और पश्चिमी राजस्थान में भी ऐसा ही मौसम रहने का अनुमान है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों के साथ भारत और अफ्रीका के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की मांग की। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने फ्लाई दुबई विमान में कैप्टन स्मिथ मच्छर पर हमले की जांच के लिए मामला दर्ज किया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन स्थल पहुंचने की कोशिश कर रहे कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। भाजपा ने कहा, उपचुनाव में पार्टी की जीत लोकतंत्र में विश्वास की पुनः पुष्टि करती है। विपक्ष पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से जनजीवन बाधित करने का आरोप लगाया। रूस के हमले में यूक्रेन के ज़ापोरिजिया में 15 लोग मारे गए। और भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को 16 अक्टूबर से प्रतिदिन 99% नकद आरक्षित अनुपात बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आपके लिए। मैं

0: हम सुन रहे थे ये गीत सुहाना सफर फिल्म से सुमन कल्याणपुर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं ये संदेश।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
2: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए में ये गीत जो है फिल्म तेरे मेरे सपने से। किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें हैं, गोपाल दास नीरज के बोल हैं और संगीत दिया है सचिन देव बर्मन ने।

0: अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है आपके लिए। आइए सुनते हैं अगला गीत मेरे अपने फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है, गुलजार के बोल हैं और संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे।

0: और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है आपके लिए।

हम सुन रहे थे वाणी जयराम की आवाज में गुलजार के लिखे गीत को, जिसे संगीत दिया वसंत देसाई ने। फिल्म है गुड्डी।

हम सुन रहे थे ये गीत कल आज और कल फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। और कार्यक्रम आपके लिए समाप्त होता है यहीं पर। आज्ञा दीजिए, सदा सुखी रहिए। नमस्कार।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
2: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
1: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
2: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
1: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
3: पार्श्व गायन में संगीतकार की प्रायोगिकता में अपने आप को ढालते हुए,
4: आपको याद होगा तीसरी मंजिल में एक गाना था आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, तो उसमें जो आजा आजा था वो याद है आपको? आजा अब तो आजा आजा, ये करना बहुत मुश्किल है, इसमें पेट का धक्का देना पड़ता है आवाज को, तब जाके ये आ आ आ होता है। और एक दिन मैं ये आ आ की प्रैक्टिस कर रही थी अपनी गाड़ी में बैठ के, ड्राइवर ने पीछे मुड़ के कहा, मीन साहब आपको कुछ तकलीफ है क्या, क्या हो गया, आपकी तबीयत ठीक है ना? तो मैं हंस पड़ी और मैंने कहा, नहीं नहीं तू गाड़ी चला।
3: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: सुनो सुनो ए भाई और बहनो, अरे मगन भाई छगन भाई सांबड़ो रे सांबड़ो, ओ राघोबा ओ झोंडीबा आई का ओ कर्नल सिंह, ओ कर्नल सिंह, अरे तुझी भी सुनो पापे।
1: जी हाँ दोस्तों, आज बात ही कुछ ऐसी है जिसका हम ढोल डुग्गी नगाड़ा पीट पीट कर ऐलान कर रहे हैं, क्योंकि आज के फनकार कार्यक्रम में अमरकांत के साथ आप सुनेंगे जानी मानी फिल्म अभिनेत्री रेखा के फनकारी के किस्से कारनामे।
2: अरे वाह, क्या कठु थे मेरी, जरा बताओ तो।

रेखा, जिनकी खूबसूरती और अदाकारी का चर्चा सारी दुनिया करती है। रेखा को अभिनय प्रतिभा विरासत में मिली। 1966 में एक दक्षिण भारतीय फिल्म में बाल कलाकार के रूप में काम किया और हिंदी फिल्मों में भी उन्हें बहुत ही कम उम्र में ब्रेक मिल गया। जी हाँ, 1970 में बनी फिल्म थी सावन भादों।

0: कटके हो तेरा
1: रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।
2: इस फिल्म के संगीत ने जहां एक तरफ बहुत धूम मचाई वहीं रेखा को भी चर्चा के घेरे में ला खड़ा किया। चर्चा उनकी बेबाक अदाकारी की हुई और दूसरी तरफ फिल्मी पंडितों ने रेखा को देखकर यहां तक कह डाला ये क्या चलेगी। लेकिन दोस्तों रेखा ने आने वाले वक्त में अपनी मेहनत और लगन से अपने आलोचकों को ऐसा करारा जवाब दिया कि उन्हें भी कहना पड़ा

ये खूबसूरत शोला ऐसा चमका कि उसकी चमक के आगे सितारे भी शर्मा जाएं। रेखा की बेहतरीन अदाकारी तो आप कई फिल्मों में देख ही चुके हैं, उनकी अदाकारी का एक और अलग रंग हमारे सामने आया जब हमने देखी उमराव जान।

0: जी हाँ, मस्तानों और अफसानों से घिरी रेखा हमेशा मीडिया के लिए एक हॉट केक की तरह ही रही। विषय चाहे उनका फिजिकल मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन हो, एक्टिंग हो या किस्सा किसी रोमांस का, मीडिया ने हमेशा उन्हें अपनी पत्रिकाओं के फ्रंट पेज पर ही रखा।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी ये खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है

मजबूरी हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी, कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें, क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत, अब दिल में यही बात इधर भी है।

यूं तो रेखा ने तकरीबन सभी नायकों के साथ काम किया है, लेकिन रेखा की फिल्मी जोड़ियां रहीं जितेंद्र, विनोद मेहरा, विनोद खन्ना और शशि कपूर जैसे कलाकारों के साथ। पर उनकी जो सबसे सफल जोड़ी बनी वो थी अमिताभ बच्चन के साथ। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा कई सफल फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जैसे मुकद्दर का सिकंदर, दो अनजाने, मिस्टर नटवरलाल, सिलसिला, सुहाग, राम बलराम और खून पसीना।

रेखा की फिल्में तो हिट रही ही हैं, साथ ही उनकी फिल्मों के गाने भी एक से बढ़कर एक रहे हैं। और ऐसी शानदार अदाकारा के विषय में बातें करने के लिए ये समय हमें बहुत कम सा लगता है।

0: अब विविध भारती आपके एलेक्सा डिवाइस पर भी उपलब्ध। बस आपको इतना कहना है, एलेक्सा प्लीज प्ले विविध भारती।
1: प्लेइंग द लाइव ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो विविध भारती।
2: हवाओं पे लिख दो हवाओं के नाम।
0: इसके अलावा वेव्स ओटीटी, इंटरनेट स्ट्रीमिंग और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन के जरिए सारी दुनिया में उपलब्ध है।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं वीको वजयदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

सभी को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। आज इस मोड़ पर वो बहुत याद आते हैं। कभी कभी जिंदगी में उजाले तो बहुत होते हैं, मगर दिल के किसी कोने में एक अंधेरा ठहर जाता है। वो अंधेरा जो किसी की याद से रोशन भी होता है और उसी याद में हमें तन्हा भी कर देता है। वो सामने नहीं होते, फिर भी हर ख्याल में उनका चेहरा नजर आता है। उनकी खामोशी तक जैसे हमसे कोई गुफ्तगू करती है।

मोहब्बत में वफा निभाना तो हमने सीखा, मगर जफा करना ना आया। किसी की खातिर दिल को तड़पाना, किसी की आंखों में अश्क लाना हमारी फितरत नहीं। इश्क में शिकवे भी मिले, फासले भी आए, मगर दिल ने हर बार उसी शख्स की

इश्क वो नहीं जो महज लफ्जों में बयान हो जाए, इश्क तो वो है जो खामोशी में भी पूरी दास्तान कह जाए। वो मेरी मोहब्बत बनकर मेरी रूह में समाती गई, उसकी एक झलक को तरसती निगाहें, उसकी एक आवाज पे ठहरती धड़कनें। ये कैसी आरजू है, ये कैसी कैफियत है कि उसका नाम आते ही दिल को जैसे इबादत का एहसास होने लगा।

अंतराल के बाद इस दीवाने की महफिल में हम और आप साथ साथ छाया गीत के सफर में, उसकी मोहब्बत क्या रंग लाए।

आई, उसे देखने की आरजू, उसे चाहने में खुशी, उसके साथ में जैसे पूरी कायनात मिल गई। उसे देखा तो लगा बहारों ने कोई ख्वाब देखा है, जैसे गुलिस्ता में अचानक किसी गुल ने मुस्कुराकर अपनी खुशबू बिखेर दी हो।

इश्क में आशिक की बेचैनी यही तो होती है, महबूब नजर से ओझल हो जाए तो दिल उसे हर गली, हर राह, हर फिजा में तलाश करने लगता है। यही तो मैंने भी किया, कभी हवा

तारों से, कभी घटाओं से, तो कभी चांद से पूछता, क्या तुमने उसे देखा है? नजर उसकी तलाश में भटकती रही, और जब महबूब को एक नजर देख लिया तो मत पूछिए दिल कहाँ।

महबूब से मिलने की खुशी कभी अपना एक आलम है, लबों पर खामोशी, आंखों में ख्वाब और दिल में बेपनाह मोहब्बत, बस एक दीदार की चाहत में ये दीवाना सफर पर चल पड़ा।

जब हुई उनसे मुलाकात तो दीवाना दिल यही सवाल कर बैठा, क्या यूं ही हमें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करके छोड़ो।

इस प्रोग्राम के प्रायोजक विको वैद्यदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।